शुभ सवेरा, नमस्कार। मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज बुधवार है, शक संवत 2000 विक्रम संवत 2083 के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पांचवी तिथि और शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 सितंबर सन 2026। इस समय 7:04:22 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं के लिए आज का ये दिन मंगलमय हो, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज 16 सितंबर है, विश्व ओजोन दिवस। हम आपको बताएं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य यही है कि ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और इससे बचाव के उपाय किए जाएं। जाहिर सी बात है कि ये एक पर्यावरण से संबंधित समस्या है। दरअसल जो ओजोन है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना एक अत्यंत क्रियाशील और विशिष्ट गंध वाला अणु गैस है। इसकी गंध बहुत तीखी और तेज होती है। और इसका जो क्षरण है वो एक गंभीर समस्या है। ओजोन परत में जो छिद्र है, क्षरण का जो मुख्य कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन, जो समताप मंडल में पहुंचकर ओजोन अणुओं को तोड़ देते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे से निकलता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह के जो भी हमारे घर में, चाहे फ्रिज हो या एयर कंडीशनर हो, आवश्यकता पर ही इसका हम उपयोग करें। बिना आवश्यकता के हमारे जो ये गैजेट्स हैं ये चालू रहें, शुरू रहें, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है हमारे पर्यावरण के लिए। तो आज ओजोन दिवस है, आप सबसे हमारी यही अपील है कि इस विषय में जितनी भी जागरूकता है वो अपने आसपास फैलाएं और लोगों को ये संदेश दें कि वो अपनी जीवन शैली ऐसे करें ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो संरक्षित रहे। और अब एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि और फिर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महावीर सिंह की। प्रसारण का समय रहेगा सुबह 8 बजे 8:30 बजे इतिहास के पन्नों से ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। इसमें आप जानेंगे रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास। टेक गुरु कार्यक्रम सुबह 9 बजे प्रसारित होगा। चर्चा का विषय दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीक के फायदे। 9:30 बजे कला कल्लोलिनी कार्यक्रम में हम बात करेंगे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की। नगर की सामाजिक साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। 10:30 बजे काव्य गुंजन में सुनिएगा रश्मि रथी का 14वां भाग। हमारे वैज्ञानिक ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रसारित होगा और 11:30 बजे सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ। इंतज़ार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।
2: गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन के अपने एकांत कमरे में कविता लिखने में तल्लीन थे। तभी निर्वता को भेदती हुई एक आवाज आई, रुको, आज तुम्हें खत्म ही कर देता हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर ने दृष्टि उठाई, देखा एक डकैत चाकू लिए हुए उन पर वार करने के लिए प्रस्तुत है। वे कविता लिखने में पुनः तल्लीन हो गए और धीरे से कहा, मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, मारना, लेकिन एक बहुत ही सुंदर भाव आ गया है, कविता पूरी कर लेने दो। भाव में इतने डूबे कि उन्हें याद ही नहीं कि उनका हत्यारा इतना निकट है। इधर हत्यारे ने सोचा, ये कैसा आदमी है, मैं चाकू लिए खड़ा हूँ, उस पर कोई असर नहीं। गुरुदेव की कविता जब समाप्त हुई, उन्होंने दरवाजे की ओर दृष्टि डाली, मानो कह रहे हों, अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। लेकिन ये क्या, हत्यारे ने चाकू बाहर फेंक दिया और उनके चरणों में बैठकर रोने लगा।
1: जीवन सौरभ।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद जैसे अक्षय निधि हैं, यही अक्षय निधि डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी के स्वर में आपके लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 20वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक, देवता हैं इंद्र, छंद है त्रिष्टुप।
2: वयम् ते वय इंद्र विद्धि शूणः प्रभरामहे वाजयुर्न रथम् विपन्यवो दीध्यतो मनीषा सुम्नमियक्षन्तस्त्वावतो नृन्। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार अन्न की कामना वाले अपने रथ को अन्न से भरते हैं, उसी प्रकार हम स्तोताजन बुद्धि से तेजस्वी होते हुए आपसे सुख की कामना करते हुए आपके लिए हवि प्रदान करते हैं। हमारे इस कार्य को आप भली भांति जाने। त्वम न इंद्र त्वाभिरुति त्वायतो अभिष्टिपासी जनान त्वमिनो दाशुषो वरुते था धीरभि यो नक्षति त्वा। हे इंद्रदेव, जो आपको ही अपना इष्ट मानता है, उस दानशील मनुष्य के समीप आने पर आप हर प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। आप विपत्तियों से बचाने वाले तथा सत्यकर्मा न्यायशील हैं, अतः आप अपने रक्षण साधनों से हमें संरक्षण प्रदान करें। स नो युवेन्द्रो जोहूत्र सखा शिवो नरामस्तु पाता यह शंसंतम यह शशमानमूति पचंतम च स्तुवंतम च प्रणेशत। स्तोत्रों का उच्चारण करने वाले, उत्तम निर्देश देने वाले, हविष्यान्न को तैयार करने वाले तथा स्तोता यजमानों को जो अपने संरक्षण के द्वारा विपत्तियों से मुक्ति दिलाते हैं, ऐसे नित्य तरुण मित्रवत सदैव पास बुलाने योग्य तथा सुख स्वरूप इंद्रदेव समस्त प्रजा सहित हमें संरक्षण प्रदान करें। तमुस्तुष इंद्रम तम गृणीशे यस्मिन् पुरा वावृधुः शाशदुश्च स वस्वः कामं पीपरदियानो ब्रह्मण्यतो नूतनस्यायोः। जिन इंद्रदेव के आश्रय में स्तोतागण वृद्धि पाते रहे हैं और शत्रुओं का संहार करते रहे हैं, उन इंद्रदेव का यशोगान हम स्तुतियों से करते हैं। वे स्तुत्य इंद्रदेव नए यजमानों की धन की कामना को पूर्ण करते हैं। सो अंगिरसा मुचथा जुजुष्वान ब्रह्मा तू तो दिंद्रो गातु मिश्रन मुष्णन नुषसः सूर्येण स्तवानश्नस्य चितिष्णथ तत्पूर्व्याणि। अंगिराओं की स्तुतियों को स्वीकारते हुए वे इंद्रदेव श्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ये स्तुत्य इंद्रदेव सूर्य को उदित करके उषा को हरते हुए अश्नासुर को नष्ट कर देते हैं। सह श्रुत इंद्रो नाम देव ऊर्ध्वो भुवन मनुषे दस्मतमः अव प्रियमर्ष सानस्य साहवन छिरो भरद्दासस्य स्वधावान तेजवान कीर्तिवान ख्याति प्राप्त अत्यंत दर्शनीय तथा प्रिय इंद्रदेव ज्ञानवान स्तोताओं के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। शत्रुनाशक इंद्रदेव ने संसार के अनिष्टकर्ता दास नामक असुर का सिर काटा। स वृत्रहेन्द्र कृष्ण योनि पुरंदरो दासी रैरयद्वी अजनयन मनवे क्षाम पश्च सत्रा संशम यजमानस्य तूतोत। वृत्रहंता शत्रुओं के दुर्गों को ढहाने वाले इंद्रदेव ने कृष्ण दासों की सेना का संहार किया। मनुष्य के लिए पृथ्वी तथा जल को उत्पन्न किया। ऐसे महान इंद्रदेव यजमान की श्रेष्ठ कामनाओं को पूरा करें। तस्मै तवस्य मनुदायि सत्रेन्द्राय देवेभिरर्णसातौ प्रतियदस्य वज्रम बाहवोर्धुर्हत्वी दस्यून्पुर आयसीर्नि तारीत। उन इंद्रदेव को देवताओं ने युद्ध में संगठित होकर निरंतर बल प्रदान किया। इंद्रदेव ने अपनी बलशाली भुजाओं में वज्र को धारण करके दुष्टों का संहार किया तथा उनके दुर्गम नगरों को भी ध्वस्त किया। नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे दुहीय दिंद्र दक्षिणा मघोनी शिक्षा स्तोत्रिभ्यो माति धग भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराह। हे इंद्रदेव, आपके द्वारा यज्ञकाल में दी गई ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा स्तोताओं को निश्चय ही धन प्राप्त कराती है, अतः हमें भी स्तोताओं के साथ वह ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा दें जिससे हम यज्ञ में महान पराक्रम प्रदान करने वाले स्तोत्रों से आपकी स्तुतियां करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 20वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
0: रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। प्रस्तुति डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी की थी। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए इस पावन यात्रा पर हम और आप साथ साथ चलें। श्रोताओं, जब से कुदरत है, मनुष्य का अस्तित्व है, तब से ईश्वर की अनंत खोज जारी है। और ये विश्वास भी कायम है कि कहीं तो कोई है जो दुनिया की बागडोर थामे हुए है, इसे गतिमान करता रहता है। ईश्वर क्या है, कहाँ मिलते हैं इसके पद चिन्ह, ये एक सनातन प्रश्न है जो हर कालखंड में मानव मन को मथता रहा है। श्रद्धा, विश्वास और तर्क की कसौटी पर मानव ने ईश्वरीय सत्ता की हर दम छानबीन की और हर बार यही निष्कर्ष सामने आया कि जर्रे जर्रे में बसते हैं भगवान।

श्रोताओ, ईश्वर प्रेम, आस्था और विश्वास का तालमेल है। वो रहम है, रहमान है, दीन बंधु है, दयानिधि है। इसलिए जब भी मन में ईश्वर की तलाश का प्रश्न उभरे तो किसी को माफ करके देखिएगा। आपको अपनी रहम में ही उस खुदा के दीदार होंगे। किसी रोते हुए बच्चे के चेहरे पर हंसी की रंगोली सजा कर देखिए, यकीनन जगदीश्वर आपकी आंखों के सामने होंगे। उनका कोई आकार नहीं, वे कण कण में व्याप्त हैं। हर दुखियारे की हंसी में, प्रेम की तलाश में भटकते हृदयों में, स्वयं के पूर्ण होने की यात्रा कर रहे साधकों में, संगीत की झनकार में और गायन की मिठास में, हर कहीं वो ही हैं।

जीव मात्र से प्रेम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सारा संसार ईश्वर का ही रूप है। जड़ हो या चेतन, सब में ईश्वर व्याप्त है। कम से कम भारतीय मनीषा इसी सिद्धांत पर विश्वास करती है और हमारी आस्था धर्मिता इसी यकीन के इर्द गिर्द बुनी गई है। पानी, हवा, आग, वृक्ष, नदी, पुष्प, हम इन सब में ईश्वर को महसूस करते हैं, उनके होने पर यकीन करते हैं। हम मानते हैं कि ये संपूर्ण जगत उस विराट का ही स्वरूप है।

श्रोताओं, बहुत से लोग ईश्वर को अलग अलग रूपों, रंगों और आकार में पूजते हैं। कोई मूर्ति के रूप में पूजता है तो कोई अग्नि के रूप में और कोई निराकार। कुछ लोग प्रकृति के हर कण को ईश्वर मानते हैं। दरअसल ईश्वर हमारे भाव जगत का विषय है। जैसी हमारी भावना, वैसा ही हमारा ईश्वर।

ज्ञानी जन कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ है और कण कण में व्याप्त है। उसकी शक्ति से ही आकाश में विस्तार है, उसकी शक्ति से ही वायु का श्वास है, उसकी शक्ति से ही सूर्य चमकता है और उसकी शक्ति से ही सभी जीवित हैं। वही जगत का सत है, वही आत्म की आत्मा है।

श्रोताओं, हमारा ईश्वर हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा का ही रूप है। उसे हम भीतर ढूंढें या बाहर जगत में, अंततः हम पाते यही हैं कि वो हर कण में शामिल है, जर्रे जर्रे में उसी का रूप है, उसी के नाम की झनकार है। तो इस संसार के कण कण में उसके दर्शन का संकल्प लिए संपन्न होती है आज की भजन यात्रा। अब अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
3: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। मैंने देखा मृत्यु निमंत्रण उसके द्वारे आया, अत्याचारी से आगे बढ़ जो पहले टकराया। बंद हो गया है मेरा भी आज भाग्य का द्वार, लेकिन कहो बिना बलि किसने पाया आजादी उपहार। मातृभूमि के लिए खुशी से देता हूं मैं प्राण, इसका मुझको पूर्ण ज्ञान है ये मेरा अनुमान। हे परम पिता, अपने बलिदान के उस पावन नक्षत्र की मैं दिल से पूजा करता हूँ, मैं उसे वरता हूँ। रूसी कवि पुष्किन की ये कविता महान क्रांतिकारी महावीर सिंह के साथ हमेशा होती थी, जो संभवतः उनके मनोभाव का ही अनुवाद थी। जैसे कोई पुजारी अपने साथ गीता और रामायण जैसे धर्म ग्रंथ रखता है, ठीक उसी तरह क्रांतिकारी भी जेल की अंधेरी कोठरियों में बलिदान के स्वर में रची पगी कविताओं के दीप जलाकर आजादी का स्वप्न देखते थे। महावीर सिंह का जन्म 16 सितंबर सन 1904 को शाहपुर टहला, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बगावत की भावना उनमें बचपन से ही थी। राष्ट्र पर मर मिटने का संस्कार उन्हें अपने पिता से मिला था। सन 1925 में जब वे कॉलेज में पढ़ने कानपुर आए तो असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका था, लेकिन जनता के मन में असंतोष की आग सुलग रही थी। किसान, मजदूर और आम लोग भी अपने अपने तरीकों से लड़ रहे थे। कानपुर का डीएवी कॉलेज क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। भगत सिंह और सुखदेव इसके छात्रावास में ठहरकर क्रांति की योजनाएं बनाते। इसी दल में शामिल थे कुंवर महावीर सिंह। वो देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का संकल्प ले चुके थे। उधर पिता देवी सिंह उनकी शादी की तैयारी कर रहे थे। शादी की सूचना से बेचैन महावीर सिंह ने पत्र लिखकर अपने क्रांतिकारी जीवन और संकल्प की बात पिता से कही। पिता का जवाब आया, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने अपना जीवन देश के काम में लगाने का निश्चय किया है। मुझे तो लगता था कि हमारे वंश में पूर्वजों का खून अब नहीं रहा, सबने दिल से गुलामी कबूल कर ली है। तुम्हारा पत्र पाकर आज मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। तुम जहाँ भी रहोगे मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। पिता का ऐसा पत्र पाकर उनका हृदय खुशी से उछल पड़ा, उनका संकल्प और गहरा हुआ और वो निकल पड़े क्रांति पथ पर।

पिता की सहर्ष अनुमति के बाद महावीर सिंह दल में पूरी तन्मयता से सक्रिय हो गए। सन 1927 में दल की ओर से लाहौर में कुछ लोगों को मोटर चलाने की शिक्षा का प्रबंध किया गया। महावीर सिंह पढ़ाई छोड़कर लाहौर चले गए। सैंडर्स वध के बाद भगत सिंह और राजगुरु को कार में बिठाकर डीएवी कॉलेज की दूसरी ओर से महावीर सिंह ही सही सलामत निकाल ले गए थे। सन 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंकने के बाद जो गिरफ्तारियां हुईं, उनमें महावीर सिंह भी पकड़े गए। जेल में हर दूसरे तीसरे दिन क्रांतिकारियों का जेल के अधिकारियों से झगड़ा हो जाता। उस समय वे लोग मोटे तगड़े क्रांतिकारियों पर सारा गुस्सा उतारते। भगत सिंह, किशोरी लाल, जयदेव कपूर और महावीर सिंह सबके हिस्से की मार खाते थे। जेल में जब अनशन होता तो नाक के रास्ते नली डालकर क्रांतिकारियों को जबरदस्ती दूध पिलवाया जाता। एक जेल अधिकारी, डॉक्टर और 8-10 तगड़े पहलवान लगते। अनशन की इस लड़ाई में महावीर सिंह सबसे कठिन पड़ते। हर बार उन्हें दूध पिलाने में आधे घंटे का संघर्ष लगता। महावीर सिंह ने शत्रु की अदालत को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि उनके इस न्याय के नाटक में वो भाग नहीं लेंगे। लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें अन्य साथियों के साथ आजन्म कारावास का दंड मिला और वे बेलारी सेंट्रल जेल भेज दिए गए। यहां तरह तरह के अत्याचार होते, असीम यातनाएं दी जातीं और क्रांतिकारियों का विरोध जारी रहता। कभी सुपरिंटेंडेंट उन पर मुक्केबाजी का अभ्यास करता तो कभी परेड में बोझ से लाद कर पशुवत व्यवहार करता। इसके बावजूद जेल में महावीर सिंह का विरोध जारी रहता। उन्होंने पलटकर सुपरिंटेंडेंट को ऐसा घूसा मारा कि दोबारा उसने मुक्केबाजी का शौक नहीं किया। उन दिनों जेलों में बेतों की सजा बर्बरता का जीता जागता नमूना था। महावीर सिंह को 30 बेतों की सजा का हुक्म हुआ। लकड़ी के एक चौखटे से महावीर सिंह को औंधा बांध दिया गया, कपड़े उतार दिए गए। चीफ वार्डर ने अनुमति मिलते ही गिनती आरंभ की। एक बेंत हवा में लहराया और साय की आवाज के साथ उनके शरीर पर उतरा। उस स्थान की खाल उड़ाता चला गया। उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। गिनती आगे बढ़ती रही, बेंत उतरता रहा, खाल उधड़ती रही। जिंदा गोश्त के रेशे हवा में छितरते रहे, ताजे खून की फुहार से जमीन लाल होती रही और इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद होता रहा। सच तो ये है कि सहने की ये शक्ति शरीर से नहीं, विचारों से आती है। देश को लेकर उनकी चिंता और चिंतन उनके लिखे पत्र से जाहिर होता है। सन 1933 में उन्हें उनके कुछ साथियों के साथ अंडमान काले पानी की सजा पर भेज दिया गया। यहां से उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा जो सवाई माधोपुर राजस्थान में रहने वाले उनके छोटे भाई श्री बलबीर सिंह वैद्य के पास सुरक्षित था। इस पत्र को उनके साथी क्रांतिकारी शिव वर्मा ने सन 1969 में लिखी अपनी पुस्तक संस्मृतियां में प्रकाशित किया। ये एक बहुमूल्य दस्तावेज है। भारत भूमि से लगभग 1200 किलोमीटर दूर उस वीरान द्वीप में देश की आजादी के लिए संघर्ष करते एक भारतीय का ये अपनों से किया गया संवाद है। इसके अंश कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे।

सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर अंडमान, जिसकी दीवारों पर वीर सावरकर क्रांति गीत लिखा करते थे। आजादी के दीवानों के उस तीर्थ से अपने पिता के नाम पत्र लिखते हुए महावीर सिंह कहते हैं, परम पूज्य पिताजी, आपको पढ़कर आश्चर्य होगा कि उपरोक्त स्थान पर मैं कब आ गया। यही पहेली हल करने जा रहा हूं। 19 जनवरी को प्रातःकाल को लगभग 11 बजे जेलर साहब सेंट्रल जेल बिलारी आए और कोठरी का दरवाजा खोलकर सूचना दी, तुम्हारा ट्रांसफर है, पर यह नहीं बताया कि कहां को है। पूछने पर केवल इतना ही कहा कि शायद पंजाब में नए लाहौर षड्यंत्र केस में गवाही देने के लिए मद्रास भेजे जाओगे। 19 तारीख की संध्या को जब मैंने सेंट्रल जेल मद्रास में पैर रखा तो मेरे जीवन मरण के साथी श्रीयुत भाई कमलनाथ तिवारी के दर्शन लगभग 2 वर्ष बाद हुए, और रात को भाई बीके दत्त और भाई कुंदन लाल जी की आवाजें सुनी। आप स्वयं ही जान सकते हैं कि मुझे कितनी प्रसन्नता हुई होगी। परंतु अलसुबह फिर कुछ निराशा की झलक नजर आई जब देखा कि तिवारी और भाई दत्त और कुंदन लाल हमसे पहले ही पृथक पृथक ले जाए गए हैं। परंतु 15 मिनट बाद ये स्थिति फिर से हर्ष में बदल गई। मोटर लॉरी में हम फिर मिल गए। बहुत दिनों का वियोग मिटा। उस समय तक मन की खिचड़ी हम पका रहे थे और मिलने के आनंद से विह्वल थे, परंतु ये नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं। सोचते थे कि शायद पंजाब जाएं, बाद में यहाँ आएं। परंतु हमारी लॉरी बंदरगाह पर पहुंची और विख्यात महाराजा जहाज के दर्शन हुए। उस समय समझ में आया कि हम लोग अंडमान अर्थात काला पानी जा रहे हैं। मातृभूमि से तथा बंधु वर्ग से सदैव के लिए, अथवा कम से कम 18 साल के लिए पृथक हो रहे हैं। जिस जननी की गोद में पले हैं और धूली में लोटे हैं, उसके दर्शन से भी वंचित हो रहे हैं। आप लोगों की पदारविंद की रज से सदैव के लिए दूर हो रहे हैं। ऐसी दशा में प्यारे देश को छोड़ते हुए हृदय में कितना ही कष्ट हुआ, परंतु साथ ही साथ प्रसन्नता भी हुई, जो कि इसके सम्मुख कुछ अधिक ही थी। वो थी एक साध क्रांतिकारी की दर्शनाभिलाषा पुण्य पवित्र तीर्थ स्थान की, जिसको कि भाई राम रखामल ने अपनी समाधि बनाकर पवित्र किया था, और दूसरे बंगाली तथा सिख वीरों की जो तपोभूमि रही है। और साथ ही आशा भी थी कि हमारे जीवन के बंधुगण सर्वदा साथ रहेंगे, और भी अनेक अपने कंधे से कंधा सटाने वाले भाइयों के दर्शन होंगे। 13 जनवरी की संध्या को विस्तृत नील गंभीर जलराशि की 850 मील से अधिक लंबी यात्रा करके हम इस पोर्ट ब्लेयर की जेल में पहुंचे, जहां पर अपने वर्तमान साथियों को मिलने के लिए अति उत्कंठित पाया। उनकी वैसी ही दशा हो रही थी जैसी हमारी हो रही थी। यहां संप्रति लगभग 40 बी क्लास के तथा 24 सी क्लास के राजनैतिक कैदी हैं। कुछ लोगों के निकट भविष्य में हम आशा करते हैं। हमारी जेल 3 मंजिला है और पास ही कुछ गजों के फासले पर नीला स्वराशि गंभीर गर्जन के साथ किनारे से टक्करें मारती है, जो ऊपर से दीख पड़ता है। ये द्वीप समूह जंगलों से भरा हुआ सुना जाता है, परंतु खुली हुई जगहों में कुछ भारतीय लोग भी बस गए हैं जिनकी भाषा हिंदुस्तानी है। इन लोगों में से बहुत से कैदी हैं, कुछ सरकारी नौकर भी हैं और कुछ तिजारती लोग भी। अभी हाल में तो जेल वालों का कुछ ठीक ठाक हाल ही मालूम होता है, लेकिन आगे की कह नहीं सकते। हमारे पुराने साथियों में अभी हमारे साथ डॉक्टर गया प्रसाद, मिस्टर वी के दत्त, भाई कुंदन लाल जी तथा कमलनाथ तिवारी हैं। बाकी 3 साथी अभी मद्रास सूबे में होंगे, जो कि शायद अभी भी हंगर स्ट्राइक पर होंगे।

जेल की बंदिशें अनगिनत थीं, पत्र व्यवहार बहुत कठिन था, खतरे की घनघोर घटाएं मंडराती रहती थीं, इसलिए लगातार पत्र लिखना संभव नहीं था। इस क्षमा याचना के साथ महावीर सिंह आगे लिखते हैं, पूज्यवर, प्यारे भाई का क्या हाल है इसकी सूचना शीघ्र दीजिएगा। उसे केवल वैद्य ही बनने का उपदेश न देना, पर साथ ही साथ मनुष्य बनना भी बतलाना। आजकल मनुष्य वही हो सकता है जिसे वर्तमान वातावरण का ज्ञान हो, जो मनुष्य के कर्तव्य जानता ही न हो परंतु उसे पालन भी करता हो। उसे सिखलाना कि उसका जीवन उसका नहीं परंतु समाज का है, इसलिए इस समाज की धरोहर को आलस्य तथा आराम तलबी और स्वार्थपरता में डालकर समाज के सामने कृतघ्न साबित न हो। उसे आजकल के वातावरण का ज्ञान करने के लिए समाचार पत्र तथा ऐतिहासिक, सांपत्तिक और राजनैतिक सामाजिक पुस्तकों का अवलोकन करने को कहिए। समाज से मेरा मतलब संकीर्णता व्यंजक समाज से नहीं है, परंतु जन साधारण के समाज से है, क्योंकि ये धार्मिक समाज मेरे सामने संकीर्ण होने के कारण कोई भी मूल्य नहीं रखते हैं। केवल एक बात मानता हूं मैं, उसको सबसे बढ़कर तथा मनुष्य और समाज का कल्याणकारी समझता हूं, वो है मनुष्य का मनुष्य तथा प्राणी मात्र के साथ कर्तव्य, बिना किसी जाति भेद, रंग भेद, धर्म तथा धन भेद के। वही मेरा उपदेश बेटी सरोजनी को है और दूसरे हमारे भाइयों को भी है। पूज्यवर, आज जब मैं देखता हूं कि सब बहनें समाज की सेवा के लिए अपने को तन मन और धन से लगाए हुए हैं, अभागा मैं ही हूं जिसके ऐसी कोई बहन नहीं। यद्यपि ये मेरी संकीर्णता है, क्योंकि अपने मन के अनुसार दूसरी बहनें भी अपनी ही हैं और मैं वैसी ही समझता भी हूं, परंतु मैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी चाहता हूं, जिसकी कुछ आशा मैं अपनी पूजनीय जिया महताब कुमारी से करता था। उनका बहुत समय से कोई समाचार नहीं पाया है, यदि हो सके तो मेरा चरण स्पर्श कहिएगा। इति शुभम। पत्र शीघ्र भेजिएगा। आपका आज्ञाकारी पुत्र महावीर सिंह। पता PI 68 सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। देश की ऐसी चिंता मन में लिए वो अपनों से दूर अपनी एक एक सांस मां भारती के चरणों में अर्पित करते रहे। 12 मई सन 1933 को अपने साथ पशुवत व्यवहार के विरोध में अंडमान के बंदियों ने अनशन आरंभ किया। अनशन के छठे दिन 17 मई सन 1933 को अधिकारियों ने कैदियों को बलपूर्वक दूध पिलाने का उपक्रम शुरू किया। आधे घंटे की कुश्ती के बाद 10-12 व्यक्तियों ने मिलकर महावीर सिंह को जमीन पर पटक दिया और डॉक्टर ने एक घुटना उनके सीने पर रखकर नली नाक के अंदर डाल दी। उसने ये देखने की परवाह भी नहीं की कि नली पेट में न जाकर उनके फेफड़ों में चली गई है। पूरा एक सेर दूध उनके फेफड़ों में भर दिया गया। वो मछली की तरह छटपटाते हुए वहीं शहीद हो गए। अधिकारियों ने चोरी चोरी उनके शव को बोरे में भरकर समुद्र की लहरों के हवाले कर दिया। कभी सोचें तो ऐसा लगता है जैसे उन अथाह लहरों के माध्यम से उनका मन अपनी मिट्टी को छू रहा था। ये वैसा ही था जैसे कि लहरें उनकी अंतिम पुष्पांजलि भारत भूमि के चरणों में अर्पित कर रही थीं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।
0: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम के लिए इंतजार करें बस जरा सा।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। और अब समय है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का। नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, और इतिहास के पन्नों से का 7वां एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। हमारे साथ पूजा सक्सेना जी लगातार इस सीरीज में बनी हुई हैं, और इस बार भी हमारे साथ हैं पूजा जी, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और इतिहासकार। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
4: धन्यवाद
3: पूजा जी। पिछली बार आपने हमें ये बताया कि आसफ खान ने एक तरह से पीठ में चुरा भूका रानी का। एक तरफ रानी को किसी भी तरह का खतरा उनसे लगता नहीं था, क्योंकि वो लगभग विश्वस्त बना हुआ था रानी का, कि वो रानी को ऐसा नहीं लगता था कि कभी भी वो उन पर हमला करेगा। तो और रानी इधर विकास कार्यों में लगी हुई थी, और अकबर को किसी तरह से भड़काकर आसफ खान ने युद्ध के लिए तैयार कर लिया, और यहाँ पर दमोह तक पहुँच गया, और वो 10,000 लोगों के साथ पहले निकला। और जब रानी के साथ उसे खबर मिली कि कुछ और लोग जुड़ गए हैं, रानी की सेना में सिर्फ 2,000 लोग हुए, कुल मिलाकर के 1,500 लोग और जुड़े, और उसने मुगल शासक अकबर से फिर और सेना भेजने को कहा, और उसके पास 50,000 की सेना हो गई। आपने बताया था हमें कि दक्षिण पश्चिम की तरफ आगे बढ़ी थी रानी दुर्गावती, और दमोह में नरई पहुंची। नर्मदा नदी और गौर नदी के बीच की घाटी है, जो कि बहुत ही दुरूह है, बहुत दुर्गम एक इलाका है, और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गढ़ा की सेना ने, यानी रानी दुर्गावती की सेना ने, यहाँ अपना शिविर गाड़ दिया। लेकिन पूजा जी, एक बात पिछले बार भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब गढ़ा राज्य के पास इतने साधन थे, इतने संसाधन थे, गढ़ा इतना समृद्ध राज्य था, वैसे भी वहां कहते हैं कि उस वक्त आपने बताया कि हाथी हुआ करते थे, हाथी पाए जाते थे, बहुत समृद्ध राज्य था, कर वसूला जाता था उससे, बहुत समृद्धता आई गढ़ा में, तो सेना का गठन करने पर रानी दुर्गावती ने पहले कभी क्यों बहुत जोर नहीं दिया?
4: मुझे ऐसा लगता है कि ये हर एक जगह की खासियत होती है कि उसकी मूल प्रकृति कैसी हो। तो जैसे ये गढ़ा राज्य है, तो यहाँ बहुत समृद्ध है, अच्छी नदियाँ हैं, हरा भरा मैदान है, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, तो जहाँ बहुत समृद्ध प्रकृति होती है ना, वहाँ पर लोग भी बड़े समृद्ध होते हैं और शांत प्रिय होते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि रानी दुर्गावती का ध्यान गढ़ा राज्य के विकास की ओर है, वे मठ मंदिर बनवा रही हैं, वे विद्यालय बनवा रही हैं, तमाम तरीके के अध्ययन के काम कर रही हैं, अध्ययन अध्यापन के लिए विद्वानों को प्रश्रय दे रही हैं, इसके अलावा अपने राज्य की सीमाओं को भी सुदृढ़ कर रही हैं, व्यापार को बढ़ा रही हैं, आर्थिक समृद्धि की ओर ध्यान दी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, खासकर जब हम मध्य पूर्व एशिया की बात करें, तो वहाँ पर जिस तरीके की प्रकृति है, तो संघर्षशील लोग होते हैं, लड़ाके उसी से उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनका ध्यान हमेशा उस तरफ रहता है जहाँ समृद्ध सभ्यता हो। इसीलिए हम देखते हैं कि मध्य पूर्व की ओर से अधिक सेनाएं या लड़ाके भारत की ओर कूच करते हैं, और यहाँ पर अपने युद्ध लड़ते हैं। तो ये प्रकृति का बेसिक अंतर है। इसी प्रकृति के अंतर्गत हमने देखा कि रानी दुर्गावती ऐसा नहीं है कि उनके पास सेना नहीं रही होगी, पर ये आक्रमण अचानक से हुआ था। दूसरी तरफ आसफ खान लंबे समय से अपनी सेना को संगठित कर रहा था, तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस था। इसीलिए संभवतः रानी सेना के साथ उतनी सुदृढ़ तरीके से तैयार नहीं थी।
3: लेकिन ये बहुत कमाल का आपने अंतर बताया, और ये बहुत सोचने वाली काबिल गौर ये बात है कि ये दो अलग अलग सभ्यताओं का और दो अलग अलग लोगों के सोचने का नजरिया है। ये नजर और नजरिए की बात हो गई, तो बहुत बहुत बहुत ही अच्छी बात है ये। तो पूजा जी आगे बढ़े हम, और फिर क्या हुआ जब रानी ने अपना वहां शिविर गाड़ा, और तो क्या वो और उसकी तरफ बढ़ी कि या उन्होंने इंतजार किया कि अब आसफ खां आ जाए इस दुर्गम इलाके में हमसे भिड़ने।
4: जब रानी दुर्गावती सिंगौरगढ़ से निकलकर मुगल सेना की ओर बढ़ी, तो उन्होंने चार पड़ाव आगे बढ़ चुकी थी वो, और फिर उन्होंने अपनी योजना में अचानक से परिवर्तन किया कि सेना के एकीकरण के लिए वो घने जंगल की तरफ चली गई।
3: जी,
4: और उधर आसफ खां को ये समझ में नहीं आया कि रास्ते में से सेना अचानक से गायब कहां हो गई।
3: जी,
4: तो आसफ खां को पता नहीं चल पा रहा था।
3: जी,
4: उसने कुछ समय तो इंतजार किया।
3: हाँ,
4: और फिर निर्णय लिया कि गढ़ा कटंगा यानी कि जबलपुर की ओर वो कूच करेगा।
3: जी,
4: और उसने कर भी दिया। लेकिन इस बीच में उसे खबर मिल गई कि रानी दुर्गावती की सेना नरई की तरफ बढ़ रही है, तो उसने तुरंत अपना रास्ता बदला और वो अपनी विशाल सेना को लेकर नरई की तरफ आगे बढ़ने लगा। स्थिति बहुत विकट थी, मुगल सेना बहुत बड़ी थी जिसमें कई इक्तादार भी जुड़ गए थे, वहीं दूसरी तरफ 2 से 3 हजार की सेना रानी के पास थी।
3: जी हाँ।
4: यह मुश्किल समय था। रानी को इस बात का अंदाजा अच्छे से था कि समय बहुत ही मुश्किल है।
3: जी हाँ।
4: रानी चाहती तो संधि कर सकती थी और गढ़ा राज्य को शत्रुओं के हाथ सौंप सकती थी।
3: बिल्कुल।
4: लेकिन उस वीरांगना ने ऐसा नहीं किया। वह केवल नाम की दुर्गावती नहीं थी।
3: जी।
4: वो तो माँ दुर्गा के समान रणचंडी थी।
3: वाह।
4: कहते हैं कि रानी ने अपनी सेना को

0: उधर से सूचना मिल चुकी थी कि आसफ खान की सेना के फौजदार नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद अपनी सेना के साथ नरई के जंगलों में पहुंच रहे थे
1: जी।
0: तो आसफ खान ने अपनी सेना के आगे इन दोनों को रखा
1: जी।
0: और ये पहले पहुंचे और आसफ खान की सेना उसके अगले दिन पहुंच पाई।
1: अच्छा,
0: तो आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद जो फौजदार थे ये अपनी सेना के साथ में नरई की ओर आगे बढ़ गए। रानी ने योजना बनाई कि सबसे पहले वो आक्रमण नहीं करेंगी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने अपनी सेना को जो नरई की पहाड़ियां थी चारों ओर जो पहाड़ियां थी उस पर छुपकर खड़ा कर दिया। और उन्होंने सोचा कि जैसे ही मुगल सेना इस घाटी में प्रवेश करेगी वो उस पर धावा बोल देंगे।
1: तो मतलब कह सकते हैं कि रानी दुर्गावती और जो गोंड सेना थी वो गुरिल्ला युद्ध में भी कहीं ना कहीं महारत उनको हासिल थी, गुरिल्ला युद्ध के बारे में जानते थे। जैसा कि हम वीर शिवाजी के बारे में कहते हैं कि गुरिल्ला नीति के बारे में कि वो बहुत बड़े जानकार थे।
0: हाँ, शिवाजी के समय जो तरीका रहा गुरिल्ला वार का वैसा ही तरीका लगभग यहाँ पर भी हम शुरू में देखते हैं इस आक्रमण में। हमेशा जो जनजातियां होती हैं, जैसा मैंने कहा कि वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर लड़ती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो गोरिल्ला युद्ध के पीछे भी शिवाजी के साथ यही कारण था।
1: हाँ।
0: और यहाँ रानी दुर्गावती के साथ में भी वही तकनीक देख रहे हैं।
1: तो पूजा जी, एक और उदाहरण मेरे जहन में आ रहा है यहाँ पर कि वही नजदीक की हम बात करें तो छतरपुर राज्य के जो महाराजा छत्रसाल थे वो भी गुरिल्ला नीति के बहुत कुशल योद्धा कहे जाते हैं और कहते हैं कि बहुत ही छोटी सी एक संख्या थी और उन्होंने 3 से 4 साल तक सामना किया था मुगलों का और 10,000 मुगलों को उन्होंने एक बहुत छोटी सी संख्या जो वो लोग शायद 30 लोग जंगलों में छुपे थे मार गिराया था।
0: जी हाँ, ये देशज तकनीक कह सकते हैं इसको
1: जी,
0: कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो इस तकनीक से लड़ना जानते थे
1: जी।
0: और कई सारे युद्ध उन्होंने इतिहास में हम देखते हैं कि लड़े और जीते भी।
1: ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ आख्यान कुछ लोकगीत गाए गए रानी दुर्गावती जी की स्तुति में और ये वहां पर बहुत काम आए युद्ध में, वो क्या थी तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए।
0: हम अभी तक जब भी सुन रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मुगल दरबार में कई सारे लेखक हैं
1: जी।
0: हमने अबुल फजल का नाम सुना, फरिश्ता का, बदायूनी का, बहुत सारे नाम है। पर इस तरफ रानी दुर्गावती का इतिहास लेखन में इस तरीके का कोई दरबारी लेखक नहीं बैठा हुआ है।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: ये परंपरा का अंतर है। भारतीय परंपरा में स्वयं के गुणगान गाना एक तरीके से इसका निषेध है, अच्छा नहीं माना जाता। हाँ। इसलिए हम देखते हैं कि हमको गोंड काल का कोई विशेष लिखित इतिहास दरबारी लेखकों द्वारा नहीं मिलता, क्योंकि जब भी दरबारी लेखक लिखते हैं तो वो राजा को खुश करने के लिए लिखते हैं, इसलिए उसमें बढ़ा चढ़ा कर भी लिखा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और सामने वाले को बहुत ही निष्कृष्ट भी दिखाया जाता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यहाँ पर भारत में ऐसी कोई परंपरा दिखाई नहीं देती जिसमें कि दरबार में लेखकों को रखकर उनसे इतिहास लिखवाया जाए
1: जी।
0: इसलिए हमें सीधे भी इतिहास नहीं मिल पाता। पर हाँ, अगर हम
1: लोग
0: तो हम देखते हैं कि आख्यान गाने की परंपराएं हमको दिखती हैं, जस गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं,
1: यश को जो पहले जस कहते थे
0: तो खूब सारे आख्यान जस गीत हम हमको इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो मैं आपको एक लोकगीत भी सुनाऊंगी।
1: वाह,
0: मुझे गाना नहीं आता पर बोल के सुनाऊंगी
1: जी।
0: तो गड़ा राज्य की जो प्रजा थी वो रानी का बहुत सम्मान करती थी
1: जी।
0: और वो तो उन्हें माँ दुर्गा के समान मानती थी।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए आज भी जो आख्यान गाए जाते हैं इस क्षेत्र में उसमें हमको नरई के युद्ध की घटना बड़े विस्तार पूर्वक मिलती है
1: जी।
0: रानी को याद करते हुए आज भी बहुत सारे जो जस गाए जाते हैं उनमें रानी को माँ दुर्गा के समान बताया गया है और युद्ध के लिए रानी ने कैसे हुंकार भरी, वो कैसी दिखती थी, गोंड सेना कैसे तैयार हुई, इसका जैसे मानो आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा हो
1: जी।
0: तो एक सेला लोकगीत है
1: जी।
0: तो देखिए उस लोकगीत में क्या कहा गया है
1: जी।
0: रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण माँ जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए।
1: वाह।
0: रण माँ जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए, राजा दलपत के रानी हो, राजा दलपत के रानी हो, रण चंडी कहाए, डगर डगर माँ डोलो हो, गण मंडला बचाए, रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए।
1: वाह, क्या बात।
0: तो इसका अर्थ यह है कि जैसे माँ दुर्गा अपनी संतानों की रक्षा करती है, महारानी दुर्गावती वैसे ही अपनी प्रजा की रक्षा करती है। वो रण में तलवार लेकर जूझ पड़ती है, वह रानी दुर्गा कहलाती है
1: जी।
0: वह राजा दलपत की रानी।

0: है रणचंडी कहलाती है। डगर डगर माँ डोलो हो, यानी कि माँ डगर डगर डोल रही है। माँ गढ़ मंडला को बचाने के लिए डगर डगर डोल रही है। माँ दुर्गा अपने हाथों में तलवार लिए रणचंडी हो गई है।
1: वाह पूजा जी, क्या बात है। रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे तलवारी रानी दुर्गा कहाए। और पूजा जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो अपना यशोगान कराने की जो परंपरा थी वो हमारे यहाँ की नहीं थी, और ख़ास तौर पर यदि बात करें तो जो जनजातीय राजवंश थे उनमें तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि वो अपना ही यशोगान लिखवाएं। और बहुत पहले मैंने कहीं पर ये चीज़ पढ़ी थी कि इतिहास हमेशा अपनी ही देख रेख में लिखवाया जाता है, और उन्हें पता होता है कि आज ना सही, यदि वो आने वाले 100 सालों के बाद, 1000 सालों के बाद भी अपने अपने नाम को देखना चाहते हैं तो वो ऐसे कुछ लोगों को अपने यहाँ पर रखते हैं कि बस आप बैठिए और स्तुति करिए, हमारे लिए गीत बनाइए, हमारा बखान लिखिए और हमारे लिए किताब लिखिए। जैसे कि आप हमने कई बार जिक्र किया आईना अकबरी का, जिसे अकबर की आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा तो यदि कोई कहेगा तो वो खुद कहेगा, लेकिन वो तो दूसरे से लिखवाई गई थी, तो आत्मकथा कैसी हुई, एक सवाल या निशान तो यहाँ पर ये लग जाता है।
0: अब आईने अकबरी का अर्थ ही है कि जो आईना अकबर को दिखाया जाए।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: वो समाज का आईना नहीं है, वो अकबर को दिखाता हुआ आईना है।
1: बिल्कुल।
0: तो दरबारी कवियों का जो उल्लेख होता है वो बहुत विश्वसनीय माना भी नहीं जाता इतिहास में।
1: जी।
0: ये जरूर है कि उसमें से कुछ तथ्य निकालकर इतिहास बनाया जाता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ भले ही हमारा राजा या रानी पराजित भी हो गया हो,
1: हाँ,
0: युद्ध में, लेकिन वो हृदय में राज करता है, हृदय में जीत जाता है।
1: जी।
0: और जनता उसे कहते नहीं है कि आप हमारा आख्यान लिखिए।
1: जी।
0: जब वो नहीं रहता है तब भी जनता सदियों तक उसके आख्यान, उसके जस अपने दिल में संजोकर रहती है और अवसर आने पर उसे जोर शोर से गाती है।
1: और यही जो बातें हैं जो जिन्हें हम आज जनश्रुतियां कहते हैं, वो एक दूसरे से होते हुए इतने सैकड़ों सालों बाद भी आज हमारे तक पहुंच रही हैं, तो निश्चित रूप से जो समर्पण का भाव रहा होगा रानी दुर्गावती के प्रति, या उस समय के हमारे जो भारतीय राजा थे या रानी थे उनके प्रति प्रजा का, वो आज भी यहाँ पर गीतों के जरिए दिखाई देता है, जनश्रुतियों के जरिए दिखाई देता है, लोक की कही हुई सारी बातों में दिखाई देता है। अब जैसे कि आपने शुरू किया था कि एक रानी दुर्गावती कैसी दिख रही हैं, वो भी कुछ गीत में था, वो भी आपसे जानना चाहेंगे।
0: जरूर। अगर हम आख्यानों को ध्यान से सुने या लोकगीतों में कुछ पंक्तियां ढूंढें तो हमको ऐसी भी पंक्तियां मिलती हैं जो बताती हैं कि जब नरई का युद्ध शुरू हुआ तो रानी की वेशभूषा कैसी थी, रानी दिख कैसी रही थी। अभी हमने पिछली पंक्तियों में देखा कि उनके पराक्रम के बारे में कहा गया, अब वो दिख कैसे रही थी, वो तैयार कैसे हुई, तो इस पर 4 पंक्तियां हैं एक लोकगीत की। गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियो, गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियो, कमर पोतिया सजाए, पावन माँ सोहे पैजनिया, लंबे केस बनाए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्हें वो रानी महारानी माँ दुर्गा जैसी दिख रही है।
1: जी।
0: तो वो क्या कह रहे हैं कि गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियो, गले में माँ ने मूंगा मोती की माला पहनी है।
1: जी।
0: कमर में पोतियों का कमरबंद सजा है।
1: जी।
0: पावन में सोहे पैजनिया, यानी पाँव में पायले हैं और उनके केस लंबे हैं।
1: जी।
0: तो आगे वो कहते हैं अगली लाइनों में, नाकन में पहिरे नथुनिया, मतलब कि नाक में नथ पहनी है और माथे पर टिकुरी सजाए, बिंदी लगाई हुई है।
1: बिल्कुल।
0: और दमक दमक रानी गर्जे फौजी दे ललकार, इस तरह रानी शौर्य बल से माँ दुर्गा की तरह दमक रही है और फौजियों को ललकार रही है।
1: जी।
0: तो रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण माँ जूझे धरे तलवार, रानी दुर्गा कहाए,
1: रानी दुर्गा कहाए। वाह क्या बात है।
0: रण में जो तलवार लेकर शत्रुओं से जूझ रही हो, ऐसी रानी दुर्गा माँ को आज तक आख्यानों में याद किया जाता
1: है। किया जाता है। बिल्कुल। ये तो आपने रानी दुर्गावती के बारे में बताया कि जो आख्यानों में मिलता है, लोकगीतों में सैला गीत आपने हमें बताया सुनाया, लेकिन जो उनकी गूंड सेना थी वो कैसी थी, वो कैसे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी, ये बताइए।
0: लोकगीतों में हमको सेना के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी तो मिलती है।
1: जी।
0: इस गीत की 4 पंक्तियां हैं। गोंडी फौजी रेम लगे, गोंडी फौजी रेम लगे, छन्नी चमकत जाए, हुकुम रानी के पाए के सबे बाना खनखनाए, अखियन से बरसे अगिया, तन से रकत के धार, बैरी दुश्मन के खातिर फौजी सबे तैयार।
1: वाह क्या बात।
0: मतलब ये हुआ कि गोंड फौज जो है अब अपने रंग में आ गई है और वो चमचमा रही है अच्छी बढ़िया
1: जी।
0: और इसके साथ में जब रानी का हुकुम हुआ है तो सब अपने तन से रक्त की धार बहाने को तैयार हैं। उनकी आंखों से काय अखियन से बरसे अगिया, आंखों से आग बरस रही है और बैरी दुश्मन की खातिर फौजी सभी तैयार। तो सारे लोग तैयार हैं अपनी रानी के लिए, अपने गढ़ा राज्य के लिए जान देने के लिए, दुश्मन के सामने आकर डट चुके हैं।
1: तो श्रोताओं, गोंड सेना तैयार है, आंखों में सबके अंगार है, युद्ध का बिगुल बज चुका है और गोंड सेना का हर सैनिक युद्ध की अग्नि में अपनी आहुति देने के लिए भी तैयार है। जबकि उन्हें ये चेताया गया था कि ये काम खतरे वाला है, जो डगर है वो खतरों से भरी हुई है, अगर आप वापस पीछे लौटना चाहें तो लौट जाएं। लेकिन जो भी सेना में शामिल हर एक व्यक्ति था वो न सिर्फ रानी दुर्गावती के प्रति समर्पित था बल्कि बहुत देशभक्त था। वो जानते थे कि उनकी शायद जान जा सकती है, लेकिन उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले बल्कि वो जोर जोर से हुंकारे और उन्होंने कहा कि नहीं रानी, हम आपके साथ हैं। तो युद्ध का मैदान सज चुका है, हम सातवीं कड़ी तक पहुंच चुके हैं और आठवीं कड़ी में देखते हैं कि युद्ध कैसा होता है रानी दुर्गावती के बीच और आसफ खां की बहुत लंबी चौड़ी सेना के बीच। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और आगे भी हम चाहेंगे कि रानी दुर्गावती की कहानी आप हमें यूं ही सुनाती रहें।
0: जरूर।
1: तो श्रोताओं, वक्त है आपसे इजाजत लेने का। मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा आपसे लेता हूं इजाजत। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

इतिहास के पन्नों से। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम टेक गुरु।

अब मैं हूं बिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम टेक गुरु का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी जी से,
2: जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं भोपाल स्थित सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। टेक गुरु कार्यक्रम के तहत हमने उनसे बात की
1: विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर। यह दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से ये बातचीत।
3: सर, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लेकिन कुछ हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर।
4: मैं यहाँ वर्तमान में प्रोफेसर हूँ सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल में। और यदि बात करें तो बचपन से ही मैं दृष्टिहीन हूँ, और बाय बर्थ इनफैक्ट। और शुरू में मेरी पढ़ाई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें हुई। और फिर प्रयास किए कि कैसे, मैंने रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर फिर पढ़ाई हुई और उस टाइम पे किताबें वगैरह मिलती नहीं थी। तो वहाँ बाद में तो शुरू में तो लोग सुनाते थे पढ़ के, बाद में फिर कैसेट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर करके अपने लेसन्स तैयारी वगैरह करी। 1989 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट PSC के थ्रू, और मैंने सिलेक्शन हुआ उसके बाद में, और मैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज में। तो 1993 में हम लोगों को पता पड़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक इनोवेशन हुआ है, और उन्होंने कोई स्पीच सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको कंप्यूटर पे लगा के, एक बॉक्स को जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो कुछ भी है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई ब्लाइंड लोगों के लिए, और इस तरह से कंप्यूटर पे फिर मैंने अपना खुद का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पे आरुषि करके, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जहाँ हमने ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। तो कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी तक बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो पर डिपेंडेंट थे या ब्रेल पर डिपेंडेंट थे, ब्रेल में किताबें होती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको अपने लिख कर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये इट वॉज़ अ बिग रेवोल्यूशन इन दोज डेज कि अब चाहो तो आप अपनी बात कंप्यूटर पर लिख सकते हो और प्रिंट करके अपने बात भेज सकते हो या मेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी टेक्नोलॉजी की।
3: तो सर, इस तरह से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, अपने पढ़ाई की, और इतना आपने सारा अपनी जर्नी हमसे शेयर की, तो वो बीच में सर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से आपका जुड़ाव होता रहा?
4: देखिए, अगर जहाँ तक हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहें तो हम टेक्नोलॉजी को 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर पे टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब ये है कि जो जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है स्क्रीन टेक्स्ट, उस वो पूरा स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि जो कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पे अवेलेबल है वो टेक्स्ट में, इन स्पीच में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ, क्योंकि मान लीजिए उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं वो भी आपको कमांड दे के आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फ़र्ज़ कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ें बोल्ड में करना है, इटैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कित लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है, या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट में आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर के आने के बाद में लार्ज प्रिंट की बुक्स निकालना भी बड़ा सरल हो गया है कि अगर आप चाहें तो जो बच्चे कम देख पाते हैं और वो बड़े अक्षर पढ़ सकते हैं तो हम किताबों को लार्ज फॉन्ट में तैयार कर सकते हैं। फिर किताबों को में जो अक्षर लिखे हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस मैग्नीफायर्स आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मैग्नीफाई कर देते हैं। लो विजन वाले लोगों के लिए एक एडवांटेजेस चीज़ हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं, तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम आप बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है, तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक अंदर एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं, तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है पढ़ना है तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इको सिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम DAISY। तो इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है साइटेड बच्चा है किताब को पेज वाइज हेडिंग वाइज सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है, ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी, कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115 तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर जब हम रिकॉर्ड करते थे उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका मान ली किताब जो है 12 घंटे की किताब है तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि 5वें नंबर के कैसेट में है कि 8वें नंबर के कैसेट में है। और फिर हमको उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर सब सेक्शन में जाना है या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने क्वेश्चंस देखने, तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
3: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा।
4: जी, उनका जो
3: हर क्षेत्र में,
4: हाँ, लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है। बच्चे जो है वो अपने आप अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस, कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने। लोग IT के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल दे आर गोइंग IT का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, MBA कर कर के लोग आगे निकल रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में। वो सब लोग जो हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियाँ मिलने लगी हैं लोगों को और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है IT फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है, तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसका वो का उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है, या मान लीजिए मैं इस रूम में आपको बैठ बात कर रहा हूँ तो मैंने इस रूम की फ़ोटो खींची, तो इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मोबाइल के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुँच सकता है। तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना किसी और की मदद से जान सकते हैं।

0: सर, हम अक्सर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं काफ़ी, हमें क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर किस तरह से एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे मदद मिल सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो आपको ऑडियो में फीडबैक दे सकती है, वो आपको हैप्टिक फीडबैक मतलब वाइब्रेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको वॉइस क्लूज के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उसका यूज़ अपने मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हीलचेयर यूज़ कर रहा है, मोटराइज्ड व्हीलचेयर, तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
0: सर, एक बात और, ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते, मालूम नहीं होता। सर, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
1: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुंचाएंगे, जहां तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जाके कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है इस टेक्नोलॉजी का, और कहाँ कहाँ वो अपने आप को, अपने डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये यूज़ करके। तो वो काम है लोगों का जो कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस इससे मदद मिल पाएगी।
0: अक्टूबर के 2nd Thursday जो होता है उस पर विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो इस पर और कौन कौन से सर कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं स्पेशल? क्योंकि पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आया ही है, आप जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
1: देखिए, ऐसे जो ऑक्सीजन्स होते हैं जी, इनका पर्पज़ यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुँच पाए कि नंबर एक की दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात यह कि जो लोग साइट लूज कर चुके हैं उनको सही गाइडेंस मिले, और वो अपने अगर लेट साइट लूज होती है, या एक कहना चाहिए कि एक उम्र के बाद अगर साइट लूज़ होती है तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका फाइनल ईयर और धीरे धीरे करके उसकी साइट जा रही है, तो एक ट्रॉमा के स्टेट में पहुंच जाता है और वो डिप्रेशन की स्टेट में, तो उसको निकालना उस स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं, तुम बिना आके भी सब कुछ कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिलवाना लोगों को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में इस तरह के फेस्टिवल्स ओकेजन्स मदद करते हैं।
0: तो सोसाइटी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती
1: है? सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि अगर हम इस बात पे विश्वास करें जी, या इस बात को हम कम्युनिकेट करें, या इस बात को समझें कि हर आदमी हर काम को कर सकता है, उसको काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कैसे करेगा वो हमको फिर फिगर आउट करना होगा। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों को नौकरियां नहीं देते कि अरे ये ब्लाइंड है, अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने के लिए, अरे पहले नौकरी तो दो आप उसको, तो और फिर उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। तो वो अगर हम आपको इस बात में अगर हम लोगों को समझा पाएँ कि हर व्यक्ति, और कई बार क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, डिसेबल्ड लोगों की, ये लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए उनको लोगों को काम देने में डरते हैं, लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती जो एक्चुअल उनको एम्पावर करने में करा जाए लोगों को और उनको सपोर्ट करें तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। तो सोसाइटी का कई काम है कि उसमें आपकी हेल्प करें।
0: सर आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की कि किस तरह से आखिर में फिर से आप उनसे ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपनी जो पढ़ाई को ना रुकने दें और अपने भविष्य को बनाएं?
1: सबसे बड़ी बात है कि हमको जो इनक्विजिटिवनेस है या हमारी जिज्ञासा है अगर लोगों में बनी रहेगी और वो एक उनमें डिटर्मिनेशन रहेगा कि हमको अपने आगे बढ़ना है तो लोग उनकी डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े और फिर समाज भी उसको उनको मदद करे। दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। और आई थिंक ये एक बात है।
0: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा
1: जी,
0: मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं
1: जी। हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग मिल के एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक आस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स कैसी हों कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है, व्यक्ति है, वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए
0: जी।
1: है ना, पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है, एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि न केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैंप, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम। अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है क्योंकि टच स्क्रीन पर टाइप करके नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट्स, ऐप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है, तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम यह है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
0: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
1: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएं भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता
0: जी
1: या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता तो तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करे, वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाए कि डिसेबल्ड लोग भी उसका यूज़ कर पाए।
0: सर आखिर में कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
0: सर आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
1: जी जी थैंक यू।
0: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेक गुरु। बने रहिए हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम लेकर उपस्थित होंगे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

दोस्तों, कला कल्लोलिनी के पिछले एपिसोड में हमने ग्वालियर घराने के महान ध्वजवाहक पंडित विनायक पटवर्धन जी की जीवन यात्रा और उनकी तराना गायकी के अद्भुत जादू को बहुत गहराई से महसूस किया था। आज हमारे स्टूडियो में सुरों की वही पवित्र गंगा एक बार फिर पूरे वेग से बह रही है। आज के हमारे शब्दों में उसी ग्वालियर परंपरा की प्रमाणिकता और मिठास है और आज की यह विशेष प्रस्तुति समर्पित है स्वयं विनायक राव पटवर्धन जी के पूज्य गुरु, भारतीय शास्त्रीय संगीत के पुनरुद्धारक और संगीत महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के पावन जीवन चरित्र को।

0: संगीत यानी वो आवाज जो बेआकार भावनाओं को एक सुंदर रूप दे देती है, और ताल यानी वो धड़कन जो इंसान के दिल की रफ्तार को इस कायनात की गति से जोड़ देती है। लेकिन जब ये संगीत और ताल किसी साधारण गायक के बजाय किसी ऐसे महान साधक के गले से निकलते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी को ही एक तपस्या बना लिया हो, तो वो महज मनोरंजन नहीं रहता, वो आत्मा को छूने वाला, सोए हुए जमीर को जगाने वाला और पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाला एक दिव्य माध्यम बन जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के पूरे इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो एक ऐसा नाम सबसे ऊंचे शिखर पर चमकता हुआ दिखाई देता है जिसने शास्त्रीय संगीत को राजा महाराजाओं के महलों, बंद कमरों और बदनामी के अंधेरों से बाहर निकालकर आम लोगों के दरवाजों, गांव-गांव की गलियों और आजादी की लड़ाई के राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचा दिया।
1: जी हां श्रोताओं, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर भारतीय संगीत का वो महान स्तंभ जिन्होंने न केवल शास्त्रीय रागों की शुद्धता और मर्यादा को बचाए रखा बल्कि गंधर्व महाविद्यालय जैसी ऐतिहासिक संस्था की स्थापना करके संगीत की शिक्षा को एक नया वैज्ञानिक और बेहद आसान रूप दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि संगीत सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की जागीर नहीं है बल्कि ये हर उस इंसान का हक है जो सुरों से प्यार करता है। आज की ये विशेष दीर्घ प्रस्तुति पंडित जी के बचपन के संघर्षों, उनकी आंखों की रोशनी जाने के बाद की कल्पनातीत साधना, उनके गुरु ऋण, देश भर की ऐतिहासिक यात्राओं, गंधर्व महाविद्यालय के निर्माण, आजादी के आंदोलन में उनके योगदान, उनके महान शिष्यों की पूरी कतार और उनकी अविस्मरणीय सांस्कृतिक विरासत को पूरे विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करती है।
0: तो चलिए श्रोताओं, अपने मन को शांत कर लीजिए और वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हुए हमारे साथ चलिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध के उस ऐतिहासिक दौर में जहां से भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक नई भोर का आकाश हुआ था।

0: 18 अगस्त 1872 की तारीख, जगह थी महाराष्ट्र में स्थित कुरुंदवाड़ रियासत। इस सुरम्य और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भूमि पर एक अत्यंत धार्मिक, सुसंस्कृत और संगीत प्रेमी परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। पिता गोपाल राव पलुस्कर स्वयं एक जाने माने और प्रतिष्ठित कीर्तनकार थे। वो भगवान की भक्ति में लीन होकर जब कथा कीर्तन किया करते तो पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता था। बालक के जन्म के बाद परिवार में अपार खुशियां छाई और उसका नाम रखा गया विष्णु।
1: पिता के कीर्तनकार होने का सबसे बड़ा फायदा बाल विष्णु को ये मिला कि उन्हें जन्म से ही घर में भजन, कीर्तन, ढोलक, मंजीरे और भक्ति संगीत का अद्भुत वातावरण मिला। जब विष्णु बहुत छोटे थे तभी से वे अपने पिता के साथ कीर्तनों में जाया करते थे। बालक विष्णु का ध्यान, उनकी स्मरण शक्ति और उनकी आवाज का सुरीलापन देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। जो भजन बड़े बड़े गायक घंटों में याद करते थे, बाल विष्णु उसे एक बार सुनकर ही पूरी तरह कंठस्थ कर लेते थे। उनके कानों में हर समय सुर और ताल की गूंज बनी रहती थी।
0: लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जब विष्णु की उम्र मात्र 10 या 12 वर्ष की थी और वो अपने जीवन के सबसे सुनहरे दौर में कदम रख रहे थे, तब उनके जीवन में एक ऐसा भयावह मोड़ आया जिसने उनके पूरे भविष्य पर अनिश्चितता का एक काला साया डाल दिया। कुरुंदवाड़ रियासत में दत्त जयंती का पवित्र त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। पूरे शहर को सजाया गया था और जगह जगह आतिशबाजी की जा रही थी।
1: बाल विष्णु भी अपने दोस्तों के साथ आतिशबाजी देखने के लिए उत्साहपूर्वक वहां मौजूद थे। तभी अचानक एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा घटा। एक बहुत ही शक्तिशाली पटाखा बालक विष्णु के मुंह और आंखों के बेहद करीब आकर अचानक फट गया। आतिशबाजी के जहरीले धुएं और बारूद की भीषण गर्मी ने बाल विष्णु के चेहरे को बुरी तरह झुलसा दिया और सबसे दुखद बात यह हुई कि इस हादसे में उनकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई।
0: जरा सोचिए श्रोताओं, सिर्फ 10-12 साल का एक मासूम बच्चा जिसकी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी थी, एकाएक पूरी तरह अंधेरे के भयानक समुद्र में डूब गया। घर में कोहराम मच गया। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। हर कोई यही सोच रहा था कि अब ये दृष्टिहीन बालक अपनी जिंदगी कैसे जिएगा, इसका भविष्य क्या होगा। लेकिन दोस्तों, कुदरत का नियम है कि जब वो इंसान से उसकी कोई एक चीज छीनती है तो बदले में उसे कोई एक अलौकिक शक्ति भी दे देती है।

0: रोशनी नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर है, और जब वह गाता है तो उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव और कशिश है। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि इस बालक को लाचारी की जिंदगी जीने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने बालक विष्णु को संगीत की उच्च शिक्षा दिलाने के लिए मिरज भेजने का फैसला किया।
1: मिरज, जो अपनी खास मिट्टी, हवा और तानपुरों के निर्माण के लिए पूरे देश में मशहूर था, मिरज में उस समय भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान विद्वान और उस्ताद पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी निवास किया करते थे। पंडित बालकृष्ण बुआ जी वही महान संगीतकार थे जो उत्तर भारत के ग्वालियर घराने की शुद्ध, प्रामाणिक और ओजस्वी गायकी को महाराष्ट्र की धरती पर ले आए थे। जब कुरुंदवाड़ के राजा का संदेश लेकर बाल विष्णु पंडित बालकृष्ण बुआ जी के सामने पहुंचे, तो बुआ जी ने बालक के माथे के तेज और उनके कंठ की शुद्धता को पहली ही नजर में ताड़ लिया।
0: बालकृष्ण बुआ जी ने कहा, ये बालक कोई साधारण बच्चा नहीं है। आंखों का ना होना इसके लिए अभिशाप नहीं, बल्कि संगीत के मामले में वरदान साबित होगा, क्योंकि अब इसका ध्यान दुनिया की चकाचौंध से हटकर सिर्फ और सिर्फ स्वरों पर केंद्रित रहेगा। और इस तरह बालक विष्णु अपने गुरु की शरण में आ गए। यहां से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का वो दौर, जिसे अगर हम कठोर तपस्या का दौर कहें तो गलत नहीं होगा।
1: मिरज के उस आश्रम में गुरु शिष्य परंपरा का बेहद सख्त नियम था। विष्णु के लिए सुबह की शुरुआत तड़के 4 बजे हो जाती थी। जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा होता, तब बाल विष्णु ठंडे पानी से स्नान करके सूती धोती पहनकर अपने तानपुरे के साथ गुरु के सामने बैठ जाया करते। आंखें न होने के कारण विष्णु का पूरा अस्तित्व केवल कानों में सिमट आया था। गुरुजी जो भी तान या बंदिश गाते, विष्णु उसे पलक झपकते ही अपने मन के पटल पर छाप लिया करते।
0: दोस्तों, गुरु बाल कृष्ण बुआ जी ने विष्णु को ग्वालियर घराने की गायकी के मूल सिद्धांत सिखाए, जैसे आवाज को पेट और नाभि से कैसे उठाना है, खर्ज यानी मंद्र सप्तक का रियाज कैसे करना है, और सा के सुर को घंटों तक बिना हिलाए कैसे साधे रखना है। ठंड के दिनों में भी जब उंगलियां जमने लगती थीं, विष्णु बिना रुके लगातार 4-4 घंटे तक सिर्फ सा का अभ्यास करते थे।
1: रियाज के अलावा विष्णु आश्रम के अन्य सभी काम भी पूरी निष्ठा से करते। गुरु जी के लिए पानी भरना, आश्रम की साफ सफाई करना, खाना पकाने में मदद करना और गुरु जी की मालिश करना, विष्णु हर काम में सबसे आगे रहा करते। गुरु भक्ति उनके रोम रोम में बसी हुई थी, और इसी कठिन और अनुशासित माहौल में विष्णु ने पूरे 12 वर्षों तक अन्न जल की परवाह किए बिना केवल और केवल संगीत की ही साधना की।
0: 12 सालों की इस अटूट साधना ने विष्णु के कंठ को फौलाद जैसा मजबूत और पानी जैसा सुरीला बना दिया। अब वह ग्वालियर घराने के कठिन से कठिन रागों, जटिल तानों, मींड, गमक और लयकारी में पूरी तरह पारंगत हो चुके थे। उनका कंठ 3 सप्तकों में बड़ी आसानी से घूमता था, लेकिन जैसे जैसे उनकी शिक्षा पूरी हो रही थी, उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल और तड़प जन्म ले रही थी।
1: श्रोता, 19वीं सदी के अंत में भारतीय शास्त्रीय संगीत जिस दौर से गुजर रहा था, वो बहुत ही चिंताजनक दौर था। उस जमाने में शास्त्रीय संगीत या तो रजवाड़ों और नवाबों के दरबारों की विलासिता का साधन बना हुआ था, या फिर नर्तकियों तक ही सीमित होकर रह गया था। संभ्रांत, पढ़े लिखे और कुलीन परिवार के लोग संगीत को बुरी और चरित्र भ्रष्ट करने वाली कला माना करते।
0: जी हाँ, ये वो दौर था जब अगर कोई अच्छे घर का बच्चा संगीत सीखने की इच्छा भी जताता तो समाज उसे बुरी नजरों से देखता था। संगीतकारों और गायकों को लोग गवैया या मिरासी कहकर नीचा दिखाते थे। उन्हें समाज में वो सम्मान नहीं मिलता था जो एक शिक्षक, डॉक्टर या विद्वान को मिलता था। इसके अलावा गुरु लोग अपने घरानों की बंदिशों और रागों की बारीकियों को इतना गुपचुप रखते थे कि वे अपने सगे बेटों के अलावा किसी और को पूरी विद्या नहीं सिखाते थे। संगीत

0: ज्ञान बंद कमरों में घुट रहा था।
1: और जब युवा विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने समाज की इस दयनीय स्थिति को देखा तो उनका संवेदनशील और स्वाभिमानी मन तड़प उठा। वो सोचने लगे कि जिस संगीत को हमारे शास्त्रों में ब्रह्मनाद और ईश्वर की भक्ति का माध्यम कहा गया है, उसे समाज ने इतना नीचा दर्जा कैसे दे दिया? क्या संगीत सिर्फ राजाओं का दिल बहलाने या महफिलों की शान बढ़ाने के लिए है?
0: इसी तड़प के बीच पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक संकल्प लिया। उन्होंने अपने मन में ये प्रण किया, मैं संगीत को दरबारों की गुलामी और कोठों की गंदगी से बाहर निकालूंगा। मैं शास्त्रीय संगीत को इतना पवित्र, अनुशासित और सम्मानीय बनाऊंगा कि समाज का सबसे कुलीन और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने बच्चों को गर्व से संगीत सिखाएगा। मैं संगीत को ईश्वर की पूजा और आम जनता का अधिकार बनाकर रहूंगा।
1: श्रोताओं, ये कोई छोटा संकल्प नहीं था। एक दृष्टिहीन, बिना पैसे और बिना किसी बड़े सहारे के पूरे समाज की सोच से टकराना एक असंभव सा काम था। लेकिन जिनके इरादे फौलादी होते हैं वो ही इतिहास रचते हैं। सन 1896 में उन्होंने अपने गुरु पंडित बालकृष्ण बुआ जी के चरणों में सिर झुकाया, उनका आशीर्वाद लिया और मिरज की धरती को छोड़कर अपनी महान राष्ट्रीय यात्रा पर निकल पड़े।
0: मिरज छोड़ने के बाद पंडित विष्णु दिगंबर जी ने किसी राजा के दरबार में जाकर शाही गायक बनना स्वीकार नहीं किया। अगर वे चाहते तो अपनी अद्भुत गायकी के दम पर किसी भी बड़ी रियासत में आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उनका मकसद पैसा या आराम कमाना नहीं था। उनका मकसद संगीत का पुनरुद्धार करना था
1: और इसके लिए उन्होंने उत्तर भारत का रुख किया। वो गुजरात के बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद से होते हुए राजस्थान के जयपुर, अजमेर और फिर उत्तर प्रदेश के झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा और दिल्ली पहुंचे। वो जहां भी जाते वहां के प्रतिष्ठित नागरिकों, वकीलों, शिक्षकों और डॉक्टरों से मिलते और उन्हें शास्त्रीय संगीत के महत्व के बारे में बताते।
0: उस दौर में पंडित जी ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जिसने भारतीय संगीत इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के सार्वजनिक कॉन्सर्ट आयोजित करने शुरू किए। उससे पहले कभी किसी ने शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए टिकट खरीदने की बात सोची भी नहीं थी। लोग समझते थे कि संगीत तो मुफ्त की चीज है या सिर्फ राजाओं के यहाँ सुनने को मिलती है।
1: पंडित जी ने बहुत ही स्वाभिमान के साथ कहा, अगर आप किसी नाटक या सर्कस को देखने के लिए टिकट खरीद सकते हैं तो ईश्वर के बनाए इस पवित्र शास्त्रीय संगीत को सुनने के लिए आपको अपनी जेब से सम्मानजनक राशि देनी ही होगी। कला मुफ्त में मांगने की चीज नहीं है। उन्होंने कॉन्सर्ट हॉल किराए पर लिए, टिकटें बेची और मंच पर एक संत की भांति बैठकर शास्त्रीय रागों की ऐसी वर्षा की कि लोग दंग रह गए।

0: मंच पर पंडित जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि देखने वाले नतमस्तक हो जाते थे। लंबा गठीला शरीर, माथे पर बड़ा सा तिलक, गले में भगवा गमछा, सफेद धोती कुर्ता और हाथ में तानपुरा। जब वे मंच पर बैठकर अपनी बुलंद आवाज में गाना शुरू करते थे तो ऐसा लगता था मानो कोई प्राचीन काल का ऋषि मुनि संगीत की वेदों की रचनाएं पढ़ रहा हो। उन्होंने संगीत सभाओं से शराब, तंबाकू और अभद्र व्यवहार को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। जो भी उनकी सभा में आता उसे बेहद अनुशासित होकर बैठना पड़ता था।
1: और इस तरह पंडित जी ने गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में संगीत के प्रति लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। जो लोग संगीतकारों से दूरी बनाते थे वो अब पंडित जी के चरणों में बैठकर संगीत सुनने लगे। लेकिन पंडित जी जानते थे कि सिर्फ कॉन्सर्ट करने से काम नहीं चलेगा। अगर संगीत को हमेशा के लिए जिंदा रखना है तो इसके लिए एक स्थायी संस्था भी बनानी होगी। और इसी सोच के साथ वो पहुंचे पंजाब के तत्कालीन ऐतिहासिक शहर लाहौर में।
0: पंजाब का लाहौर शहर, जो उस समय कला, साहित्य और राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। लाहौर पहुंचकर पंडित विष्णु दिगंबर जी ने अपने जीवन के सबसे बड़े सपने को साकार करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों के सहयोग से एक किराए का मकान लिया।
1: और फिर आया भारतीय इतिहास का वो स्वर्णिम दिन, 5 मई 1901। इसी दिन पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। श्रोताओं, ये भारत के पूरे इतिहास में पहला मौका था जब संगीत की शिक्षा देने के लिए किसी राजा की मेहरबानी या गुरु के घर की बंदिशों से दूर एक पूरी तरह से आधुनिक, सार्वजनिक और अनुशासित म्यूजिक स्कूल खोला गया था।
0: गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना भारतीय कला जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इस संस्था के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, चाहे वे अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो। पंडित जी ने स्पष्ट कर दिया कि संगीत पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है, जिसके अंदर सीखने की तड़प है वे यहाँ आकर सीख सकता है।
1: पंडित जी ने गंधर्व महाविद्यालय को चलाने के लिए जो नियम बनाए वो आज के जमाने के किसी आधुनिक विश्वविद्यालय से कम नहीं थे। उन्होंने संगीत सिखाने के लिए पहली बार एक वैज्ञानिक और क्रमबद्ध सिलेबस तैयार किया। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग राग, बंदिशे और ताल निश्चित किए गए।
0: उससे पहले शास्त्रीय संगीत पूरी तरह से मौखिक परंपरा पर चलता था। गुरुजी ने जो गा दिया शिष्य ने याद कर लिया। कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता था, जिसके कारण कई दुर्लभ राग और बंदिशे गुरु की मृत्यु के साथ ही हमेशा के लिए गायब हो जाती थी। इस बहुत बड़े नुकसान को रोकने के लिए पंडित विष्णु दिगंबर जी ने रात दिन मेहनत करके विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति यानी नोटेशन सिस्टम की खोज की।
1: इस स्वरलिपि पद्धति के जरिए किसी भी राग, बंदिश, तान, मीण और ताल को कागज पर अक्षरों और चिन्हों के माध्यम से पूरी शुद्धता के साथ लिखा जा सकता था। उन्होंने खुद कई किताबें लिखी और अपने विद्यालय के प्रेसों में उसे छपवा कर छात्रों में भी बांटा। अब कोई भी छात्र किताब देखकर भी बंदिश का रियाज कर सकता था। यह भारतीय संगीत के इतिहास में ज्ञान को सुरक्षित रखने का सबसे क्रांतिकारी कदम था।
0: श्रोताओं, गंधर्व महाविद्यालय में सिर्फ संगीत ही नहीं सिखाया जाता था, बल्कि छात्रों के चरित्र निर्माण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। छात्रों को सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, प्रार्थना करनी होती थी, योगासन करने पड़ते थे और फिर संगीत का रियाज होता था। छात्रों को सादे कपड़े पहनने होते थे और पूरी तरह से नशा मुक्त और अनुशासित जीवन जीना होता था।
1: लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय इतना प्रसिद्ध हो गया कि पूरे भारत से माता पिता अपने बच्चों को वहां संगीत सिखाने के लिए भेजने लगे। जो समाज कल तक संगीत से नफरत करता था, वही समाज अब गंधर्व महाविद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए कतारों में खड़ा था। पंडित जी का सपना अब सच होने जा रहा था।
0: लाहौर में मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद पंडित जी ने इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने का फैसला किया। सन 1910 में वे मुंबई आए और मुंबई में गंधर्व महाविद्यालय की एक विशाल इमारत और मुख्य केंद्र की स्थापना की। मुंबई का ये केंद्र भारतीय संगीत का सबसे बड़ा गढ़ बन गया, जहां से निकलकर सैकड़ों संगीतकारों ने देश भर में शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार किया।

0: श्रोताओं, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी सिर्फ संगीत के उस्ताद या शिक्षक ही नहीं थे, उनके सीने में भारत माता की आजादी के लिए तड़पने वाला एक सच्चा देशभक्त का दिल भी धड़कता था। 20वीं सदी की शुरुआत में जब पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट हो रहा था, तब पंडित जी ने संगीत को आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार बना दिया।
1: जी हाँ, उस समय भारतीय के जितने भी बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन होते थे, चाहे वह अहमदाबाद हो, नागपुर हो, दिल्ली हो या कोलकाता, पंडित विष्णु दिगंबर जी अपने शिष्यों की मंडली के साथ वहां बिना एक पैसा लिए पहुंचते थे। जब अधिवेशन शुरू होता तो पंडित जी माथे पर तिलक लगाए, हाथ में तानपुरा लेकर मंच पर खड़े होते थे और अपनी बुलंद, गंभीर और ओजस्वी आवाज में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन करते थे।

0: जब पंडित जी वंदे मातरम गाते तो उस विशाल पांडाल में मौजूद हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों, नेताओं और आम जनता के रोंगटे खड़े हो जाते। उनकी आवाज में ऐसा जादू और राष्ट्रभक्ति का ऐसा उफान होता कि लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते और उनके अंदर देश के लिए मर मिटने का जज्बा भर जाता।
1: दोस्तों, यही वजह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पंडित विष्णु दिगंबर जी के व्यक्तित्व और उनके संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे। गांधी जी का मानना था कि पंडित जी के भजनों में जो आत्मशक्ति और पवित्रता है, वह लाखों लोगों को एक सूत्र में पिरो सकती है। जब भी गांधी जी का कोई आश्रम कार्यक्रम या सत्याग्रह होता, वे पंडित जी को भजन गाने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित करते थे।
0: श्रोताओ, आज जो अमर धुन हम और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, इस धुन को अपनी सुरीली, गंभीर और भक्तिमय शास्त्रीय धुन में डाला था स्वयं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने। जी हाँ, ये पंडित जी का ही संगीत संयोजन था जिसने इस भजन को घर घर में लोकप्रिय बना दिया। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा हो, नमक सत्याग्रह हो या फिर कोई और अहिंसक आंदोलन, पंडित जी की बनाई ये रामधुन हर भारतीय के होठों पर गूंजती थी। इस धुन ने देश के अलग अलग भाषाओं और धर्मों के लोगों को आजादी की लड़ाई में एक साथ जोड़ने का अभूतपूर्व काम किया।

0: किसी भी महान संगीत महर्षि की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं होती कि उसने खुद कितना अच्छा गाया, बल्कि उसकी असली महानता इस बात से मापी जाती है कि उसने समाज को कैसे शिष्य दिए। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी इस मामले में बेहद भाग्यशाली और अद्वितीय थे। उन्होंने अपने गंधर्व महाविद्यालय के जरिए शिष्यों की एक ऐसी विशाल और तेजस्वी आकाश गंगा तैयार की, जिसने उनके जाने के बाद भी पूरे भारत में संगीत का परचम फहराया।
1: तो श्रोताओं, आइए पंडित जी के उन महान शिष्यों के बारे में अब बात करते हैं जिन्होंने भारतीय संगीत इतिहास में अमर स्थान हासिल किया। पंडित जी के सबसे प्रिय और अनुशासित शिष्यों में से एक पंडित विनायक राव पटवर्धन, इन्होंने गुरु के आदेश पर नाट्य संगीत में धूम मचाई और बाद में पुणे में गंधर्व महाविद्यालय को पुनर्जीवित किया। इन्होंने ही राग विज्ञान नाम की मशहूर सात भागों वाली पुस्तक श्रृंखला लिखी, जो आज भी संगीत के छात्रों के लिए किसी धर्म ग्रंथ की तरह है।
0: और पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, भारतीय शास्त्रीय संगीत का वो बब्बर शेर जिसकी प्रचंड आवाज और भावपूर्ण गायकी ने न केवल भारत में बल्कि यूरोप में भी तहलका मचा दिया था। पंडित ओमकारनाथ जी अपने गुरु विष्णु दिगंबर जी को ईश्वर की तरह पूछते थे। इसके साथ ही पंडित नारायण राव व्यास अपनी बेहद सुरीली, साफ और प्रभावकारी गायकी के लिए जाने जाने वाले दिग्गज कलाकार थे। इन्होंने और विनायक राव पटवर्धन जी की जोड़ी ने दशकों तक पूरे भारत के संगीत सम्मेलनों में ग्वालियर घराने का नाम रोशन किया।
1: श्रोताओं, इनके एक और शिष्य थे पंडित वामन राव पाथे, जिन्होंने संगीत शिक्षा के प्रचार प्रसार और संस्थागत विकास में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और फिर पंडित विष्णु दिगंबर जी के बेटे पंडित डी वी पलुस्कर दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर के बारे में कौन नहीं जानता। जब पंडित जी का निधन हुआ तब बालक दत्तात्रेय बहुत छोटे थे, लेकिन अपने पिता के संस्कारों और पंडित विनायक राव पटवर्धन जी के मार्गदर्शन में आगे चलकर पंडित डी वी पलुस्कर ने अपनी अलौकिक, सात्विक और सुरीली गायकी से पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी गायी हुई ठुमक चलत रामचंद्र और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जैसी रचनाएं आज भी अमर हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, अगर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय ना बनाया होता और इन महान शिष्यों को ना तराशा होता तो शायद भारतीय शास्त्रीय संगीत का रूप आज ऐसा नहीं होता।
0: पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की सोच अपने दौर के लोगों से बहुत आगे थी। वे केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। वे जानते थे कि भारतीय संगीत की वैज्ञानिकता और उसकी आध्यात्मिक शक्ति में वो दम है कि वह दुनिया के किसी भी कोने के इंसान को अपना दीवाना बना सकती है। उस जमाने में जब विदेशी विद्वान और ब्रिटिश अधिकारी भारतीय संगीत को अव्यवस्थित और शोर शराबा कहकर खारिज करने की कोशिश करते थे, तब पंडित जी ने अपनी बनाई स्वरलिपि पद्धति और रागों के वैज्ञानिक सिद्धांतों को विदेशी संगीत विदों के सामने बड़े गर्व के साथ प्रस्तुत किया। कई पश्चिमी संगीत शोधकर्ताओं ने पंडित जी के गंधर्व महाविद्यालय का दौरा किया और उनके काम को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय संगीत का ये ढांचा पश्चिमी क्लासिकल म्यूजिक से भी ज्यादा वैज्ञानिक और समृद्ध है।
1: इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद, हजारों शिष्यों का पूज्य होने के बाद और पूरे देश में अपार ख्याति मिलने के बाद भी पंडित विष्णु दिगंबर जी के जीवन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। उनका जीवन एक सच्चे सन्यासी और फकीर की तरह बेहद ही सादा था। उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय, कॉन्सर्ट्स और किताबों की बिक्री से जो भी लाखों रुपए कमाए, उनमें से एक भी पैसा अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल या अपने परिवार के लिए बचाकर नहीं रखा। उन्होंने सारा पैसा गंधर्व महाविद्यालय की इमारतों के निर्माण, प्रिंटिंग प्रेसों को खरीदने, गरीब और अनाथ छात्रों के भोजन और उनके रहने की व्यवस्था में लगा दिया। वो खुद हमेशा एक साधारण सूती धोती कुर्ता पहने रहते और जमीन पर चटाई बिछाकर सोया करते थे।
0: जी हाँ, वे मानते थे कि संगीत ईश्वर द्वारा दी गई एक पवित्र विद्या है। उन्होंने कभी संगीत का सौदा नहीं किया। उनका पूरा जीवन निष्काम कर्म योग का एक जीवंत उदाहरण था। और आइए श्रोताओं, अब बताते हैं उनकी समकालीन हस्तियों ने उनके बारे में क्या कहा। गांधी जी का कहना था कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी केवल एक महान गायक नहीं है, वे एक राष्ट्र निर्माता हैं। उनके भजनों ने भारत की सोई हुई जनता के भीतर जो पवित्रता, नैतिक बल और देश प्रेम की ज्वाला जगाई है, वह हमारे किसी भी राजनीतिक भाषण से कहीं अधिक गहरी और असरदार है। रघुपति राघव राजा राम की धुन हमारे अहिंसक सत्याग्रह का सबसे बड़ा सहारा है।
1: वहीं उनके शिष्य पंडित विनायक राव पटवर्धन ने कहा, हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित विष्णु दिगंबर जी ने हमें सिर्फ राग और बंदिशें ही नहीं सिखाई, उन्होंने हमें इंसान बनना भी सिखाया। वे हमारे लिए केवल एक संगीत के शिक्षक नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिन्होंने हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करके हमें भक्ति और साधना का सच्चा मार्ग दिखाया। आज संगीत जगत में हम जो कुछ भी हैं, वो केवल उनके चरणों की धूल का ही प्रताप है।
0: तो वहीं महान संगीतज्ञ और पंडित जी के शिष्य पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का कहना था, जब पंडित विष्णु दिगंबर जी मंच पर विराजते थे और अपना तानपुरा छेड़ते थे, तो ऐसा लगता था मानो साक्षात सरस्वती देवी वहां अवतरित हो गई हो। उनकी आवाज में एक ऐसा देवीय प्रभाव और गांभीर्य था कि बड़ी से बड़ी भीड़ भी एक क्षण में शांत हो जाती थी। उन्होंने भारतीय संगीत को जो सम्मान दिलाया है, उसके लिए पूरा देश उनका युगों युगों तक ऋणी रहेगा।
1: उनके पहले गुरु पंडित बालकृष्ण बुवा इचलकर रंजीकर का कहना था कि मुझे गर्व है कि विष्णु मेरा शिष्य है। जब वो मेरे पास आया था तो उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन आज उसने पूरे भारतवर्ष के संगीत प्रेमियों के मस्तक पर ज्ञान की रोशनी बिखेर दी है। उसने ग्वालियर घराने के नाम को अमर कर दिया है। श्रोताओं, समय की गति निरंतर चलती रहती है। जिस महामानव ने अपना पूरा जीवन, अपनी हर एक सांस और अपने शरीर का एक एक कतरा संगीत, समाज और देश की सेवा पर न्योछावर कर दिया था, उनका शरीर अब धीरे धीरे ढलने लगा था। निरंतर यात्राएं करने, कड़े अनुशासन में रहने और दिन रात गंधर्व महाविद्यालय के काम में जुटे रहने के चलते पंडित जी का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे गिरने लगा था।
0: अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वे महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर नासिक आ गए। वहां उन्होंने राम नाम आधार आश्रम की स्थापना की। अपनी आंखों की ज्योति खो चुके और शरीर से थक चुके इस महान साधक ने अपने जीवन के आखिरी दिन पूरी तरह से भगवान श्री राम की भक्ति, भजन और ध्यान में लगा दिया। वे दिन भर राम नाम का जप करते थे और अपने शिष्यों को भक्ति का उपदेश देते थे।
1: और फिर आया 21 अगस्त 1931 का वो अत्यंत दुखद और शोक संतप्त दिन। मात्र 59 वर्ष की आयु में सुरों के इस महान शिल्पी, गंधर्व महाविद्यालय के इस महान संस्थापक और भारत माता के सच्चे सपूत ने नासिक में अपनी अंतिम श्वास ली। उनका भौतिक शरीर अनंत के मौन में विलीन हो गया।
0: पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के निधन की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी, देश के बड़े बड़े नेताओं, संगीतकारों और लाखों आम लोगों ने इसे देश की एक अपूर्णीय क्षति बताया। ग्वालियर घराने का एक सबसे बड़ा और सबसे चमकदार सितारा आज अस्त हो चुका था।
1: लेकिन श्रोताओं, क्या पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर सचमुच हमें छोड़कर चले गए थे? नहीं, सुर कभी नहीं मरा करते, वो तो अमर हो जाते हैं। जब तक इस धरती पर शास्त्रीय संगीत का अस्तित्व रहेगा, जब तक गंधर्व महाविद्यालय की किसी भी शाखा में एक छोटा सा बच्चा अपना पहला सा साधेगा, जब विष्णु दिगंबर स्वर लिपि की किताबों से बंदिशें सीखी जाएंगी, जब तक इस देश की फिजाओं में रघुपति राघव राजा राम की धुन गूंजेगी, और तब तक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी अपनी अमर विरासत, अपने शुद्ध सुरों और अपने महान विचारों के साथ हम सभी के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे।
0: किसी महान संगीत मर्मज्ञ ने पंडित जी को श्रद्धांजलि देते हुए बहुत ही सुंदर बात कही थी, अगर तानसेन ने शास्त्रीय संगीत को राजा महाराजाओं के दरबार की शान बनाया था तो महर्षि विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीत को ईश्वर की पूजा, आत्मा की मुक्ति और हर आम इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार बना दिया।
1: श्रोताओं, सुरों के ऐसे महान महर्षि, युग पुरुष और भारत माता के अमर सपूत पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के चरणों में रेडियो आजाद हिंद परिवार और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से सत शत प्रणाम। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी महान कला साधक की अनमोल जीवन गाथा के साथ।

0: जाने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा, और मैं दानिश,
1: और आपके साथ मैं थी स्वाति।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

श्रोताओं, गणेशोत्सव की शुरुआत के साथ ही शहर भी उत्सव में डूब गया है। नए और पुराने शहर में 1800 स्थानों पर झांकियों और पंडालों में भगवान श्री गणेश की स्थापना की गई है। लालबाग और राजा के साथ साथ कई क्षेत्रों में भी राजा के वेश में भगवान गणेश की स्थापना की गई है। कई थीम और सामाजिक संदेशों के साथ झांकियाँ सजाई गई हैं। इसमें कहीं प्रकृति और वन्य जीवों को बचाने का संदेश दिया जा रहा है, तो कहीं परंपरा, शौर्य और इतिहास की झलक दिखाई दे रही है। शाम ढलते ही गणेश पंडाल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठते हैं और आकर्षक सजावट के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पीपल चौराहा करोंद में आतिशबाजी और लाइट शो के साथ करोंद के राजा का आगमन हुआ। इस दौरान भगवान गणेश के जयकारे गूंजे। इस झांकी की स्थापना युवाओं द्वारा की गई है। आयोजकों का कहना है कि गणेश उत्सव के दौरान यहां अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आज़ाद मार्केट में सिद्धिविनायक गणेश उत्सव समिति की झांकी में भगवान गणेश को पशु पक्षियों के साथ विराजमान दिखाया गया है। आयोजकों ने जानकारी दी कि इसमें भगवान गणेश प्रकृति, जीव जंतुओं के संरक्षण और प्राणियों के प्रति करुणा का संदेश दे रहे हैं। चौकी इमामबाड़ा में विघ्नहर्ता गणेश उत्सव समिति की ओर से शिव पार्वती वाल्मीकि मंदिर में इस बार थाईलैंड पैटर्न पर गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। इसमें थाई शैली की झलक दिखाई दे रही है। अनेक आभूषणों से यहां साज श्रृंगार किया गया है। आयोजकों के अनुसार इस झांकी के माध्यम से लोगों को धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता का संदेश भी दिया जा रहा है। कोलार रोड स्थित बीमा कुंज की झांकी शहर के सबसे महंगे पंडालों में से एक है। 18 से 20 लाख रुपए से तैयार पंडाल में 1,51,000 रुपए कीमत की गणेश प्रतिमा विराजमान है। इसे मुंबई के लाल बाग के राजा की तरह सजाया गया है। लाल बाग के राजा गणेश उत्सव समिति के प्रमोद शर्मा ने बताया कि रोज यहां बच्चों के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी तरह व्यापार संरक्षण समिति न्यू मार्केट गणेश उत्सव समिति की ओर से दगड़ू सेठ गणेश मंदिर पुणे की झांकी सजाई गई है। यहां भक्ति आराधना के साथ कई सकारात्मक संदेश दिए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डिस्प्ले पर आत्मनिर्भर और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही सामाजिक संदेश भी प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं, वीर भारत न्यास की ओर से भारत भवन में आयोजित भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का समापन मंगलवार को संतवाणी भारतीय संगीत परंपरा और सांस्कृतिक चेतना की प्रस्तुति के साथ हुआ। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के कार्यक्रम संत राग ने अंतरंग सभागार को करुणा और प्रेम के रंगों से भर दिया। कर्नाटक संगीत गायिका और संगीतकार सुधा रघुरामन ने प्रस्तुति दी। उनके साथ बांसुरी पर जी रघुरामन, मृदंग पर एम वी चंद्रशेखरन और तबले पर शंभुनाथ भट्टाचार्य ने संगत की। संत राग में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रैदास, गुरु नानक और संत तुकाराम की वाणी को सुरों में पिरोया गया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुधा रघुरामन ने कार्यक्रम की शुरुआत तुलसीदास जी के भजन गाइये गणपति जगवंदन से की। इस दौरान दर्शकों से बातचीत में सुधा ने कहा, जैसे क्रिकेटर्स के होम ग्राउंड्स होते हैं, उसी तरह भोपाल मेरा होम ग्राउंड है। यहाँ इतना प्यार मिलता है कि शुरू में अपने आप ही खनक आ जाती है। भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान में मातृभाषा के संरक्षण, भाषाई विविधता और बदलती पत्रकारिता पर दोपहर और शाम के सत्र में विमर्श भी हुआ। डिजिटल युग में मातृभाषाएं, संकट, संभावना और नई पत्रकारिता सत्र में सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक अजय बोकिल ने कहा कि मातृभाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों और पहचान से जुड़ी है। बच्चों को अपनी भाषा से जोड़ने की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। इस दौरान अब्दुल वदूद साजिद, समुद्रगुप्त कश्यप और मनोज शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

राम तुम आओ ना आओ, हम बुलाए जाएंगे, आंसुओं की भेंट चरणों में चढ़ाए जाएंगे। अपनी इन्हीं स्वयं रचित पंक्तियों को सुरों में पिरोकर ऋषिका प्रजापति ने मंगलवार को जनजातीय संग्रहालय में आयोजित लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता की सीनियर कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता दो कैटेगरी में हुई, सीनियर कैटेगरी में 16 से 25 वर्ष और जूनियर कैटेगरी में 8 से 15 वर्ष के प्रतिभागियों ने प्रस्तुतियां दी। जूनियर कैटेगरी में आराध्या तिवारी ने प्रथम स्थान हासिल किया। उन्होंने राजस्थानी फोक सॉन्ग कदे आवो नी असीला मार देवे जोवा थारी बात घणी की प्रस्तुति दी। ध्वनि श्रीवास्तव दूसरे स्थान पर रही। सीनियर कैटेगरी में पार्थवी जोशी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। दोनों कैटेगरी के प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी 27 सितंबर को इंदौर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे।

वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय डॉक्टर प्रभाकर क्षोत्री की स्मृति में दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में मंगलवार की शाम स्मरण प्रभाकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर उर्मिला शिरीष ने की। डॉक्टर प्रभुदयाल मिश्र और डॉक्टर रेखा कस्तवार ने डॉक्टर क्षोत्री से जुड़ी स्मृतियां साझा की। वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर रेखा कस्तवार ने कहा कि मेरी एमए की पढ़ाई में डॉक्टर क्षोत्रिय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने बहुत से विद्यार्थियों को गढ़ा। डॉक्टर उर्मिला शिरीष ने कहा कि प्रभाकर क्षोत्रिय का व्यक्तित्व स्वच्छ और निर्मल था। उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। मुख्य वक्ता निरंजन क्षोत्रिय ने कहा कि परिवार में भी उनका स्वाभिमान कायम रहा और साहित्य में भी। उन्होंने कई साहित्यकारों को रॉयल्टी दिलाने के प्रयास किए। आलोचना के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। वे किसी राजनीतिक संगठन या विचारधारा के झंडा बरदार नहीं बने। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। इसके साथ ही परिक्रमा का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा, ये वो काव्य भूमि है जहां ऋषियों की वाणी की गंभीरता है, जहां इतिहास के पन्नों से उठकर पात्र हमारे सामने जीवंत तो हो जाते हैं, जहां वीरता केवल रणभूमि में नहीं बल्कि उस क्षण में दिखाई देती है जब मनुष्य अपने भीतर के तूफान से संघर्ष करता है।
4: श्रोताओं, पिछले प्रसंगों में हमने सुना उस हृदय स्पर्शी मिलन को जहां गंगा की पावन धारा साक्षी बनी माँ कुंती और सूर्य पुत्र कर्ण के संवाद की। एक ओर थी वर्षों से छिपी हुई ममता की पुकार, तो दूसरी ओर था उस पुत्र का मौन आक्रोश जिसने जीवन भर पहचान के लिए संघर्ष किया। कुंती ने कर्ण के सामने जन्म का वह सत्य रखा जिसे समय ने वर्षों तक अपने आंचल में छिपा कर रखा था, परंतु कर्ण के लिए जीवन का अर्थ केवल जन्म से तय नहीं था, उसके लिए राधा का स्नेह माँ का आशीर्वाद था, दुर्योधन की मित्रता उसका ऋण थी और दिया हुआ वचन उसके जीवन का धर्म।
3: श्रोताओं, कभी कभी भाग्य मनुष्य को ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां एक ओर रक्त का संबंध पुकारता है और दूसरी ओर आत्मा का संकल्प। कर्ण भी उसी अग्निपथ पर खड़ा है जहां आंसुओं की धारा है पर कदमों में विचलन नहीं। सूर्यांश लिए वो रथी खड़ा है काल के रणांगन में, मौन अग्नि जलती रहती है उसके अंतर मन के स्पंदन में। वज्र सा अटल, करुणा सा कोमल, ये कैसा तेज अपार है। कर्ण नहीं केवल एक कथा, वो मानवता का विस्तार है, वो मानवता का विस्तार है।
4: आइए श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं पंचम सर्ग के भाग पांच की ओर। आइए सुनते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर रचना रश्मि रथी के पंचम सर्ग के भाग पांच का काव्य पाठ।
5: सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानी वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में खुलकर। शायद समाज टूटता वज्र बन तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर, शायद व्युक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से, पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम, पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती, भोगती राज सुख रहकर नहीं मैल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरुतल में, लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचरिता नारी, मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए, पाता न वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती शुचि गोद तुम्हारी, यदि उसे मिली होती शुचि गोद तुम्हारी। पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है, जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर, कहां जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य निदारूढ़ होकर, देने आई हो से आज तुम रोकर। गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है। खोला ना गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथेपन में। आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर, फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे। रहने दो त्यक्त विषण आज भी वैसे, है वृथा यत्न है देवी मुझे पाने का। मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का, दीपिता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है, मेरे समीप लेकिन वो नहीं नई है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूं मैं केशव के मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक ना स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा।
3: मित्रों, कर्ण के शब्दों में कठोरता दिखाई देती है, पर उस कठोरता के भीतर एक ऐसा हृदय धड़क रहा है जिसने जीवन भर अपनापन खोजा। वो कुंती को दोष देता है, पर उसका उद्देश्य केवल पीड़ा व्यक्त करना नहीं बल्कि उस सत्य को सामने रखना है जिसे समय ने दबा दिया था।
4: यही तो कर्ण की वेदना है, उसे राज्य का लोभ नहीं, उसे तो अपने बीते हुए बचपन की तलाश है। वह उस गोद को खोज रहा है जो उसे कभी मिली ही नहीं। परंतु अब समय बीत चुका है, नदी का जल लौटकर स्रोत तक नहीं आता। उसी प्रकार जीवन के बीते हुए क्षण कभी वापस नहीं आते। कर्ण जानता है कि आज जो स्नेह उमड़ा है उसमें माँ का प्रेम भी है और आने वाले युद्ध की चिंता भी। इसीलिए उसका मन कहता है, यह ममता देर से आई है परंतु मेरा धर्म और मेरा वचन पहले ही अपना मार्ग चुन चुके हैं।
3: जी हाँ, और यही कर्ण को महान बनाता है। वो अपने जन्म के अधिकार से बड़ा पालन के ऋण को मानता है। वो जानता है कि दुर्योधन ने उस समय हाथ बढ़ाया था जब संसार ने उसे ठुकराया था। उसके लिए मित्रता केवल संबंध नहीं जीवन का उपकार है। आइए श्रोताओं, चलते हैं गंगा तट पर जहां दिशाएं मौन हैं और समय जैसे अपनी गति रोककर उस संवाद को सुन रहा है। कर्ण कुंती से कह रहे हैं,
5: मैं खूब समझता हूं कि नीति ये क्या है, अस समय में जन्मी हुई प्रीति ये क्या है। जोड़ने नहीं पिछुड़े व्युक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में ना तुम मुझको भरने आई हो,

0: लेकिन ये होगा नहीं देवी। तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान ना होना उससे कभी उर्ण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूं मैं, चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूं। अर्पित प्रसून के लिए ना यूं ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ।
1: राधेय मौन हो रहा व्यथा निज कहके, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर, साड़ी में टांके हुए अनंत सितारे थी, घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे थी, दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अग जग था, कुंजों में अब बोलता ना कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी।
2: श्रोताओं, इस मार्मिक संवाद में कर्ण का व्यक्तित्व मानो एक विराट पर्वत की तरह हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सत्य जान लेने के बाद भी उसका हृदय कर्तव्य से विचलित नहीं होता। सचमुच यह क्षण केवल माँ और पुत्र का मिलन नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं की गहन परीक्षा है। एक और मातृत्व की पीड़ा है जो अपने ही पुत्र को पहचानने में देर कर बैठी, और दूसरी ओर कर्ण की वह अद्भुत महत्ता जो व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य और मित्रता को निभाने का संकल्प लेती है। दिनकर जी ने इस दृश्य को जिस संवेदना और गरिमा से उकेरा है, वह हमें याद दिलाता है कि इतिहास के महान पात्र केवल युद्धों से नहीं बल्कि अपने नैतिक निर्णयों से अमर होते हैं।
1: माँ की पीड़ा, पश्चाताप और विवशता से भरी हुई कुंती मानो कर्ण से कहना चाह रही हो,
3: आज तुम्हारे शब्दों में जो अग्नि है उसका ताप मैं अनुभव कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे मौन ने तुम्हारे जीवन में अंधकार बोया था, पर क्या उस क्षण मेरी आत्मा भी नहीं रोई थी? समाज के भय ने मेरे कदम बांध दिए थे पुत्र, मैं माँ होकर भी उस समय माँ का धर्म निभा ना सकी। जिसे अपनी छाती से लगाना था उसे जलधारा के भरोसे छोड़ आई। यह पीड़ा मेरे हृदय में युगों से धधकती रही है। तुम कहते हो कि समय लौटता नहीं, यह सत्य है, पर क्या माँ का हृदय कभी अपने खोए हुए अंश को भूल पाता है? तुम्हें पाने की चाह आज नहीं जागी कर्ण, यह चाह तो उस दिन से जीवित थी जिस दिन मैंने तुम्हें अपने हाथों से दूर किया था। तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारा तेज संसार देख रहा है, पर मेरी आंखों के लिए तुम आज भी वही बालक हो जिसे कभी माँ की गोद न मिल सकी।
2: श्रोताओं, अब ये संवाद अपनी अगली दिशा की ओर बढ़ेगा, जहाँ माँ की पुकार और पुत्र का संकल्प एक और गहरी परीक्षा से गुजरेंगे। आइए सुनते हैं पंचम सर्ग के भाग 6 का काव्य पाठ।
1: इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे थे, खड़े शिलावत मूक भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा प्रथा ने,
3: आई ना वेदी पर का मैं फूल उठाने, पर के प्रसून को नहीं, नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को, पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछुड़ी डाली पर कुसुम ना आन खिलेगा। तब जाती हूँ क्या और कर सकूंगी मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर मैं, जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच बड़ी पापिनी हूँ मैं, मानवी रूप में विकट सापिनी हूँ मैं, मुझसी प्रचंड अघमयी कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे, यश ओढ़ जगत को तो छलती आई हूँ, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूँ। अब भी मन पर है खिंची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा, पेटिका बीच मैं डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, ओ शिलाभूत सर्पिणी सदृश मन मेरा, ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको। रेकर्ण सुनाओ व्यथा कहाँ तक तुझको, लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानी कुत्सा पछतावे को ही, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उघार अंतर मैं तेरे आगे, पर कदम उठा पाई न ग्लानी में भरकर, सामने न हो पाई कुत्सा से डरकर। लेकिन जब गुरुकुल पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है, तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी, आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसीलिए शक्तियां मन की सभी संजो कर, सब कुछ सहने के लिए समुद्यत होकर, आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने, सोदर वध के पातक से तुझे बचाने। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है, अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू, जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। कढ़ गई कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई थी छिन्न जीवन में, थे मिले लाल छह छह पर वाम विधाता, रह गई सदा पांच ही सुतों की माता। अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी, था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी कीर्ति निराली, लौटता ना कोई कभी द्वार से खाली, पर मैं अभागिनी ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख ना पाकर। फिर भी तू जीता रहे ना अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर मैं तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जम कर हो गई शिला जो मन में, जो क्षरी फूट कर सूख गया था तन में, वह लहर रहा फिर उर में आज उमड़कर, वह रहा हृदय के कूल किनारे भरकर। कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानी की मारी, सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन में आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषण कली को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को, छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे।
1: श्रोताओं, इस प्रसंग में कुंती कोई महारानी नहीं रह जाती, न हस्तिनापुर की राजमाता, न पांडवों की जननी, यहां वो केवल एक ऐसी मां है जिसकी स्मृतियों में वर्षों से एक अधूरा रुदन बंद पड़ा था। दिनकर जी ने कितनी करुणा से उस अपराध बोध को स्वर दिया है। जीवन भर यश प्रतिष्ठा और कुल मर्यादा का आवरण ओढ़े रहने वाली कुंती आज स्वयं अपने ही निर्णयों के कटघरे में खड़ी दिखाई देती हैं। समय के साथ घाव भर जाते हैं ये कहा जाता है, पर कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से भरते हुए दिखते हैं और भीतर निरंतर रिसते रहते हैं। कर्ण को पेटिका में रखकर जलधारा के हवाले करने का वो क्षण मानो आज भी उनकी आंखों में ज्यों का त्यों ठहरा हुआ है। वो शिशु की टुकुर टुकुर देखती हुई आंखें, वो मौन प्रश्न, वो असहाय पुकार वर्षों बाद भी कुंती के हृदय में शूल बनकर चुभ रही है। सच ही तो है, समय बीत जाता है पर मां का हृदय अपने अपराधों की राख में भी अंगार बचाए रखता है।
2: कितना मार्मिक दृश्य है ये। एक और सूर्य पुत्र कर्ण, जिसने जीवन भर माँ की गोद का अभाव सहा, और दूसरी ओर कुंती, जिसने जीवन भर उस रिक्त गोद का दंश झेला। लगता है जैसे नियति स्वयं उनके बीच खड़ी होकर कह रही हो, कुछ बिछोह ऐसे भी होते हैं जिन्हें समय नहीं भरता, वे केवल आंसुओं की भाषा में अपना इतिहास लिखते हैं। यही इस प्रसंग की आत्मा है और यही दिनकर जी की लेखनी का चमत्कार भी।
1: माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, होठ ही कंटकित पुलक कर्ण की काया, संजीवन सी छू गई चीज कुछ तन में, वह बह चला स्निग्ध प्रस्वण कहीं से मन में, पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे, फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर।
0: मैं धन्य हुआ बिछुड़ी गोदी को पाकर, पर हाय स्वत्व मेरा ना समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई, अतएव न्यास अंचल का ले ना सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी ना दे सकूंगा, कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा, लेकिन पढ़ता हूं पांव जननी हठ त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो, केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो ये कर्ण पार्थ का रण है, छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर, विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक धैर्य के हित में जीता आया, कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा, आ गई घड़ी वो प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की, इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम, अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा, मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट हो जाएगा, तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता, दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी, मैं एक कर्ण अतेव मांग लेता, बदले में तुमको चार कर्ण देता, छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा, अब जाओ हर्षित हृदय सोच ये मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में।
3: रे हठी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं किया तूने, बनने आई थी छह पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता।
2: उस निस्तब्ध क्षण में मानो समय स्वयं ठहर सा गया था। वर्षों से अपराध बोध की अग्नि में जलती कुंती के हृदय की जमी हुई ममता आज अचानक पिघल उठती है। अपने ही त्यागे हुए पुत्र को सामने देखकर वह कुरुकुल की रानी नहीं रह जाती, बल्कि एक साधारण असहाय माँ बन जाती है, जो केवल अपने बेटे को छाती से लगाकर रो लेना चाहती है। कर्ण भी उस आलिंगन में पहली बार मातृत्व की ऊष्मा का अनुभव करता है, जैसे तपती धरती पहली वर्षा की बूंदों से भीग कर शांत हो जाती है। उस क्षण में वर्षों का वियोग, पश्चाताप और प्रेम एक ही धारा बनकर बहने लगते हैं। सूर्य की किरणें जैसे कर्ण के पैरों पर ऐसे दिख रही हैं जैसे क्षमा मांग रही हों, और कर्ण मानो कह रहे हों,
0: हे सांध्य गगन, हे मौन बहती गंगा, तुम ही बताओ इस अस्तित्व का अंतिम सत्य क्या है जिसे विधाता ने हमेशा पराया रखा। आज अंत समय में उसे अपना बनाकर नियति ने कैसा क्रूर न्याय किया है। जीवन की इस ढलती सांझ में मैं अपने ही वजूद के खंडरों पर खड़ा होकर सोचता हूं कि मनुष्य वास्तव में क्या लेकर आता है और क्या खो देता है। गंगा की इन लहरों की तरह समय भी बस बहता चला जाता है, पीछे छोड़ जाता है तो केवल यादों की सूखी रेत, जिसे जन्म की पहली भोर में त्याग दिया गया हो उसके लिए जीवन की इस सांध्य बेला में ममता के इस अचानक स्पर्श का क्या मोल। नियति ने मेरे हाथों में देने के लिए हमेशा युद्ध और अकेलेपन का विष ही चुना, और आज जब मैं उस विष को अमृत समझकर पीने चला हूं तब मुझसे मेरी ही मृत्यु का अधिकार मांगा जा रहा है। हे डूबते सूर्य, तुम साक्षी रहना, कर्ण संसार से हार कर नहीं बल्कि स्वयं को जीत कर जा रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय इतिहास को जीतना नहीं बल्कि अपनी ही नियति के इस अंतहीन सन्नाटे को मुस्कुराकर स्वीकार कर लेना है।
2: श्रोताओं, आज के इस प्रसंग में दिनकर जी ने वात्सल्य, वेदना और धर्म के ऐसे सूक्ष्म तार छेड़े हैं कि शब्द पढ़ते नहीं हृदय में उतरते चले जाते हैं। अब ये कथा अपने अगले और अंतिम भाव विस्तार की ओर बढ़ रही है। अभी बहुत कुछ शेष है, कुछ अनकहे प्रश्न, कुछ अधूरे उत्तर और एक ऐसा निर्णय जो आने वाले महायुद्ध की दिशा तय करेगा। अगले भाग में अब हम पंचम सर्ग के अंतिम भाग 7 की तरफ चलने वाले हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। चलते चलते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन किया दीपक नेमा ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा,
3: अदिति
0: और मैं दीपक नेमा।
2: तो श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा लेती है यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
4: काव्य गुंजन, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। बज बज की विजय। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक को किसी महान सेनापति ने नहीं बल्कि पूरी तरह नशे में धुत एक अकेले नाविक ने जीता था। ये साल 1756 की बात है, जब बंगाल के नवाब के हाथों कलकत्ता के पतन ने अंग्रेजों के बीच अकथनीय घबराहट पैदा कर दी थी और कंपनी की नींव हिला दी थी। मद्रास से एक राहत अभियान भेजा गया जिसमें रॉबर्ट क्लाइव थल सेना की कमान संभाल रहा था और एडमिरल वॉटसन एक शक्तिशाली नौसैनिक दस्ते का नेतृत्व कर रहा था। हुगली नदी के रास्ते आगे बढ़ते समय उनकी पहली बड़ी बाधा बजबज का किला था, जो कलकत्ता के ठीक नीचे जल मार्ग पर नियंत्रण रखता था। स्वर्ग से जन्मे सेनापति कहे जाने वाले क्लाइव ने भोर होते ही किले पर औपचारिक हमले की पूरी योजना तैयार कर ली थी। लेकिन नियति और थोड़ी सी शराब को कुछ और ही मंजूर था। क्या आप जानते हैं कि जब अधिकारी रणनीति पर बहस कर रहे थे, तब स्ट्रेहन नाम का एक आम नाविक अत्यधिक शराब पीने में व्यस्त था। 29 दिसंबर की रात को नशे में चूर स्ट्रेहन अंग्रेजी कैंप से भटक गया और अनजाने में खुद को किले की दीवारों के नीचे पाया। उसे प्राचीर में एक दरार मिली जो नौसेना की गोलाबारी से बनी थी। स्ट्रेहन मलबे के सहारे ऊपर चढ़ गया और दरार के शीर्ष पर पहुंच गया, जहां उसने खुद को दुश्मन के संतरियों के सामने अकेला पाया। भागने के बजाय उस नशे में धुत नाविक ने अपनी कटार लहराई, पिस्तौल चलाई और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए 3 बार हुर्रे का जयघोष किया। ये जगह मेरी है। कैंप में मौजूद उसके साथी नाविकों ने जब शोर सुना तो उन्हें लगा कि आधिकारिक हमला समय से पहले शुरू हो गया है और वे उसकी मदद के लिए दरार की ओर दौड़ पड़े। किले की सेना, जिसे लगा कि ये बहुत बड़ा और अचानक हमला है, घबरा गई और रात के अंधेरे में गायब हो गई। जब तक क्लाइव और उसके अधिकारी अपने शानदार हमले का नेतृत्व करने पहुंचे, उन्होंने पाया कि किला एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जीता जा चुका था जो सीधे चल भी नहीं पा रहा था। क्या आप जानते हैं कि जब इस आकस्मिक नायक को उसके वरिष्ठों के सामने लाया गया तो क्या हुआ? एडमिरल वॉटसन ने नौसैनिक अनुशासन बनाए रखने की कोशिश करते हुए स्ट्रेहन को कड़ी फटकार लगाई। उस नाविक ने, जो लहू लुहान था पर झुका नहीं था, एक ऐसा जवाब दिया जो कंपनी के इतिहास में अमर हो गया। उसने एडमिरल से कहा, अगर मुझे अपनी बहादुरी के लिए कोड़े खाने पड़ने हैं तो भगवान की कसम, मैं अपने पूरे जीवन में फिर कभी अकेले कोई किला नहीं जीतूंगा। बजबज की ये अजीबोगरीब घटना उस प्रसिद्ध 200 दिनों का एक निर्णायक मोड़ बन गई, जिसमें अंग्रेजों ने कलकत्ता को वापस लिया और अंततः पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। ये घटना याद दिलाती है कि कंपनी के सत्ता में उदय के दौरान अक्सर भव्य सैन्य योजनाओं की तुलना में व्यक्तियों की, यहाँ तक कि नशे में धुत व्यक्तियों की चतुराई और साहस ने अधिक अंतर पैदा किया।
5: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। अगला कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, इंतजार कीजिएगा बस कुछ पलों का।

0: आज हम आपको एक ऐसी महिला की विस्तृत जीवन गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी।
1: एक संपन्न पारसी परिवार में जन्मी ये लड़की आगे चलकर पूना के एक छोटे से अस्पताल को और महाराष्ट्र के सैकड़ों गांवों को हमेशा के लिए बदल देगी।
0: नाम था डॉक्टर बानू जहांगीर कोया जी, एक चिकित्सक, एक समाज सेविका और परिवार नियोजन आंदोलन की एक अग्रणी आवाज।
1: आज की इस कड़ी में हम उनके जन्म से लेकर निधन तक की पूरी यात्रा को विस्तार से जानेंगे। उनका परिवार, उनकी शिक्षा, उनका संघर्ष, उनकी उपलब्धियां और उनकी विरासत।
0: इस कहानी को समझने से पहले हमें उस सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना होगा जिसमें बानू का जन्म हुआ।
1: पारसी समुदाय मूलतः प्राचीन ईरान से आकर भारत के पश्चिमी तट पर बसा एक छोटा सा समुदाय है, पर शिक्षा, व्यापार और समाज सुधार में इनका योगदान अपने आकार से कहीं बड़ा रहा है।
0: जमशेद जी टाटा से लेकर दादा भाई नौरोजी तक इस समुदाय ने भारत के आधुनिकीकरण में एक केंद्रीय भूमिका निभाई।
1: बानू का जन्म भी इसी परंपरा की कड़ी था। उनके परिवार में शिक्षा को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था और लड़कियों की शिक्षा को लेकर भी उनका नजरिया उस दौर के औसत भारतीय परिवार से कहीं आगे था।
0: एक दिलचस्प बात यह भी है कि जहां अधिकांश पारसी परिवार ब्रिटिश शासन के प्रति सहानुभूति रखते थे, वहीं बानू का अपना परिवार राष्ट्रवादी विचारधारा से गहराई से प्रभावित था।
1: यही पारिवारिक संस्कार आगे चलकर बानू के भीतर विकसित हुई सेवा भावना और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध की नींव बना।
0: सात सितंबर 1917 मुंबई शहर, एक संपन्न पारसी परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। नाम रखा जाता है बानू पेस्तनजी कापड़िया।
1: उनके पिता पेस्तनजी कापड़िया एक जाने माने सिविल इंजीनियर थे और माता का नाम था बापा माई। बानू अपने माता पिता की इकलौती संतान थी।
0: जब स्कूल जाने की उम्र आई तो माँ ने बानू को पुणे भेज दिया, नाना नानी के घर। वहाँ एक बड़ा भरा पूरा संयुक्त परिवार था, मामा, मौसी, चचेरे, ममेरे, भाई बहन।
1: माता पिता का बार बार आना जाना भी बना रहा, इसलिए बानू को कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उन्होंने खुद कहा है कि उनका बचपन एक बेहद संतोषप्रद और भरा पूरा अनुभव था।
0: दौलत तो थी ही, पर अनुशासन भी उतना ही जरूरी माना जाता था। यही अनुशासन आगे चलकर बानू के पूरे जीवन का आधार बना।
1: और हाँ, एक दिलचस्प बात, बानू का पालन पोषण पूरी तरह अंग्रेजी माहौल में हुआ। घर में गुजराती बोली जाती पर उसमें अंग्रेजी शब्दों की भरमार होती,
0: इतनी ज्यादा कि बड़े होकर बानू को मराठी सीखने के लिए एक अलग शिक्षक रखना पड़ा। वही मराठी जिस भाषा में आगे चलकर वे हजारों ग्रामीण महिलाओं से बात करने वाली थी।
1: कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में उन्होंने बैले नृत्य सीखा, फ्रेंच भाषा पढ़ी और नाना के घर रखे पियानो पर पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की तालीम ली।
0: इतनी अच्छी तालीम कि उन्होंने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक के परीक्षकों के सामने भी अपनी प्रस्तुति दी। 5-6 साल तक वे गर्ल्स गाइड से भी जुड़ी रहीं।
1: यह सांस्कृतिक द्वंद्व बड़ा दिलचस्प है। पश्चिमी माहौल में पली बड़ी एक लड़की आगे चलकर भारत के सबसे दूर दराज गांवों की सच्चाई में गहराई से उतर जाती है।
0: यह दिखाता है कि सच्ची सेवा भावना किसी सांस्कृतिक सीमा की मोहताज नहीं होती।
1: सेंट विंसेंट हाई स्कूल मूलतः लड़कों का स्कूल, पर बानू वहां से मैट्रिकुलेशन पास करने वाली पहली लड़की बनी।
0: यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उस दौर में लड़कियों का ऐसे स्कूल में दाखिला ही असामान्य माना जाता था।
1: आगे कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में भी वे अक्सर कक्षा में पहला स्थान पाती रहीं और सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा में तो 5 विषयों में विशेष योग्यता हासिल की। उस दौर के लिए यह एक दुर्लभ उपलब्धि थी।
0: 16 साल की उम्र में बानू ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्री मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। उस दौर में एक लड़की का डॉक्टर बनने की राह चुनना आसान बात नहीं थी। चिकित्सा को तब मुख्यतः पुरुषों का ही क्षेत्र माना जाता था।
1: इसके बाद ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक, जिसने भारत में पश्चिमी चिकित्सा शिक्षा के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई।
0: वहां से 1940 में उन्होंने एमडी की डिग्री हासिल की।
1: पढ़ाई के दौरान ही उनकी दिलचस्पी बनी प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान में। यह चुनाव इत्तेफाक नहीं था।
0: उस दौर के भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बेहद ऊंची थी। प्रसूति विज्ञान का क्षेत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद अहम माना जाता था।
1: बानू ने इस क्षेत्र को चुनकर बिना जाने समझे भी वह राह चुन ली जो आगे चलकर लाखों महिलाओं और नवजातों की जिंदगी बदलने वाली थी।
0: आगे उन्होंने प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वी एन शिरोडकर के मार्गदर्शन में रेजिडेंसी की। डॉक्टर शिरोडकर उस दौर के सबसे सम्मानित प्रसूति विशेषज्ञों में गिने जाते थे।
1: ऐसे काबिल गुरु के मार्गदर्शन में सीखना बानू के लिए एक अनमोल अनुभव साबित हुआ।
0: 1937 महाबलेश्वर की पहाड़ियां पुणे और मुंबई के संपन्न परिवारों का प्रिय गर्मियों का ठिकाना।
1: यहीं बानू की मुलाकात हुई जहांगीर कोयाजी से। यह मुलाकात करवाई थी डॉक्टर एडुलजी कोयाजी ने, जो बानू के पारिवारिक चिकित्सक भी थे और जहांगीर के बड़े भाई भी।
0: जहांगीर पेशे से इंजीनियर थे और अमेरिका के पर्ड्यू विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके अभी अभी लौटे थे।
1: 5 साल की प्रणय गाथा के बाद 24 फरवरी 1941 को दोनों का विवाह हुआ।
0: यह विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, यह दो प्रतिष्ठित परिवारों का संगम भी था, जिसने बानू के आगे के जीवन पथ को गहराई से प्रभावित किया।
1: 1943 में बानू पुणे लौट आई, जहां जहांगीर पहले से रहते थे। यही दोनों ने अपना घर बसाया।
0: पुणे में बानू ने डॉक्टर एडुलजी कोयाजी के साथ सामान्य चिकित्सा अभ्यास में काम शुरू किया, भले ही उनके पास स्त्री रोग विज्ञान की विशेष डिग्री थी।
1: यह फैसला दिखाता है कि बानू ने अपनी विशेषज्ञता के बावजूद विनम्रता से शुरुआत की और एक अनुभवी वरिष्ठ से सीखना बेहतर समझा।
0: डॉक्टर एडुलजी की एक खासियत थी, वे गरीब और अमीर दोनों तरह के मरीजों का एक जैसे समर्पण से इलाज करते थे, बिना किसी भेदभाव के।
1: यही मूल्य आगे चलकर बानू के अपने पूरे करियर का सिद्धांत बना, चाहे पुणे के संपन्न मरीज हों या वाड़ू गांव की महिलाएं।
0: अप्रैल 1944 एक मोड़ आता है। सरदार मुदलियार डॉक्टर एडुलजी से आग्रह करते हैं कि किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के लिए किसी काबिल चिकित्सक की सिफारिश करें।
1: यह अस्पताल पुणे में स्थित था। 1912 में पुणे के प्रमुख नागरिकों द्वारा स्थापित एक छोटा सा चैरिटेबल अस्पताल, जो माँ और नवजात की देखभाल के लिए बना था।
0: ध्यान रहे, यह मुंबई के ज्यादा मशहूर KEM अस्पताल से अलग एक स्वतंत्र संस्था थी, भले ही दोनों का नाम ब्रिटिश सम्राट किंग एडवर्ड सप्तम की याद में रखा गया था।
1: उस दौर में भारत में मातृ स्वास्थ्य सेवा बेहद सीमित थी। ज्यादातर प्रसव घर पर ही या बिना प्रशिक्षित दाइयों की देखरेख में होते, इसलिए मातृ मृत्यु दर बेहद डरावनी थी।
0: डॉक्टर एडुलजी ने इस पद के लिए एक ही नाम सुझाया, बानू जहांगीर कोयाजी। 6 महीने के भीतर बानू इस अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी बन गईं।
1: उस वक्त अस्पताल में सिर्फ 40 बिस्तर थे, एक बैरक जैसी इमारत, कोई खास सुविधा नहीं, स्टाफ की कमी, आधुनिक उपकरणों का अभाव।
0: यहीं से शुरू हुई 55 साल लंबी एक असाधारण सेवा यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने न सिर्फ एक अस्पताल बल्कि पूरे इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था का कायाकल्प कर दिया।
1: 55 साल, यही वो समय था जिसमें बानू ने KEM अस्पताल की पूरी तस्वीर बदल दी।
0: 1999 तक अस्पताल में 550 बिस्तर हो चुके थे, यानी शुरुआत से करीब 13 गुना ज्यादा।
1: पर यह सिर्फ इमारत बढ़ाने की बात नहीं थी, बानू ने इस संस्था के हर पहलू में गुणात्मक सुधार किया।
0: उन्होंने इसे सिर्फ एक इलाज केंद्र नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे BJ मेडिकल कॉलेज से जोड़ा, पुणे के एक प्रमुख सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से।
1: इस जुड़ाव ने KEM को चिकित्सा शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बना दिया, जहाँ नई पीढ़ी के डॉक्टर तैयार होने लगे और साथ ही अस्पताल को युवा ऊर्जावान चिकित्सकों की लगातार आपूर्ति मिलती रही।
0: यहीं के शोधकर्ताओं ने ग्रामीण स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों पर वैज्ञानिक ढंग से काम किया। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और अन्य स्वास्थ्य संकेतकों में आ रहे बदलावों को बारीकी से दर्ज किया गया।
1: यह आंकड़ा आधारित नजरिया उस दौर में असामान्य था। ज्यादातर सामाजिक सेवा परियोजनाएं सिर्फ भावनात्मक प्रेरणा पर टिकी होती, बिना किसी ठोस मूल्यांकन तंत्र के।
0: पर बानू ने अपने चिकित्सा वैज्ञानिक ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी परियोजना को एक साक्ष्य आधारित मॉडल बना दिया, जो आगे चलकर बाकी परियोजनाओं से अलग खड़ा हुआ।
1: एक बात और, इतनी बड़ी धर्मार्थ संस्था को इस पैमाने पर बढ़ाने के लिए सिर्फ मेडिकल ज्ञान काफी नहीं था। इसके लिए चाहिए था वित्तीय प्रबंधन, दानदाताओं से संपर्क, सरकारी अनुदान और स्टाफ का प्रबंधन।
0: और इन सभी में बानू ने असाधारण दक्षता दिखाई। यही वजह है कि KEM एक छोटी चैरिटी संस्था से एक बड़े आधुनिक चिकित्सा संस्थान में तब्दील हो सका।
1: पर बानू सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही। उन्होंने महसूस किया पुणे शहर और उसके आसपास के सूखाग्रस्त गांवों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की खाई बहुत गहरी है।
0: भारत के बाकी हिस्सों की तरह महाराष्ट्र के गांवों में भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का घोर अभाव था।
1: ग्रामीण भारत की महिलाएं दोहरी मार झेल रही थीं। एक तरफ गरीबी और दूरी, दूसरी तरफ समाज में उनकी दोयम दर्जे की हैसियत।
0: ये दोनों मिलकर उनके स्वास्थ्य और भलाई की राह में गंभीर रुकावटें खड़ी कर रहे थे।
1: 1972 पुणे से करीब 40 किलोमीटर दूर गांव वाड़ू में बानू ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला।
0: ये फैसला उस दौर में बेहद साहसी और दूरदर्शी था, क्योंकि ज्यादातर शहरी चिकित्सा संस्थान अपने संसाधन गाँव में लगाने से बचते थे।
1: पर बानू ने साफ समझ लिया था, अगर सच में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है तो शहर की चार दीवारी से बाहर निकलना ही होगा।
0: यही केंद्र आगे चलकर बना शिरडी साईं बाबा ग्रामीण अस्पताल, जो आज भी आसपास के गांवों की सेवा कर रहा है। बानू का बोया गया ये बीज सिर्फ उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहा।
1: 1977 बानू एक और बड़ा कदम उठाती है, वाड़ू ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना।
0: महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से गांव-गांव से करीब 600 लड़कियों को चुना गया और प्रशिक्षित किया गया सामुदायिक स्वास्थ्य के मार्गदर्शक के रूप में।
1: यह परियोजना अपने डिजाइन में बेहद सोच समझ कर बनाई गई थी। बाहरी विशेषज्ञों को गांव भेजने के बजाय बानू ने स्थानीय महिला को ही प्रशिक्षित करने का रास्ता चुना,
0: क्योंकि स्थानीय महिलाएं अपने समुदाय की भाषा, संस्कृति और आपसी रिश्तों को बेहतर समझती थी। वे स्थायी रूप से गांव में रह सकती थीं, जबकि बाहरी विशेषज्ञ सिर्फ कभी कभार आते थे।
1: और सबसे बड़ी बात, इस प्रशिक्षण ने इन महिलाओं को खुद सशक्त बना दिया। इससे उन्हें कमाई मिली, सम्मान मिला और समाज में एक नई पहचान मिली।
0: ये लड़कियां अपने ही गांव में जाकर स्वच्छता, पोषण और परिवार नियोजन की बातें समझाती। गंभीर मामलों को वाडू के केंद्र या पुणे के KEM अस्पताल में भेज दिया जाता।
1: समय समय पर स्वास्थ्य शिविर भी लगते। KEM के डॉक्टर बच्चों का टीकाकरण करते, कान नाक गले की बीमारियों और मोतियाबिंद जैसे समस्याओं का इलाज करते।
0: इन शिविरों का आयोजन बड़े सुव्यवस्थित तरीके से होता था। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहले ही मरीजों की पहचान कर लेती, ताकि शिविर वाले दिन डॉक्टरों का समय बर्बाद ना हो।
1: और हर बार आंकड़े जुटाए जाते, नतीजों को परखा जाता। शिशु मृत्यु दर में आई भारी गिरावट इसका एक बड़ा सबूत बना।
0: यह मॉडल इतना कामयाब रहा कि कई और विकासशील देशों ने इसे अपनाने की कोशिश की।
1: बानू का मानना था, निजी संस्थाओं को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी छोटी सफलताओं का फायदा बड़े पैमाने पर आम लोगों तक पहुंच सकता है।
0: यह सोच, निजी पहल और सरकारी सहयोग का मेल आज भी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का एक अहम सिद्धांत माना जाता है।
1: बानू का ज्यादातर काम परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के इर्द गिर्द रहा।
0: भारत ने 1952 में दुनिया के पहले राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, पर इसके बावजूद यह विषय दशकों तक भारतीय समाज में बेहद संवेदनशील और वर्जित माना जाता रहा।
1: सामाजिक रूढ़ियां, धार्मिक मान्यताएं, शिक्षा की कमी, ये सब मिलकर परिवार नियोजन के प्रसार में रुकावट बनते।
0: ऐसे माहौल में बानू ने इसे खुलकर स्वास्थ्य शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के दायरे में ला खड़ा किया। उस दौर के लिए ये एक बड़ा साहसिक कदम था।
1: बानू का मानना था, भारत की महिलाओं का जागरण ही एक बेहतर और अधिक मानवीय समाज की कुंजी है।
0: वे अक्सर कहा करती थी, उनका सपना एक ऐसे कल का है जिसमें महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलें और उन्हीं की गति से आगे बढ़ें।
1: यह सिर्फ एक आदर्शवादी बात नहीं थी, यह उनके पूरे काम का मार्गदर्शक सिद्धांत था।
0: बानू ने यह भी समझा कि परिवार नियोजन सिर्फ गर्भ निरोधक बांटने तक सीमित नहीं हो सकता है, इसके लिए चाहिए व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण की जागरूकता और समाज की सहमति।
1: यही वजह है कि उनकी परियोजनाओं में परिवार नियोजन को हमेशा स्वच्छता और सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के साथ जोड़कर पेश किया गया, अलग से नहीं।
0: 80 के दशक के बीचों बीच बानू ने अपने काम की समीक्षा की और एक बड़ी कमी को पकड़ा। किशोरियों और युवा लड़कियों की जरूरतों पर ध्यान बहुत कम गया था।
1: गरीबी और लड़की होने की दोहरी मार झेलती ये लड़कियां बिना पढ़ाई और बिना जानकारी के माँ और कमाने वाले की भूमिका में उतर जाती थी।
0: 1988 में शुरू हुई युवा महिला स्वास्थ्य एवं विकास परियोजना, 11 गांवों में सामुदायिक कार्यकर्ता तैनात किए गए।
1: सिलाई कढ़ाई जैसे हुनर सिखाए गए, सेहत की जानकारी दी गई और जाति लिंग जैसे संवेदनशील विषयों पर खुलकर बात करने का माहौल बनाया गया।
0: गीतों, खेलों और त्योहारों के जरिए औपचारिक कक्षाओं को रोचक और सहज बनाया गया ताकि किशोरियां सहजता से इनमें भाग ले सके।
1: यह परियोजना दिखाती है कि बानू एक बार की सफलता से संतुष्ट होकर बैठी नहीं, उन्होंने लगातार अपने कार्यक्रमों को परखा और नई जरूरतों के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ाया।
0: बानू की काबिलियत और उनका काम जल्द ही पुणे और महाराष्ट्र की सीमाओं से आगे बढ़ गया।
1: वे केंद्र सरकार की सलाहकार बनी और दुनिया भर में एक जानी मानी विशेषज्ञ के तौर पर उभरी।
0: दुनिया भर की कई स्वास्थ्य एजेंसियां विकासशील देशों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मॉडल की तलाश में थी, ऐसे मॉडल जो सीमित संसाधनों में भी ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके।
1: बानू की वाडू परियोजना इस दिशा में एक मिसाल बनकर सामने आई, यह दिखाते हुए कि कैसे एक शहरी अस्पताल अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर गांव में स्थायी बदलाव ला सकता है।
0: इसके अलावा बानू पुणे विश्वविद्यालय की प्रबंधन परिषद की सदस्य रही और वहाँ प्रोफेसर एमेरिट्स भी रही। उनका योगदान सिर्फ अस्पताल प्रशासन तक सीमित नहीं था, शिक्षा नीति में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही।
1: चिकित्सा और समाज सेवा से परे बानू का व्यक्तित्व साहित्य और कला के गहरे प्रेम से भी भरा था, यह उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था।
0: इसी लगाव के चलते वे सकाल समूह के अखबारों से जुड़ी। महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली मराठी समाचार पत्र समूहों में से एक और 30 साल तक वे इस समूह की निदेशक रहीं।
1: इतने लंबे अरसे तक इस तरह के प्रभावशाली संस्थान से जुड़े रहना यह दिखाता है कि बानू सिर्फ चिकित्सा में ही नहीं, मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में भी एक सम्मानित नाम मानी जाती थी।
0: 1994 में उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय और SNDT विश्वविद्यालय दोनों से साहित्य में मानद उपाधियां मिली। एक ही साल में दो अलग अलग विश्वविद्यालयों से यह सम्मान उनके व्यापक प्रभाव का सबूत है।
1: और संगीत कॉन्वेंट में सीखा गया पश्चिमी शास्त्रीय संगीत, नाना के घर का पियानो, लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज की परीक्षा, यह सब उनकी बहुमुखी प्रतिभा का हिस्सा रहा।
0: और अपने पति जहांगीर के साथ बाल रूम डांस करना भी उन्हें बेहद पसंद था। काम के भारी बोझ के बीच भी जिंदगी में यह हल्कापन उन्होंने हमेशा बचा कर रखा।
1: 1993 एक बड़ा सम्मान रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, वो भी लोक सेवा श्रेणी में।
0: यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में स्थापित है और इसे एशिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। कई बार इसे एशियाई नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।
1: पुरस्कार समिति ने अपने प्रशस्ति पत्र में साफ लिखा कि बानू ने एक आधुनिक शहरी अस्पताल के संसाधनों को जोड़कर महाराष्ट्र की ग्रामीण महिलाओं और उनके परिवार के लिए बेहतर सेहत और नई उम्मीदें दी।
0: अपने स्वीकृति भाषण में बानू ने बड़े विनम्रता से इस सम्मान के लिए आभार जताया, जो उनके सीधे साधे व्यक्तित्व को भी दर्शाता है।
1: और इसके बाद आया भारत सरकार का सम्मान पद्म भूषण, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जो कला, समाज सेवा, चिकित्सा, विज्ञान और लोक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किया जाता है।
0: बानू का नाम भारत की उन गिनी चुनी महिलाओं में शामिल हो गया जिन्होंने चिकित्सा और समाज सेवा में ये सम्मान अर्जित किया।
1: इनके अलावा भी बानू को अपने जीवन में कई और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, जो उनके बहुआयामी योगदान की व्यापक स्वीकृति को दर्शाते हैं।
0: 70 पार करने के बाद भी बानू KEM अस्पताल और अपनी बाकी परियोजनाओं की देखरेख में जुटी रहती थी।
1: उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी, शहर के आधुनिक अस्पताल और गांव की मिट्टी दोनों से वे बराबर जुड़ी रही, कभी किसी को नजरअंदाज नहीं किया।
0: वे सत्ता को अपने हाथ में समेट कर नहीं रखती थी, बल्कि गांव की महिलाओं को ही प्रशिक्षित करके उन्हीं को सशक्त बनाती थी। यही उनका असली तरीका था।
1: यह विकेंद्रीकृत सोच, जिसमें बाहरी विशेषज्ञ स्थानीय क्षमता निर्माण पर जोर देता है, न कि लगातार बाहरी दखल पर, आज के विकास अध्ययन में एक स्थापित सिद्धांत माना जाता है।
0: पर बानू ने इसे दशकों पहले ही व्यावहारिक रूप में लागू करके दिखा दिया था।
1: आजादी के बाद भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया और परिवार नियोजन कार्यक्रम इस नीति का एक अहम स्तंभ बना।
0: पर सरकारी कार्यक्रमों की एक बड़ी सीमा ये थी कि वे अक्सर ऊपर से नीचे की तरफ चलते थे, जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी बहुत सीमित रहती थी।
1: बानू का योगदान इसी वजह से खास है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया जिसमें स्थानीय समुदाय, खासकर महिलाएं, खुद बदलाव की वाहक बनी।
0: यह नीचे से ऊपर वाला नजरिया सरकारी कार्यक्रमों की सीमाओं को पार करते हुए ज्यादा स्थायी और असरदार नतीजे देने में कामयाब रहा।
1: और आज जब निजी सरकारी भागीदारी की जरूरत पर जोर दिया जाता है, बानू का यह नजरिया और भी प्रासंगिक लगता है।
0: 15 जुलाई 2004, 86 साल की उम्र में डॉक्टर बानू जहांगीर कोया जी का निधन हो गया।
1: अपने आखिरी दिनों तक वे अपने काम से जुड़ी रहीं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, समाज सुधार, उनकी सक्रियता में कभी कोई कमी नहीं आई।
0: टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबारों ने उन्हें एक सच्ची समाज सेविका के रूप में श्रद्धांजलि दी, जिनका पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा को समर्पित रहा।
1: उनके निधन की खबर सिर्फ पुणे और महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि हर उस जगह शोक का विषय बनी जहां उनके काम और उनकी प्रेरणा का असर पड़ा था।
0: KEM अस्पताल आज भी पुणे के सबसे बड़े चिकित्सा और शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है। हर साल हजारों मरीज, सैकड़ों नए डॉक्टर, यही बानू की देन है।
1: वाडू का वह छोटा सा केंद्र आज शिरडी साईं बाबा ग्रामीण अस्पताल बनकर अब भी आसपास के गांवों की सेवा कर रहा है।
0: और वह मॉडल गांव की महिलाओं को ही प्रशिक्षित करके स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाना, आज भारत की आशा कार्यकर्ता जैसी योजनाओं में भी वही सोच झलकती है जिसे बानू ने दशकों पहले वाडू में लागू किया था।
1: उनकी कहानी आज भी उन युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रख रही हैं।
0: उनका जीवन ये दिखाता है, चाहे कोई कितने भी संपन्न परिवार से क्यों न आया हो, वह अपनी विशेषज्ञता और समर्पण का इस्तेमाल समाज के सबसे वंचित वर्गों की सेवा के लिए भी कर सकता है।
1: डॉक्टर बानू जहांगीर कोया जी, एक डॉक्टर, एक समाज सेविका और एक ऐसी प्रेरणा जो पीढ़ियों तक याद रहेगी।
0: पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जैसे सम्मान उनकी उपलब्धियों के प्रतीक भर है। उनकी असली विरासत उन हजारों महिलाओं और बच्चों की जिंदगी में झलकती है जिन्हें उनके प्रयासों से बेहतर सेहत और नए मौके मिले।
1: उनका जीवन इस बात का सबूत है कि जब असाधारण काबिलियत गहरी करुणा और अटूट संकल्प के साथ जुड़ती है तो एक इंसान भी लाखों जिंदगियों में स्थायी बदलाव ला सकता है।
0: यहीं समाप्त होती है आज की ये विस्तृत गाथा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का, लेखक अखिलेश कुमार वर्मा, और आपके साथ ही मैं नूपुर शर्मा
1: और मैं वेणु बालन।
0: आज दीजिए अनुमति और 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। ये प्रसारण आप तक पहुंचा रेडियो आजाद हिंद के माध्यम से। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
4: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: पिछली कड़ी में आपने जाना कि इंग्लैंड में रहते समय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैक्स मूलर महोदय से स्वामी जी की भेंट हुई थी। वे विश्वविख्यात विद्वान थे और विराट प्राच्य विद्या विशारद एवं भारत प्रेमी भी थे। इस मुलाकात को सभी ने एक ऐतिहासिक घटना माना है।
1: इंग्लैंड प्रवास के दिनों में सेवियर दंपति और कुमारी मूलर ने स्वामी जी को लेकर यूरोप भ्रमण, खासकर स्विट्जरलैंड भ्रमण करने का निश्चय किया। स्वामी जी खुशी खुशी गए। कई महीनों के कठिन परिश्रम के बाद उन्हें विश्राम करने की जरूरत महसूस हुई।
0: जुलाई माह के अंतिम भाग में शिष्य व मित्रों के साथ लंदन से यात्रा कर स्वामी जी जेनेवा शहर पहुंचे। उस समय जेनेवा में एक शिल्प प्रदर्शनी हो रही थी। स्वामी जी ने सब कुछ घूम घूम कर देखा। अंत में उन्हें एक बड़ा सा बैलून दिखा। उन्होंने पूछा,
2: ये बैलून जैसी चीज क्या है?
3: स्वामी जी, ये बैलून ही है। इसमें इतनी गैस भरी जाती है कि ये दो चार लोगों को टोकरी में बिठाकर उड़ा ले जा सकता है।
2: अच्छा, तो मैं भी उसमें बैठूंगा, देखूं तो जरा ऊपर से दुनिया कैसी दिखती है।
3: आप? अरे नहीं, ये बहुत सुरक्षित नहीं है।
2: सुरक्षित नहीं तो इतने लोग इसमें सवारी करने के लिए कतार में क्यों लगे हैं?
3: नहीं स्वामी जी, आप न जाइए।
2: अरे मुझे कुछ नहीं होगा। कब उड़ेगा ये गुब्बारा?
3: सूर्यास्त के समय आकाश का नजारा बहुत बढ़िया दिखता है।
2: ठीक है।
0: स्वामी जी अधीर होकर सूर्यास्त का इंतजार करने लगे। उनकी बच्चों जैसी अधीरता देख सब मन ही मन मुस्कुराते रहे। अंत में स्वामी जी की बारी आई। वे खुशी खुशी गुब्बारे में सवार होकर उड़ने लगे। आकाश साफ था। सूर्यास्त के समय आसमान को देखकर स्वामी जी बहुत ही प्रसन्न हुए। नीचे आकर उन्होंने कहा,
2: आहा, क्या स्वर्गीय नजारा था, क्या रंग थे, आकाश का एक नया रूप देखा, और तुम लोग मुझे स्वर्गीय दृश्य को देखने से रोक रहे थे।

0: जेनेवा से साथियों के साथ कैसल ऑफ चिलो गए। स्वामी जी ने वहाँ से मॉन्ट ब्लांक की ओर यात्रा की। मनोरम पर्वतों पर से गुजरते समय उन्हें हिमालय की याद हो आई। अपने परिव्राजक जीवन को याद करते हुए उन्होंने कहा,
1: मैं चाहता हूँ हिमालय में एक मठ स्थापित

0: शिष्यों के साथ जो चर्चा की थी वो बाद में ईश्वर की कृपा से कार्य रूप में परिणित हुई।
1: शिष्यों के साथ आश्रम की चर्चा करने के बाद स्वामी जी ने भारत में लाला बद्री शाह को पत्र लिखा।
2: क्या आप अल्मोड़ा के समीप कोई ऐसा उपयुक्त स्थान जानते हैं जहां उद्यान आदि के साथ मैं अपना मठ बना सकूं? उद्यान का होना अत्यंत आवश्यक है। एक छोटी सी पहाड़ी मिल जाए तो ठीक हमारे मन माफिक होगा।
0: स्वामी जी की इच्छा अनुसार ऐसा ही एक सुंदर आश्रम पिथौरागढ़ जिले के मायावती नामक स्थान पर सेविया दंपत्ति द्वारा प्रतिष्ठित किया गया। वस्तुतः स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक दृश्य पग पग पर उन्हें हिमालय की याद दिला रहे थे और उनके साथ ही उनके मन में ध्यान, तपस्या, आश्रम आदि की अभिलाषा जाग रही थी। वहां के किसानों का व्यवहार देखकर उनके मन में हिमालय की पहाड़ी जातियों की स्मृति उदय हो रही थी। उन्होंने अपने साथियों से कहा,
2: इनके रीति रिवाज तथा वेशभूषा देखता हूं, बिल्कुल हिमालय की पहाड़ी जातियों के समान ही ये लोग, जो अपनी पीठ पर लंबी टोकरी लटकाए चलते हैं, वो भी हमारे देश के पहाड़ी अंचल में व्याप्त टोकरियों के समान ही हैं।
1: स्विट्जरलैंड में एक पहाड़ी पर चढ़ते समय स्वामी जी ने जिद करके एक हिमनद भी पार किया था। उस हिमनद का नाम था मर्दे ग्लेस। वहाँ से उनका दल चामोनीज नामक एक खूबसूरत गांव में गया। पास ही लिटन सेंट वर्नॉन में ईसाई साधुओं का मठ है, वहाँ भी गए। उसी के ऊपर सुविख्यात सेंट ऑगस्टाइन नामक दर्रा है, जिसके शिखर पर ऑगस्टाइन संप्रदाय के साधुओं की धर्मशाला स्थित है। ये यूरोप की सबसे ऊंचाई पर बसे मानव बस्तियों में एक है।
0: वहाँ से उनका दल मिस मूलर की इच्छा अनुसार सांसफी नामक स्थान पर गया। ये स्थान तुषार मंडित पर्वत शिखरों से घिरा है और शांति एवं निस्तब्धता का साम्राज्य है। संसार की गंदगी का नामो निशान न था। ऐसे अनुकूल परिवेश में स्वामी जी अक्सर ध्यान मग्न रहते थे। पहाड़ों पर वे अकेले ही घूमने निकल जाया करते थे।
1: एक दिन पहाड़ों पर उन्हें एक छोटा मंदिर दिखा, वो मैरी माता का मंदिर था। स्वामी जी पहाड़ से कुछ फूल चुनकर लाए और श्रीमती सेवियर से बोले,
2: मेरी भक्ति और कृतज्ञता के प्रतीक स्वरूप आप इन फूलों को वर्जिन मैरी के चरणों में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि वे भी तो माँ ही हैं।
1: इस प्रकार स्विट्जरलैंड में कई सप्ताह बिताने के बाद स्वामी जी ने स्वयं को काफी स्वस्थ महसूस किया। उन्होंने 8 अगस्त के पत्र में गुडविन को सूचित किया,
2: अब मैं काफी ताजगी महसूस करता हूँ। खिड़की से बाहर दृष्टि डालते ही सामने विराट हिमनद देख पाता हूँ और ऐसा अनुभव होता है मानो मैं हिमालय में हूँ। मेरी रगों में स्वाभाविक शक्ति पुनः लौट आई है और जिस प्रकार की परेशानियों की बात तुमने लिखी है वे मुझे स्पर्श तक नहीं करती। ये बच्चों का खेल भला मुझे कैसे उद्विग्न कर सकता है? सारा संसार बच्चों का खेल मात्र है, प्रचार करना, शिक्षा देना आदि सब। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो न द्वेष करते हैं और न कामना, उन्हीं को सन्यासी समझो। कुछ दिनों पूर्व अचानक ही कृपानंद को पत्र लिखने की तीव्र इच्छा हुई। संभव है वो दुखी होकर मेरी याद कर रहा हो, अतः मैंने उसे एक स्नेहपूर्ण पत्र लिखा था। कुमारी वाल्डो से कहना कि अपना आंतरिक स्नेह प्रदर्शित करते हुए उसे कुछ धन भेज दे। प्रेम का कभी नाश नहीं होता, संतान चाहे जैसी हो या चाहे जो करे, पर पिता का प्रेम अमर है, वो मेरे पुत्र के समान है। इस समय दुख में होने के कारण मेरे स्नेह एवं सहानुभूति पर उसका अधिकार वैसा ही है या शायद उससे भी अधिक।
1: उन्होंने कृपानंद को लिखा था,
2: कल मैं मोंटेरोजा के हिमनद के किनारे गया था और वहां चिर तुषार के प्रायः बीच में उत्पन्न कुछ सदाबहार फूल तोड़ लाया। उनमें से एक इस पत्र में रखकर तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। आशा है तुम भी इस पार्थिव जीवन के समस्त बाधा

0: विघ्न रूपी हिम तथा तुषार राशि के बीच उसी प्रकार की आध्यात्मिक दृढ़ता प्राप्त करोगे। सत्य की ही विजय होती है, मिथ्या की नहीं। सत्य के होकर ही देवयान का मार्ग अग्रसर होता है। यहां पर कोई आश्रम नहीं है, एक रहने से कितना अच्छा होता। मैं उससे अतीव आनंदित होता और इस देश का भी कितना भला होता।
1: स्विट्जरलैंड के ग्रैंड होटल सास्फी वेले से लिखित स्वामी जी के 8 अगस्त के पत्र से ज्ञात होता है कि वे कील निवासी जर्मन दार्शनिक पॉल डायसन के आमंत्रण पर 10 सितंबर को सेवियर दंपत्ति के साथ प्राध्यापक के घर पहुंचने वाले हैं, परंतु कुमारी मूलर उसके पहले ही इंग्लैंड लौट जाएंगी। प्राच्य विद्या के महान पंडित डायसन स्वामी जी के बारे में जानते थे तथा उनके व्याख्यानों का पाठ करते थे। उन्होंने स्वामी जी से मिलने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए पत्र लिखा था जो लंदन से घूमकर उस सुदूरवर्ती गांव में आकर उन्हें प्राप्त हुआ। प्राध्यापक की इच्छा अनुसार स्वामी जी ने भ्रमण योजना में किंचित परिवर्तन कर जर्मनी होते हुए इंग्लैंड लौटने का निश्चय किया, परंतु तब भी पूरा 1 महीना हाथ में था। अतः ऐसी योजना बनी कि वे लोग कुछ दिन और स्विट्जरलैंड में ही बिताएंगे और तदुपरांत कुमारी मूलर के अतिरिक्त बाकी लोग जर्मनी के 2-1 स्थानों का दर्शन करते हुए कीव पहुंचेंगे। मूलर स्विट्जरलैंड से ही वापस लौट जाएगी।
2: पूर्वोक्त ग्राम त्याग कर पूरी टोली संभवतः 22 अगस्त को स्विट्जरलैंड के ही लुसर्न नगर में जा पहुंची। लुसर्न में देखने योग्य काफी कुछ था और उन्होंने एक एक कर सब देखा। कप्तान सेवियर के अतिरिक्त अन्य सभी लोगों ने वहां पर पहाड़ी ट्रेन पर सवार होकर माउंट रिगी के शिखर तक आरोहण किया। इस भ्रमण में भी एक तरह की नवीनता थी और पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जगत के एक अतुलनीय हिम दृश्यावली ने उनके नयन मन को मुग्ध कर लिया। लुसर्न में उन लोगों ने अन्य स्थानों के अतिरिक्त स्विस गार्डों का कब्रिस्तान और उसके ऊपर के पर्वत पर खुदी हुई निद्रित सिंह की एक सुंदर मूर्ति का अवलोकन किया। यहाँ से उन्होंने रीड्स नदी के ऊपर स्थित चित्रों से शोभित 2 सेतुओं को पार किया। इनमें से एक पर मृत्यु का तांडव नृत्य अंकित था और दूसरा सेतु स्विट्जरलैंड के इतिहास की घटनाओं से अलंकृत काष्ठ फलकों द्वारा सुशोभित था।
1: उसके बाद उन्होंने लुसर्न का अजायब घर तथा इतिहास में विख्यात धर्म मंदिर का सुप्रसिद्ध वाइस यूमेना मानव कंठ नामक ऑर्गन देखा। इस वाद्य यंत्र से ठीक मानवीय कंठ के समान ध्वनि निकलते देखकर स्वामी जी बड़े आनंदित हुए। इसके बाद सबने स्टीमर पर चढ़कर लुसर्न झील की सैर की। लुसर्न में विलियम टेल के नाम पर बने एक छोटे से मंदिर को देखकर उस देश प्रेमी के जीवन की कितनी ही घटनाएं स्वामी जी के मन से होकर गुजर गईं। झील के किनारे एक दिन मिर्ची बिकते देख स्वामी जी ने उनमें से कुछ खरीद कर एक मुंह में डाल लिया। दुकानदार इस पर अवाक हो गया।
0: क्या तुम्हारे पास इससे अधिक तीखा मिर्च नहीं है? वाह, मजा आ गया। अरे तुम लोग ताक क्यों रहे हो, खाकर देखो ना, मजा आएगा।
2: इसके बाद वे लोग राइन नदी का जलप्रपात देखने शफ हसैन गए।
1: वहां से वे लोग जर्मनी के एक वृहद विश्वविद्यालय हाइडेलबर्ग पहुंचे और वहां 2 दिन निवास किया। विश्वविद्यालय का परिदर्शन कर और जर्मन लोगों में विद्यादान का विपुल आयोजन और विद्यार्थियों में अदम्य उत्साह देखकर स्वामी जी विस्मित हो गए। नगर के किनारे एक ऊंचे स्थान पर स्थित किला भी उन लोगों ने देखा। वहां से वे लोग कोबलेंज गए और वहां एक रात बिताने के बाद स्टीमर पर सवार हुए। स्टीमर 60 मील दूर कोलोन नगर पहुंचा। उक्त शहर में 2-3 दिन रहकर इन लोगों ने वहां का वृहद प्रार्थना गृह, वहां का कोषागार तथा सन्यासियों द्वारा हस्त निर्मित खूबसूरत जड़ाऊ सलीब एवं अन्य दर्शनीय वस्तुओं को देखा। एक दिन स्वामी जी प्रार्थना गृह में प्रार्थना के समय भी उपस्थित हुए। सेवियर दंपत्ति ने सोचा था कि कोलोन से वे सीधे कील जाएंगे, परंतु स्वामी जी की बर्लिन देखने की इच्छा है जानकर वे लोग उस ओर अग्रसर हुए।
2: स्वामी जी जर्मनी में जाकर जितना ही वहाँ की संस्कृति, कर्मोद्यम, समृद्धि तथा आधुनिक रीतियों से नगर निर्माण का परीक्षण करने लगे, उतने ही विस्मित होकर वे जर्मन लोगों की प्रशंसा करने लगे। आखिरकार वे बर्लिन पहुँचे। उस महानगर की चौड़ी सड़कों, मनोहर उद्यानों तथा सुंदर भवनों ने उन्हें पेरिस की याद दिला दी और उनका चिंतनशील मन फ्रांसीसी और जर्मन सभ्यताओं के तुलनात्मक चिंतन में लग गया। वे समझ गए कि दोनों देशों का अपना अपना वैशिष्ट्य है। जर्मन वीरों की जाति है और लौकिक तथा बौद्धिक प्रगति के मार्ग की समस्त बाधाओं को पार करने के लिए कटिबद्ध है। जर्मनी की सुप्रशिक्षित सेना को देखकर उन्होंने कहा था, क्या ही सुंदर वीरता की प्रतिमूर्ति है। इसके बाद सेवियर ने जब उन्हें ड्रेसडेन ले जाना चाहा, तो स्वामी जी बोले,
3: प्रोफेसर डायसन हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए।
1: अतः वे लोग वहां से सीधे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित कील नगर की ओर चल पड़े और 8 सितंबर को वहां पहुंचकर एक होटल में आश्रय लिया। प्राध्यापक के साथ स्वामी जी के मिलने के विषय में श्रीमती सेवियर की स्मृति कथा से जो बातें ज्ञात होती हैं, वे इस प्रकार हैं।
4: बाल्टिक सागर तट के मनोरम पृष्ठभूमि में स्थित मनोरम कील नगर की ओर तथा वहां के विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर पॉल डायसन के सानिध्य में मेरा जो एक आनंदमय दिन बीता था, उसकी स्मृति के साथ अनेक मधुर घटनाओं के जुड़े होने की वजह से वो मेरे मानस पटल पर अत्यंत स्पष्ट रूप से अंकित है। यूरोपीय संस्कृतविद पंडितों में डायसन का स्थान सर्वोपरि है और उनकी दर्शन पर पकड़ भी अनुपम है। स्वामी जी के होटल में पहुंचने की सूचना पाते ही प्राध्यापक ने एक पत्र लिखकर उन्हें अगले दिन अपने साथ जलपान के लिए आमंत्रित किया और इसके साथ ही सौजन्यता पूर्वक मुझे तथा मेरे पति को भी आमंत्रित किया। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे हम उनके घर जा पहुंचे और हमें उनके पुस्तकालय में ले जाया गया। वहां पर अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर डायसन हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने सादर हमारा स्वागत किया। डायसन स्वयं जिन अनुवाद कार्यों में लगे थे, स्वामी जी ने उनमें रुचि ली तथा उनके बीच अनेक मुश्किल शब्दों के अर्थ एवं तात्पर्य के बारे में चर्चा होने लगी। स्वामी जी ने कहा कि परिभाषा की स्पष्टता ही मुख्य चीज है और भाषा का माधुर्य गौण है। स्वामी जी जिस प्रकार दृढ़ विश्वास के साथ शब्दों के तात्पर्य समझाने लगे और सूक्ष्म तत्वों का परिचय देने लगे, उसके फलस्वरूप जर्मन विद्वान को आखिरकार उन्हीं के मत को मानना पड़ा। भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा चल रही थी कि इसी बीच प्रोफेसर महोदय किसी दूसरे काम से उठकर चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने लौटकर देखा कि स्वामी जी कविता की एक पुस्तक के पन्ने पलट रहे हैं। इस कार्य में वे इतने तन्मय थे कि प्रोफेसर के आने की आवाज तक उनके कानों में न पहुंची। पुस्तक समाप्त कर स्वामी जी अध्यापक की ओर देखते ही समझ गए कि वे काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा,
3: पुस्तक पढ़ रहा था, शायद आप बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्षमा कीजिएगा।
5: इतने कम समय में आपने पूरी किताब पढ़ ली?
3: जी हाँ, और याद भी कर लिया है।
1: स्वामी जी ने उस पुस्तक का कुछ अंश और कविताएं ज्यों की त्यों सुना दी। विस्मय से अभिभूत होकर प्रोफेसर बोले,
5: इससे पहले आपने अवश्य इस पुस्तक को पढ़ा होगा, वरना केवल एक सरसरी निगाह से ही 400 पृष्ठ की किसी पुस्तक को आधे घंटे में याद कर लेना दुसाध्य क्या असंभव है?
3: संयत मना योगी के लिए ये असंभव नहीं है, मेरा ये विश्वास है। ये शक्ति सभी प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं मैं काम कांचन त्यागी सन्यासी हूं, आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य के परिणाम में ये शक्ति स्वयं ही मुझ में आ गई है। पाश्चात्य देश में अनेक लोग इस पर विश्वास नहीं भी कर सकते हैं, परंतु भारत में ब्रह्मचर्य के बल पर इस प्रकार की स्मृति शक्ति के अधिकारी आज कम होने पर भी खत्म नहीं हुए हैं।
2: प्रोफेसर साहब निरुत्तर हो गए और उसी दिन से वे स्वामी जी के भक्त बने।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद। आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपके साथ मैं थी सुनीता सिंह। आपसे विदा लूँ उसके पहले आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवा दूँ। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। 5:10 पर भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महावीर सिंह की। प्रसारण का समय शाम 6 बजे। 6:30 पर इतिहास के पन्नों से इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रानी दुर्गावती के युद्ध के इतिहास पर चर्चा। टेक गुरु कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7 बजे। आज का विषय, दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीक के फायदे। कला कल्लोलिनी, ये कार्यक्रम शाम 7:30 प्रसारित होगा। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर पर। काव्य गुंजन कार्यक्रम रात 8:30 आप सुनेंगे। इसमें सुनिएगा रश्मि रथी का भाग 14। रात 9:00 हमारे वैज्ञानिक कार्यक्रम होगा। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा बानू जहांगीर कोया जी पर। और रात 9:30 सुनिए धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति रचना।

गाने आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में आप सुनेंगे गायन कीर्ति दुबे और पंडित छन्नूलाल मिश्र का। तो आइए, सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गायन, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं कीर्ति दुबे।

दादरा, बनारस का दादरा कैसा होता है कि जो दिल को झुमा दे वो है दादरा। नजर के ऊपर है, एक ही नजर के चार रूप होते हैं। कैसे कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई। नजर ऊंची करते हैं तो दुआ मांगते हैं प्रभु से। नजर ऊंची की तो दुआ बन गई और नजर नीची की तो हया बन गई। नजर नीची की तो शर्मा के नजर नीचे होती।

अब अंत में हमारे भोलेनाथ की होली विचित्र होली है और इसमें भगवान शंकर का दर्शन होता है। देखिए कैसी होली है। साल में एक बार कृष्ण राधा की होली होती है, जलता है होलिका, और यहाँ भगवान शंकर मणिकर्णिका घाट पर रोज होली जलाते हैं। और कैसे होली खेलते हैं,

उन्होंने जब होली दिखा तो क्या कहती है, भूतनाथ की मंगल होरी। ये होली सुनने से मंगल हो।

0: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए दानिश को इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं हरिप्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
0: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती, और आज हमने चुनी है कहानी मुक्तिधन। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मुक्तिधन। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं, उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे ज्यादा लाभदायक है। आमतौर पर सूत की दर 25 रुपए सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपए सैकड़े सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें 15 रुपए सैकड़े से अधिक लाभ हो, और वो भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग, ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन की ही जेब में जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी हो जिसके पास कुछ फालतू धन हो, वो ये व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी के सदुपयोग का ये सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊ दयाल इसी श्रेणी के महाजन थे। वो कचहरी में मुक्तारगिरी करते थे, और जो कुछ बचत होती थी उसे 25-30 रुपए सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्यों से होता था। उच्च वर्ण वालों से वो चौकन्ने रहते थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ को रुपए देने से कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिया जाए। लेते समय तो उनके पास बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही वो सारी संपत्ति गायब हो जाती है। पत्नी, पुत्र या भाई का उसमें अधिकार हो जाता है, और उस संपत्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीतिशास्त्र विद्वान भी मुगी खाते थे। लाला दाऊ दयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुस्लिम अपनी गाय बेच रहा था, और कई आदमी उसे घेर के खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रख देता, कोई उसके हाथ से गाय की पगहिया छीन लेता था। किंतु वो गरीब एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता था, कुछ सोचकर पगहिया को और भी मजबूती से पकड़ लेता। गऊ मोहनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे थन। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। वो व्यक्ति क्षुब्ध और दुखी दिख रहा था। करुण नेत्रों से गऊ को देखता और दिल महसूस कर रह जाता। दाऊ दयाल गऊ को देखकर रीझ गए और पूछ बैठे, क्यों जी, ये गऊ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? उस मुस्लिम युवक ने दाऊ दयाल को देखा तो खुश होकर उनके समीप चला गया। हाँ हुजूर, बेचता हूँ। कहाँ से लाए हो और तुम्हारा नाम क्या है? दाऊ दयाल ने पूछा। तब उस मुस्लिम युवक ने अपना नाम बताया। नाम तो रहमान है, और मैं पचोली में रहता हूँ। दूध देती है तुम्हारी गाय? दाऊ दयाल ने पूछा। हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दोह लीजिए। अभी दूसरी ही तो बेत है, इतनी सीधी है कि बच्चा भी दोहले। बच्चे पैर के पास खेलते हैं, क्या मजाल कि सिर भी हिला दे। दाऊ दयाल ने पूछा, कोई तुम्हें यहाँ पहचानता है? मुख्तार साहब को शुबा हुआ कि कहीं चोरी का माल तो ना हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं। क्या दाम मांगते हो? दाऊ दयाल ने पूछ लिया। रहमान ने 50 रुपए बतलाए। मुख्तार साहब को 30 रुपए का माल जच गया। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई नहीं हुई, और 35 रुपए पर सौदा आखिरकार तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब भी वो मोह के बंधन में पड़ा था। कुछ देर तक सोच में डूबा रहा, फिर गऊ को मंद गति से दाऊ दयाल के पीछे पीछे ले चला। तब एक आदमी ने कहा, अरे हम 36 रुपए दे रहे थे, हमारे साथ चलो। तब रहमान ने कहा, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? तब दूसरे ने कहा, हमसे 40 रुपए ले लो,
अब तो खुश हो? ये कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी नहीं भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी अपनी राह ले ली। रहमान जब जरा दूर निकल गया तो दाऊ दयाल से बोला, हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे, और ये बाकी सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपए में भी नहीं बेचता मैं इसे। आप बड़े मौके में आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती से गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत में पड़ गया हूँ सरकार, तब ये गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को मैं कभी नहीं बेचता। इसे अपने हाथों से पाला है मैंने, कैसे बेच दूं कसाइयों के हाथ। सरकार इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही ये दूध देगी, और भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होगा हुजूर। एक अरज और है, अपने चरवाहे को डांट देना, इसे मारे ना। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा, इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य? यहाँ तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गऊएं बेचते हैं, एक पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते वो तो, और ये गरीब 5 रुपए का घाटा सहकर मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि किसी कसाई के हाथ में न पड़े। वाह, गरीबों में भी इतनी समझ है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दे दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था, और गरीब के तो सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया, उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी। वो इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, और उपाय नहीं था इसलिए विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौरी में मुस्लिम कई परिवार थे। अब की कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले थे। रहमान की बूढ़ी माँ भी हज के लिए तैयार हो गई, और उसने रहमान से कहा, बेटा इतना सबाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान के लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं, खुदा तुमको फल देगा। मातृभक्ति तो वैसे भी ग्रामीणों का विशिष्ट गुण होता है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे, और माता की आज्ञा भी नहीं टाल सकता था। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की ईख पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ईख ऐसी हुई कि कभी ना हुई थी। ये माँ की दुआ का फल था, मगर किससे लूं? कम से कम 200 रुपए तो हो, तब काम बनेगा। उसने सारे उपाय सोच लिए। जब उसका बस नहीं चला तो वो दाऊ दयाल के पास चला गया कर्ज लेने। दाऊ दयाल ने देखते ही बोला, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? हाँ हुजूर, बेची थी, रहमान ने जवाब दिया। रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाया और बोला, सरकार 2 साल की मियाद रख लें। दाऊ दयाल ने कहा, अगर 2 साल में ना दोगे तो ब्याज की दर 35 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश नहीं करूंगा, बस। रहमान ने कहा, जो चाहे कीजिए हुजूर, आपके ही हाथ में हूँ। रहमान को 200 रुपए के 180 रुपए मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया तो थोड़ा सा गुड़ रखा था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझा कर माँ के साथ हज को चला गया। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ मेरे रुपए, कहाँ हैं? रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ, अम्मा जब से हज करके आई हैं तब से बीमार हैं, रात दिन बस उन्हीं की दवा दारू में हूँ। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हुजूर कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा, साल भर की मोहलत और दे दीजिए। तब दाऊ दयाल ने कहा, 32 रुपए सैकड़े ब्याज हो जाएगा।
रहमान के पास एक ही जवाब था, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान ये वादा करके घर आया तो देखा माँ का अंतिम समय आ गया है, प्राण पीड़ा हो रही है, दर्शन बदे थे सो हो गए। माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक से धार गई। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था और अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए जकात और फातिहे की जरूरत थी, कब्र बनवानी जरूरी थी, बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तलावत, ऐसे कितने ही संस्कार थे जो जरूरी थे। पैसों की परेशानी थी, उसको मालूम था कि लाला दाऊदयाल पैसे नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो दाऊदयाल के पास चला गया। रास्ते में एक एक कदम उसके लिए मुश्किल था। लाला दाऊदयाल कचहरी से आकर बैठे ही थे और वो नौकरों पर बिगड़ रहे थे। लाला दाऊदयाल ने रहमान को देखा तो रुष्ट होकर बोले, क्यों आए हो तुम यहाँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, इस वक्त मुझे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ नहीं बोला, वो डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। लेकिन दाऊदयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो उसे दोबारा बुला लिया और नम्र होकर बोले, कैसे आए थे, क्या काम था। तब रहमान ने कहा, नहीं सरकार, बस सलाम करने आया था। दाऊदयाल ने कहा, एक कहावत है, सलामे रोजताई बेगरज नेस्त, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता, क्या मतलब है कहो। अब तो रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊदयाल ने अटकल से समझ लिया कि इसकी माँ अब नहीं रही। क्यों रहमान, तुम्हारी माँ सिधार गई। रहमान ने हाँ कहा, हुजूर आज तीसरा दिन है। अरे रे रे रे, ना रो भैया, सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वो हो गया, ऐसी मौत पर गम नहीं करना चाहिए, तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, और अब क्या चाहिए। रहमान ने भी धीरे से कहा, हुजूर कुछ अरज करने आया हूँ, हिम्मत नहीं है,

दाऊदयाल ने 200 रुपए फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा आश्चर्य था। खेती की हालत अनाथ बालक की तरह होती है। जल और वायु अनुकूल हुई तो अनाज के ढेर लग जाते हैं, लेकिन अगर जरा भी नुकसान हुआ तो सब बिगड़ जाता है। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन रात को रात नहीं समझा। बीवी बच्चे दिलो जान से निपट गए। ऐसी ईख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था। सब उसकी ईख देखकर बहुत खुश होते थे, मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगहन का महीना था। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने के लिए केवल एक पुरानी चादर थी, इसलिए ईख के पत्ते जला लिए थे। तभी हवा का झोंका आया, जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंच गए और देखते ही देखते आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की तरह एक के ऊपर एक गिर रही थीं। सारे उपाय व्यर्थ हो गए। सारा खेत जलकर राख हो गया। अब तो रहमान का दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। उसे तो चिंता सिर्फ दाऊदयाल की थी कि दाऊदयाल का आदमी आएगा तो वो क्या बोलेगा। अब तो इज्जत खुदा के हाथ में है। सुबह का वक्त था। वो अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही देख रहा था और देखा कि दाऊदयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे आ रहा है। प्राण सूख गए। बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसने बचा पाया, लेकिन छिपता तो कहाँ छिपता। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो ना सरकार की बात, एक दिन की भी देरी हुई तो नालिश ठोक देंगे, बेभाव की पड़ेगी तुम्हें। तब रहमान ने कांपते हुए कहा, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना भैया। तब चपरासी ने कहा, यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना, 700 रुपए देना है तुम्हें। भैया सारी ईख जल गई, अल्लाह जानता है कि अब की कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। तब चपरासी ने कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ईख का किसी ने ठेका नहीं लिया, अभी चलो सरकार बुला रहे हैं। और चपरासी ने उसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए दाऊदयाल के घर ले गया। गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने तक का मौका नहीं दिया गया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सिर नहीं उठाया। बस वह अपने मुंह से कह रहा था, या अली मुश्किल कुशा, उसके मुंह से ही निकल रहा था। उसे अब इस नाम का भरोसा था, यही जब हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वो गिर जाता या बेहोश हो जाता। दाऊदयाल द्वार पर टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों पे गिर गया। खुदाबंद बड़ी विपत्ति है, अल्लाह जानता है मैं कहीं का नहीं हूँ। दाऊदयाल ने कहा, क्या सब ईख जल गई? हुजूर सुन तो चुके हैं आप, तो अब मैं क्या करूं, नालिश कर दूं? दाऊदयाल ने कठोर स्वर में कहा। तब रहमान ने कहा, हुजूर मालिक है, जो चाहे करे, मैं तो इतना जानता हूँ हुजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है, अपनी सोची नहीं होती, 2 बार वादे किए थे, दोनों बार झूठा हो गया। अब जो कुछ भी मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा, मेहनत मजूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह हो सकेगा हुजूर आपके पैसे दूंगा। दाऊदयाल मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है बताओ। हुजूर बस यही आरजू है कि आपके रुपए अदा हो जाएं। अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए, दाऊदयाल ने कहा। अरे हुजूर ये कैसे समझ लूं, यहाँ ना दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे, रहमान ने आश्चर्य से कहा। नहीं रहमान अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था, दाऊदयाल ने कहा। सरकार ऐसा ना कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मर सकता मैं, रहमान ने हाथ जोड़ लिए। तब दाऊदयाल ने कहा, कैसा जी, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं, अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहाँ भी और वहाँ भी, अब तुम मेरे एक भी पैसे के देनदार नहीं हो,
असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है, दो बछड़े नफे में अलग मिले। अगर तुमने ये गऊ कसाई को दे दी होती तो मुझे इतना बड़ा फायदा कैसे होता, बताओ भला। तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी, वो शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो रहमान, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपए माफ कर देता हूँ तो कोई बड़ा काम नहीं भैया। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान ना किया हो, पर असल में किया है। हम तुम दोनों अब बराबर हैं, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे, तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो। मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो जितने चाहे उतने ले लो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और निम्न हो जाए तो शैतान, ये दोनों मानवीय वृत्तियों के ही नाम हैं। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी ना निकल पड़े। बहुत मुश्किल से उसने आंसुओं को रोका, रुंधे हुए स्वर में कहा, हुजूर इस नेकी का बदला खुदा आपको देगा, मैं तो आज से का गुलाम समझूंगा। दाऊदयाल ने रहमान को उठा लिया और कहा, नहीं जी तुम मेरे दोस्त हो। रहमान रुंधे स्वर में बोले जा रहा था, नहीं हुजूर मैं आपका गुलाम। और दाऊदयाल ने रहमान को गले लगा लिया। गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले ही मुझे मुक्ति धन अदा कर चुके हो, अब भूलकर भी ये शब्द नहीं निकालना दोस्त।

तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

प्रेम पत्र एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में मीठी तरंगे दौड़ पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो सरगम के सातों सुर मन की वीणा पर एक साथ झनक उठे हों, जैसे बसंत ऋतु की कोयल ने तड़प कर कुहु भरी हो, जैसे पपीहे ने बादलों को आवाज दी हो और जैसे सूखी धरती पर मेघ बरस पड़े हों। होता तो यह एक कागज का टुकड़ा ही है, पर इसे खोलते हुए हाथ कांपने लगते हैं। हर एक अक्षर आवाहन सा करता हुआ लगता है, न जाने किस लोक की महक समेटे रहता है यह कागज का टुकड़ा। इस दुनिया के किसी भी सुगंध में वो पागलपन कहां, वो मादकता कहां। हम में से बहुतेरे लोगों ने अपनी किशोर अवस्था में यह पागलपन अवश्य किया होगा, और क्यों ना करें। अजी कच्ची उम्र का यह विहल आनंद जीवन में दोबारा भला कहां मिलने वाला है। पर कुछ ऐसे भोले सनम भी होते हैं जिन्हें प्रेम पत्र लिखना उनके लिए पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। वो गणित के कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर लेते हैं, पर दिल के कागज पर प्रेम की यह पहेली हल करने में मात खा जाते हैं। तो लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है एक ऐसे ही भोले सनम की दास्तां, जो प्रेम पत्र लिखने की ऐसी कोशिश करता है कि उसमें वो फंसता ही चला जाता है।

0: मुझसे प्यार है।
1: क्या बात है, आज मेम साहब का मिजाज बड़ा आशिकाना हो रहा है।
0: क्यों, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ?
1: अरे नहीं, अभी तो हजार जाने तुम पे कुर्बान। एक बार बन समर कर निकल जाओ कहीं ना, तो मनचलों के सीने पे सांप लौट जाए। और क्या?
0: नहीं नहीं, कुछ और का होना मेरी तारीफ में।
1: क्या सूझी थी मुझे जो मैंने आग में हाथ डाल।
0: क्या कहा, जरा जोर से कहना तो।
1: अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर मांग में सिंदूर न भरो तुम, तो न जाने कितने लड़के तुम्हें प्रेम पत्र लिखने के लिए कलम में स्याही के बजाय अपनो लहू डाल दे।
0: सच? मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, पर ये बताओ जी, आज तक तुमने क्यों नहीं लिखा मुझे कोई प्रेम पत्र?
1: क्या प्रेम पत्र? मैं? अरे जिंदगी में कभी जो काम नहीं किया वो काम मैं अब।
0: जिंदगी में शादी भी तो नहीं किया थे तुम? हर काम इंसान कभी ना कभी पहली बार ही करता है।
1: हाँ?
0: और सच पूछो तो ऐसे इंसान से लव लेटर पाने का मजा ही कुछ और है। उसके लव लेटर की भला क्या अहमियत, जो दुकान के कैश मेमो की तरह हमेशा ही काटता रहता है। हाँ जी, अब तो तुम्हें मेरे लिए एक प्रेम पत्र लिखना ही होगा। और वो जो खूबियां अभी अभी तुमने बताई थी ना मेरी, उनकी लिस्ट और बढ़ानी होगी।
1: मगर मेम साहब, ऐसे कैसे लिखा जा सकता है प्रेम पत्र? इसके लिए जुदाई होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, मन में कसक होनी चाहिए, पर आप तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती हैं। ऐसे में वो सेंटीमेंट्स कहां से लाऊं मैं?
0: तो ठीक है जी, उसका भी इंतजाम किए देती हूँ मैं। रिंकू को लेकर मायके चली जाती हूँ।
1: क्या?
0: और क्या, फिर जब आप प्रेम पत्र लिखकर गुहार लगाएंगे ना, तभी लौटूंगी मैं। पपीहे की तरह पीऊ पीऊ करना, तभी झलक दिखलाएगी आपकी ये सावन की घटा।
1: अरे अरे, ऐसा जुल्म ना करिए श्रीमती जी। लीजिए, मैं आपके जाए बिना ही आपको प्रेम पत्र लिख देता हूँ। लिख देता हूँ कि मुझे आपसे बेहद बे इंतहा मोहब्बत है। हाँ, मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और ये लीजिए मेरी सिग्नेचर, नीरज वशिष्ठ। बिल्कुल पक्की रसीद है ये। अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना।
0: वाह रे मेरे कारोबारी सनम, और वाह रे आपका प्रेम पत्र, जैसे किसी कंपनी का वारंटी कार्ड भर रहे हो। अरे दिल की डीलिंग बिजनेस की तरह नहीं की जाती है। जब आप सच्चे दिल से पूरी फीलिंग के साथ लिखेंगे ना, तभी ये कस्टमर आपकी बात पर यकीन करेगा। और ये फीलिंग मैं आपको देकर ही मानूंगी। अरे मैके की जर्नी अब मेरी फाइनल है। कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें अब दखल नहीं कर सकता है।
1: हे भगवान, आज सुबह सुबह किस गलत गली में घुस गया। त्रिया हट ने तो दशरथ की भी मिट्टी पलीत कर दी थी यार। त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, इस मुसीबत से बाहर निकालो।
2: तो श्रोताओं, इस तरह से नीरज की धर्म पत्नी रितु त्रिया हट कर बैठती है कि उसका पति उसे प्रेम पत्र लिखे। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। पहाड़ी झरने की तरह गरजता प्यार तूफानी दौर से गुजर चुका है, और अब तो नदी सागर में समा चुकी है, जहां का पानी शांत व ठहरा हुआ है। रितु इस पानी को पहाड़ पर चढ़ाना चाहती है। नीरज की हालत खराब है, रितु उल्हाने देती है। नीरज धीरज का परिचय देता है। एक तरफ तलवार थी तो दूसरी तरफ ढाल। अब सुनिए आगे क्या होता है उन दोनों की दास्तान।
0: सुनो जी, मम्मी का फोन आया है।
1: क्या?
0: उनका बीपी है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
1: अरे,
0: बोली है कि जल्दी आ जाओ।
1: क्या यार, अभी हाल तक तो सब ठीक था, और अब यकायक ये।
0: अरे यकायक ही तो सब होता है पति देव। अब देखो, यकायक ही मुझे मायके भी जाना पड़ेगा, पर मेरे पीछे मेरी उस ख्वाहिश का ध्यान जरूर रखना पतिदेव। नहीं तो अब मायका ही होगा मेरा परमानेंट ठिकाना। फिर ना कहना कि
1: नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म ना करो मेरी जान मुझ पर। आपके बिना तो मुझे एक पल भी पहाड़ लगता है यार। और आप कहती हैं कि
0: डिसीजन फाइनल है, जाना तो होगा ही, पर वापसी आप पर डिपेंड करती है।
1: कैसे?
0: जितनी जल्दी आपका प्रेम पत्र मुझे मिलेगा उतनी ही जल्दी मेरी रवानगी डलेगी वहाँ से।
1: क्या टेलीफोन से काम नहीं चलेगा?
0: हरगिज नहीं, रिटर्न एविडेंस बर्बल से ज्यादा पावरफुल होता है।
1: एसएमएस?
0: बिल्कुल नहीं, मुझे डिटेल्ड ब्यौरा चाहिए। मेरे बिना कैसा लगा तुम्हें, कैसे तुम्हारे दिन गुजरे, कैसी रातें गुजरी, कैसी नींद आई, और कितना याद किया तुमने मुझे। तुम्हारे पूरे एहसास चाहिए मुझे, मेरी ये ही वापसी की टिकट होंगे, समझे?
1: इतना कुछ लिखना होगा प्रेम पत्र में? ब्योरे वार दास्तान, वेरी डिफिकल्ट, हॉरिबल।
0: ताजमहल बनवाने से ज्यादा तो मुश्किल नहीं है।
1: अरे ताजमहल कोई शाहजहां ने अपने हाथों से थोड़ी ही बनाया था यार, बादशाह सलामत थे, वो हुक्म दे दिया और बन गया ताजमहल। तुम कहो तो मैं भी किसी एक्सपर्ट से लेटर।
0: हे राम, कैसा जमाना आ गया है अब, प्रेम पत्र भी लिखवाने के लिए लोग एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं। शेरो शायरी तो फीस चुका कर मिल ही जाती है, और अब ये लव लेटर भी। वाह जी वाह। पर सुनो जी, मैं बता देती हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी इस मामले में। अगर ब्लैक लिस्टेड हो गए ना आप, तो टेंडर भी भरने को नहीं मिलेगा, काम पूरा करने की बात ही छोड़िए। सुनो जी, अपना ख्याल रखना। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर घूमने जरूर जाना, ताजी हवा खाना, पर नजर नीचे रखना। हाँ, और सुनो, नौकरानी को मैंने मना कर दिया है, जवान जहान है, क्या ठिकाना उसका।
1: क्या? अब घर का झाड़ू पोछा भी मैं करूँगा क्या, क्या, क्या, क्या?
0: अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छे पति का धर्म है।
1: अरे यार, तुम्हारे अलावा मेरी इज्जत को भला और किससे खतरा हो सकता है? एक मिनट, ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो रहा है।
0: जा तो मैं रही हूँ जी, पर मुझे ना बड़ी रुलाई छूट रही है, मन कर रहा है कि उतर पड़ूं गाड़ी से। सच तुम्हारे बिना रहने का सोचकर ही जी घबराने लगता है।
1: अरे तो उतर पड़ो, इतना प्यार हमारी आंखों में उमड़ रहा है, इसके आगे भी प्रेम पत्र की जरूरत लगती है क्या तुम्हें?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। पक्का इरादा, कड़ा अनुशासन। रिंकू को भी मैं इसलिए साथ लेके जा रही हूँ जिससे तुम्हें तन्हाई शिद्दत से महसूस हो।
1: तुम औरतें तो यार इतनी दूर तक कैसे सोच लेती हो? बापरे, मैं तो सोच रहा था कि मेरा भार हल्का करने के लिए तुम रिंकू।
0: हाँ, और क्या, अरे भार हल्का ही तो हो रहा है तुम्हारा, भाई अकेले जन का काम रहेगा, चटपट निपटा लेना तुम, और फिर तन्हा बैठकर लव लेटर लिखना, और जब वो लव लेटर पूरा हो जाए ना तो मुझे पोस्ट कर देना।
1: सफर में अपना ख्याल रखना, पहुंचते ही फोन करना।
3: पापा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।
0: गाड़ी तो छोड़ो, स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी छोड़ो।
1: अरे बेटा, रिंकू मम्मी को तंग ना करना, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करना।
0: बाय
3: बाय।
2: रितु के जाने के बाद नीरज के एक दो दिन तो बड़ी मस्ती में गुजरे। जब चाहो खाओ, जब चाहो सो, जब चाहो उठो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रितु होती तो कहती, यह ना करो, यह ना खाओ, अब टीवी बंद कर दो, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कच्ची नींद में उठा देती और कहती, फ्रेश होकर टहलने निकलो। जिंदगी जैसे जेल मैनुअल पर चल रही थी, पर अब आजादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला था। लेकिन नहीं, अजी अकेलेपन की आजादी डराने वाली थी। भला शमशान की शांति भी किसी को अच्छी लगती है? नीरज को आटे दाल का भाव याद आ रहा था। अब सुनिए आगे की दास्तान।
1: यार, चाय की पत्ती कहाँ रखी है? पानी उबला जा रहा है। ये औरतें भी ना जाने चीजें ना जाने कहाँ कहाँ रखती है। आया आया भाई आया, तुम्हें भी यार अभी बजना था। हेलो, अच्छा अब जाके फोन करने की फुर्सत मिली मैम साहब को। धन्यवाद मेरे जो आपको मेरी याद आई। क्या शेर? नहीं नहीं, सवा शेर कहिए जनाब। क्या क्या कह रही हैं? यही काबिलियत में लव लेटर लिखने में भी? अरे क्या यार, मेरी अग्नि परीक्षा क्यों ले रही हैं पत्नी जी? हैं? नहीं, मैं पार ना कर पाऊंगा इसे। क्या कहती हैं? उसके बिना आप नहीं आएंगे, करना ही पड़ेगा। अरे यार, हम पतियों के लिए तो होम मिनिस्ट्री ही सुप्रीम कोर्ट है, कोई मर्सी अपील भी नहीं होती इसके फैसले पर। ओके, ठीक है ठीक है, करता हूँ यार, करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, बाय बाय बाय बाय।
2: रितु को गए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। नीरज समझ चुका था कि उसकी मोहम सी रितु अब आयरन लेडी बन चुकी है, जिसकी निगाह अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर थी, और वो लक्ष्य था प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखना ही पड़ेगा, कोशिश करता है नीरज, और वो पूरा ब्योरा लिखने बैठ जाता है। आप भी सुनिए क्या लिखा उसने अपने प्रेम पत्र में।
1: मेरी प्राणेश्वरी, तुम्हें गए अभी 4 दिन ही हुए हैं। इन 4 दिनों में ही मुझे तुम्हारी कीमत पता लग गई। तुम्हारे रखे सामान किचन में मिलते ही नहीं थे, अब जाकर कुछ कुछ उनकी लोकेशन समझ में आने लगी है। कल की बात है, दाल फ्राई करते हुए मेरे चेहरे पर घी का छींटा पड़ गया। रोटियां नक्शों की तरह बनती हैं, फूलती भी नहीं, कच्ची रह जाती हैं। नतीजा ये होता है कि ठीक से पचती भी नहीं, खट्टी डकारें आती रहती हैं।

0: करती थी तू?
1: मुझे तो सब दिन दहाड़े लूट लेते हैं, तुम होती तो ऐसा ना हो। छत पर कपड़े फैलाए थे, क्लिप लगाना भूल गया था, सब उड़ गए। सच, तुम्हारे बिना समझ में आता है कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? अब तो उनका बीपी नॉर्मल होगा। रिंकू शैतानी तो नहीं करती? हाँ, तो ये रहा तुम्हारा रिटर्न टिकट। तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, अब लौट आओ। तुम्हारा पत्नी पलायन पति।
2: कुछ ही दिनों के बाद नीरज को अपने प्रेम पत्र का जवाब मिल गया। आंखों में खुशी और दिल में उत्साह था। इकलौती पत्नी का पहला पहला पत्र था। खोलकर पढ़ा उसने।
3: वाह रे मेरे भोले सनम, आपके लव लेटर ने तो बड़ा ही मायूस किया। वादा वफा न रहा। ये आपने लव लेटर लिखा है कि डायरी? मैंने तो दिल का हाल बयान करने के लिए लिखा था, और आपने गृहस्थी का हाल बयान कर दिया। ये लव लेटर नहीं, ये रोज नामचा है। क्या मेरी कीमत बस इतनी ही है कि मैं आपकी गृहस्थी चलाती रहूं? सोचा था कि जुदाई में आप मजनू बन जाएंगे, पर आप तो नहीं। नहीं नहीं, ये रिटर्न टिकट वैलिड नहीं है। इसके सहारे सफर करना बेटिकट सफर करने जैसा होगा। एक बार आप फिर कोशिश कीजिए। मम्मी का बीपी पहले भी ठीक था, हाँ अब जरूर बढ़ गया है। सोचती हैं कि मैं लड़कर आई हूं आपसे। आप सेहत का ख्याल रखिएगा और इज्जत का भी। आपके लव लेटर के इंतजार में, आपके रितु।
2: प्रेम पत्र को पढ़कर के नीरज की हवा खराब हो गई। जिसे ब्रह्मास्त्र समझकर चलाया था वो तो लकड़ी का तीर निकला। अब क्या करे वह, इस कला में माहिर न था। सोचा क्यों ना अपने दोस्त अशोक की मदद ली जाए। आखिर दोस्त वही होता है ना जो मुसीबत में काम आए। तो नीरज पहुंच गया अशोक के घर उससे सलाह लेने।
4: कौन? अरे नीरज तू भाई, सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए?
5: अरे यार भीतर तो आने थे पहले कि दरवाजे पर ही पूरा इंट्रोगेशन कर डालेगा।
4: आना आना बैठ। क्या लेगा तू? अरे श्यामा जरा दो कप चाय तो पिलाना गर्मा गर्म।
6: हाँ, लाती
5: यार। चाय वाय तो बनती रहेगी, पर इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
4: क्या हो गया तुझे कि सांड को तूने लाल कपड़ा दिखा दिया जो जान बचा कर यहाँ भागा है?
5: अरे यार सांड से पीछा छुड़ाना तो फिर भी आसान है, पर ये प्रेम पत्र।
4: प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर? वाह यार, किसकी मती मारी गई है जो तुझ जैसे शादीशुदा को लव लेटर लिखेगा?
5: भाई मती किसी और की नहीं, मेरी खराब हो रही है। समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेम पत्र लिखूं मैं, जिस काम का कोई तजुर्बा ही नहीं है वो आखिर यार मैं।
4: वाह भाई वाह, तो ये बात है। भाभी कहाँ है जो तू?
5: वो मायके गई हुई है बाल गोपाल को लेकर।
4: और तू मौके का खूब फायदा उठा रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है?
5: नहीं नहीं,
4: अब जब प्रेम का पत्र है तो प्रेमिका भी तो होगी ना कहीं ना कहीं। बच्चू आने दे भाभी को, फिर देख मैं किस तरह।
6: लीजिए भाई साहब चाय लीजिए।
4: खैर ये ले, पहले चाय पी ले तू, फिर तुझे पानी पिलाता हूँ जीवा।
5: अरे कोई प्रेमिका प्रेमिका नहीं है यार, तेरी भाभी को ही प्रेमिका बनने का जुनून सवार हुआ है।
4: अच्छा?
5: हाँ, वो बोलती है मुझे प्रेम पत्र लिखो तब लौटूंगी मैं। अब तू ही बता यार मैं क्या करूं।
4: ओ, तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया?
5: तूने बताने कब दिया? एकदम से राशन पानी लेकर चढ़ बैठा मेरे ऊपर।
4: खैर खैर बोल दोस्त, क्या मदद मांगता है तू?
5: यार एक चिट्ठी लिखी थी उसे, जवाब में लिखती है फीलिंग के साथ लेटर लिखो तब लौटूंगी। अब तू ही बता के।
4: ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर।
5: हाँ,
4: एक हिट आइडिया देता हूँ तुझे।
5: बता यार।
4: कुछ फिल्में देख डाल।
5: हा?
4: कुछ शेर और शायरी की किताबें पढ़ डाल।
5: हाँ,
4: किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा रख आंखों के सामने, क्योंकि जब खूबसूरती सामने होगी तो अल्फाज खुद

0: बखुद निकलने लगेंगे, बस तैयार हो जाएगा तेरा प्रेम पत्र।
1: थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स। अब बाद में मिलता हूँ तुझसे।
0: पहले चाय तो खत्म कर ले भाई।
2: तो वो तू पी लेना। बाय एंड अगेन थैंक यू यार।
0: बाय बाय।
3: नीरज के हाथ फार्मूला लग चुका था, बस उसका इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए थी। अशोक का एक एक शब्द उसने पकड़ा। अशोक ने कहा था कि फिल्में देखो, शेरो शायरी की किताबें पढ़ो, खूबसूरत लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने रखो। अब उसने कई फिल्में देख डाली। नई फिल्में उसको जमी नहीं, तो उसने पुरानी फिल्मों का सहारा लिया। शेरो शायरी की किताबें भी कई पढ़ी, पर बेचारा खूबसूरत लड़की कहां से लाता? अकल काम नहीं कर रही थी। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। मार्केट जाकर के एक खूबसूरत सा पोस्टर उठा लाया और दीवार पर चस्पा कर दिया। साथ ही एक सुगंधित लेटर हेड भी ले आया, जिसके एक कोने पर दो दिल बने हुए थे और दिल में एक तीर चुभा हुआ था। सारी सामग्री इकट्ठी करके अब वो लव लेटर लिखता है। आइए आप भी सुने उसका लव लेटर।
1: हा हा हा, ये पोस्टर भी लग गया। आप ठीक है। इसकी खूबसूरत आंखों में डूबकर, गुलाब की कली जैसे इसके होठों को देखकर, खिलती धूप सी इसकी मुस्कुराहट में नहाकर, अब लव लेटर लिखने की फीलिंग पैदा की जा सकती है भीतर से। एक काम और करता हूँ, बाजार से रंगीन लेटर पैड और खरीद कर लाता हूँ, वही जिस पर तीर से बिंधे हुए दिल बने रहते हैं, जिससे भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, तब प्यार का एहसास और भी घना हो सकेगा। बिल्कुल कंफर्म रिटर्न टिकट बनेगा तब, कोई वेटिंग शेटिंग नहीं। अब हो गया प्रणेश्वरी तुम्हारा लव लेटर तैयार। एक बार पढ़ तो लूं, कैसी फीलिंग आती है। प्रिय प्रणेश्वरी, तुम्हें जाने आरजू कहूं या आरजू ये जहां कहूं, तुम ही बता दो मुझे, मैं तुम्हें क्या कहूं। तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को मन करता है। जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है मानो कोई कानों में मीठी मीठी मिश्री खोल रहा हो। जब तुम कुछ बोलती हो तो दिल में सितार बजता है। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गाल में जो डिंपल पड़ता है वो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तुम्हारे बिना न नींद आती है न चैन आता है, दिल तुमसे मिलने को बेचैन होता है। चांद में तुम नजर आती हो, सितारों में तुम नजर आती हो, रोटी में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। जिस शक्ल को भी देखता हूं बस तुम्हारी ही शक्ल दिखती है। जुदाई के पल अब बर्दाश्त नहीं होते। अब तुम ही बताओ कब मिलेंगे हम। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्राणों से भी प्यारा। आ रही है फीलिंग आ रही है। अब एक बार अशोक को और दिखला देता हूं।
0: ये क्या लिखा है रे बुद्धू तूने? ऐसे भी कहीं प्रेम पत्र लिखते हैं? अरे मैंने तुझे फिल्में देखने के लिए कहा था, फिल्मों के गाने और डायलॉग चुराने के लिए नहीं। औरतें फौरन ताड़ लेती हैं कि बनाया जा रहा है उन्हें। अरे नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए इसमें।
1: यार नेचुरल एक्सप्रेशन ही बनता मुझसे तो तेरी मदद क्यों लेता? मानता हूं कि सब कुछ अननेचुरल है, पर करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी भाभी का कोप भवन
2: टूटने वाला नहीं है।
0: अच्छा यार एक काम कर तू।
2: बोल।
0: अभी तो रह नहीं दे तू उसे, मैं जरा फुर्सत निकाल कर आता हूँ तेरे पास, फिर मैं खुद बैठ कर लिखवा दूंगा तुझे। उसे भाभी को भेजना तू, पर ये जो एंटीसेंट लिखा है ना तूने,
2: हाँ।
0: इसे तो रहने ही दे भगवान के लिए। लव लेटर लिखे, अरे भाभी वापस तो नहीं आएगी, उल्टे तुझे नौटंकी की बात समझेगी।
1: आता हूं भाई आता हूं। कौन टपक पड़ा यार?
4: अरे तुम, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। अरे तुमने तो ठानी थी क्या?
5: ठानी तो बहुत जमकर थी, पर क्या करूं पतिदेव, आप पर तरस आ गया। और सच कहूं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती हूं मैं, सोचना चाहिए था मुझे। आप जैसे भोले भाले आदमी भला क्या जाने प्रेम पत्र लिखना। सतयुग के पुरुष ठहरे आप, आज के छोरों जैसी लंपटता आप में कहाँ है भला।
4: क्या बात है। आपने अपना प्रण तोड़ दिया इस नाचीज के लिए।
5: मैं तो प्राण दे दूं पति देव, प्रण तो कुछ भी नहीं आपके लिए।
4: थैंक गॉड।
3: नीरज मन ही मन खुश था, नीरज की मुसीबत टल चुकी थी, पत्नी बिना प्रेम पत्र के ही मान गई थी, खुशी खुशी दफ्तर गया। पर जब वापस लौटा तो घर में मातम फैला हुआ था, प्राण देने का वादा करने वाली पत्नी प्राण लेने पर उतारू थी, आंखों से प्रेम की धारा नहीं आंसुओं का सैलाब बह रहा था, मुख से शहद के भीगे शब्द नहीं बल्कि तोप के गोले चल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था दिन भर में, आप भी सुनिए।
5: वाह रे मेरे भोले सनम, अच्छी वफा निभाई तुमने, तुम भी आखिर बाकियों की तरह ही निकले ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी, रंगोसी और।
4: अरे काहे मुहावरेदार गालियां दे रही हो भाई, साफ साफ बताओ कि क्या हो गया। सुबह सुबह की स्वच्छ ऋतु अचानक इतनी गर्जन तर्जन क्यों कर रही है?
5: अरे अपनी किस्मत को रो रही हूँ और क्या।
4: क्या?
5: अरे क्या समझा था तुम्हें और तुम क्या निकले, कहते थे प्रेम पत्र लिखना ही नहीं आता और यहाँ तो पूरा प्रेम सागर ही उमड़ा जा रहा है।
4: क्या कह रही हो?
5: ये देखो अपना कच्चा चिट्ठा, हाथ कंगन को आरसी क्या, अरे मेरे पीछे इश्क फरमा रहे थे तुम।
4: क्या कह रही हो?
5: सींग कटा कर बछड़े बन रहे थे तुम, तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने है।
4: पाप? ओहो तो ये बात है। अरे यार ये पाप नहीं, मेरा बेवकूफी नामा है बेगम, ये आपके लिए ही लिखा था मैंने, किसी और के लिए नहीं। आपके सर की कसम।
5: मेरे सर की कसम ना खाओ जी, खाना है तो उसी की कसम खाओ जो तुम्हारे सपनों की रानी है।
4: अरे तुम
5: उसकी इबारत पढ़ो ना, तुम खाने में, तुम खाने की हर बोटी में, तुम मुझे पागल समझा है क्या? 15 दिन बाद लौट कर आ रही हूँ मैं और मैं मान लूं कि ये लाइन तुमने मेरे लिए लिखी है।
4: अरे हाँ जी 100% ही तुम्हारे लिए लिखी थी यार, इमोशन पैदा करने के चक्कर में ये बेवकूफी हुई थी मेरे से। हाँ, दरअसल एक दिन पहले ही सपने में आई थी तो।
5: बहुत अच्छे हाँ, और ये तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाने को मन करता है, और थोड़ी सी भी गलत बची हो ना तुम्हें तो तुम तालाब में जाकर डूब मरो या मुझे डुबो दो और फिर मजे से रहना उसके साथ में।
4: अरे यार धर्म पत्नी जी ये लाइन तो फिल्मों के चक्कर में आ गई यार, सच मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद नहीं बनाई है इसे।
5: और ये आगे भी तो देखो।
4: अरे
5: रहन दो बस बस, अब एक झूठ छुपाने के चक्कर में 1000 झूठ मत बोलो जी, फंसते ही चले जाओगे तो।
4: अरे यार कैसे तुम्हें समझाऊं प्राणेश्वरी, प्रेम पत्र लिखते समय ये सब झूठ सच लिखना पड़ता है यार, नहीं तो प्रेम पत्र का वजूद ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। सब सच लिख दिया तो प्रेमिका पत्थर फेंक कर मारेगी अपने प्रेमी को।
5: अच्छा तुमने कहा और मैंने मान लिया है ना।
4: हाँ हाँ मान भी जाओ मेरी बात यार, ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था, तुम्हारे लिए ही लिखा था।
5: तुम मुझे बरगलाओ नहीं, और ये देखो ये तुम्हारा, ये क्या लिखा तुमने? जब तुम हंसती हो ना तो तुम्हारे गाल पर जो डिंपल पड़ता है ना, तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। तुम ही बताओ मेरे कचोरी जैसे गालों में कब डिंपल पड़ता है।
4: अरे यार,
5: और आगे ये देखो, ये देखो क्या लिखा है, चांद में तुम, सितारों में तुम, रोटी में तुम, आईने में तुम, हर शक्ल में तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है।
4: अरे क्या
5: बड़ी आंखें सेकी जा रही थी मेरे पीछे।
4: अरे यार,
5: इश्क का भूत तो ये पोस्टर भी बयान कर रहा है जिसे आंखें सेकने के लिए तुमने।
4: अरे यार, इस पोस्टर में भी तो तुम ही हो जाने मन, जमीन पर आसमां में तुम ही हो जाने मन।
5: ओहो, बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं मेरे सरकार। कहां तो प्रेम पत्र लिखने के नाम पर हाथ पांव ठंडे पड़े जा रहे थे, और कहां पूरे प्रेम कवि ही बन चुके हैं। किसका कमाल है ये बताओ मुझे। पर मुझे क्या, मैं तो वापस जा रही हूँ। नादान थी मैं जो तुम्हें भोला समझ बैठी। अरे तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो।
4: अरे जाने मन क्या।
5: अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली रूप दिख गया, नहीं तो जिंदगी भर में इसी मुगालते में रहती कि मैं।
4: ऐसा जुल्म ना करो जी। तुम सुनो तो यार, एक काम करो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता?
5: बिल्कुल नहीं।
4: तो तुम अशोक को बुला लो। अशोक को तुम बुला लो, तुम खुद तस्दीक कर लो अपने हिसाब से, जैसा तुम चाहो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बीच में चुपचाप बैठा रहूंगा यार, प्लीज। ऐसा
0: क्या हुआ भाभी, इतनी इमरजेंसी में आपने क्यों बुला लिया मुझे?
5: क्या कहूं भैया, कुछ दिनों के लिए मैं मायके क्या चली गई, इन्हें तो सिंह ही निकल आए। अरे आशिकी करना शुरू कर दिया, एक बेटी के बाप हैं, पर हरकत जी जी। मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तुम खुद ही देखो कैसा बेहुदा लव लेटर लिखा है इन्होंने अपनी उसको। अरे वो तो यकायक मैं आ गई और ये दे नहीं पाए उस कलमुही को, नहीं तो।
0: ओहो, तो ये बात है। अरे ये बुद्धू है भाभी, आपको वापस बुलाने के लिए न जाने क्या क्या बेवकूफियां करता रहा है ये। मुझे मालूम है इस लव लेटर के बारे में, मैंने ही तो कहा था इससे कि इसे पोस्ट ना करे। फंस गया बेचारा। अरे पोस्ट कर दिया होता आपको तो कम से कम आज आप इस बेचारे पर शक तो ना कर रही होती।
5: सच कह रहे हैं भैया आप, ये भी यही कह रहे थे, पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ।
0: 100% सच कह रहा हूँ भाभी, आप चाहें तो श्यामा से कंफर्म कर लीजिए पूरा मैटर, उसे बताया है मैंने।
5: नहीं नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है, सचमुच ये भोले सनम ही है बेचारे, इतना जुल्म सहते रहे मेरा, और मुझे माफ कर दो मेरे भोले सनम, माफ कर दो।
3: तो श्रोताओं, ये था हमारा हास्य नाटक लव लेटर, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

थे। पहले मैं ठुमरी सुनाती हूँ। राग मिश्र खमाज की ये ठुमरी बहुत पुरानी ठुमरी है बनारस की। राग मिश्र खमाज।

गगरिया में घरे धरे आऊं, गगरी में धरे आऊं, चुनरी पहरी आऊं, कर आऊं सोला श्रृंगार, ठाड़े रहो बांके शाम। राधा जी कह रही हैं, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं घर आके श्रृंगार करके आती हूँ, तब मैं आपके साथ चलूंगी।

0: तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती में गायन सुनंदा शर्मा का और सितार वादन का आनंद लिया, जिसकी प्रस्तुति दी अलीफ लैला ने। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 20वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र। छंद है त्रिष्टुप।
3: वयम् ते वय इंद्र विद्धि शूणः प्रभरामहे वाजयुर्न रथम विपन्यवो दीध्यतो मनीषा सुम्नमियक्षन्तस्त्वावतो नृन। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार अन्न की कामना वाले अपने रथ को अन्न से भरते हैं, उसी प्रकार हम स्तोताजन बुद्धि से तेजस्वी होते हुए आपसे सुख की कामना करते हुए आपके लिए हवि प्रदान करते हैं। हमारे इस कार्य को आप भली भांति जाने। त्वम न इंद्र त्वाभिरुति त्वायतो अभिष्टिपासी जनान त्वमिनो दाशुषो वरुते था धीरभि यो नक्षति त्वा। हे इंद्रदेव, जो आपको ही अपना इष्ट मानता है, उस दानशील मनुष्य के समीप आने पर आप हर प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। आप विपत्तियों से बचाने वाले तथा सत्यकर्मा न्यायशील हैं। अतः आप अपने रक्षण साधनों से हमें संरक्षण प्रदान करें। स नो युवेंद्रो जोहूत्र सखा शिवो नरामस्तु पाता यह शंसंतम यह शशमानमूति पचंतम च स्तुवंतम च प्रणेशत। स्तोत्रों का उच्चारण करने वाले, उत्तम निर्देश देने वाले, हविष्यान्न को तैयार करने वाले तथा स्तोता यजमानों को जो अपने संरक्षण के द्वारा विपत्तियों से मुक्ति दिलाते हैं, ऐसे नित्य तरुण मित्रवत सदैव पास बुलाने योग्य तथा सुख स्वरूप इंद्रदेव समस्त प्रजा सहित हमें संरक्षण प्रदान करें। तमुस्तुष इंद्रम तम गृणीशे यस्मिन् पुरा वावृधुः शाशदुश्च स वस्वः कामं पीपरदियानो ब्रह्मण्यतो नूतनस्यायोः। जिन इंद्रदेव के आश्रय में स्तोतागण वृद्धि पाते रहे हैं और शत्रुओं का संहार करते रहे हैं, उन इंद्रदेव का यशोगान हम स्तुतियों से करते हैं। वे स्तुत्य इंद्रदेव नए यजमानों की धन की कामना को पूर्ण करते हैं। सो अंगिरसा मुचथा जुजुष्वान् ब्रह्मा तू तो दिन्द्रो गातु मिष्णन मुष्णन नुषसः सूर्येण स्तवानश्नस्य चितिष्णथ तत्पूर्व्याणि। अंगिराओं की स्तुतियों को स्वीकारते हुए वे इंद्रदेव श्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं ये स्तुत्य इंद्रदेव सूर्य को उदित करके उषा को हरते हुए अश्नासुर को नष्ट कर देते हैं। सह श्रुत इंद्रो नाम देव ऊर्ध्वो भुवन मनुषे दस्मतमः अव प्रियमर्ष सानस्य साहवंचिरो भरद्दासस्य स्वधावान तेजवान कीर्तिवान ख्याति प्राप्त अत्यंत दर्शनीय तथा प्रिय इंद्रदेव ज्ञानवान स्तोताओं के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। शत्रुनाशक इंद्रदेव ने संसार के अनिष्टकर्ता दास नामक असुर का सिर काटा। स वृत्रहेन्द्रः कृष्णयोनिः पुरंदरो दासी रैरयद्वि अजनयन मनवे क्षाम पश्च सत्रा संशम यजमानस्य तूतोत। वृत्रहंता शत्रुओं के दुर्गों को ढहाने वाले इंद्रदेव ने कृष्ण दासों की सेना का संहार किया। मनुष्य के लिए पृथ्वी तथा जल को उत्पन्न किया। ऐसे महान इंद्रदेव यजमान की श्रेष्ठ कामनाओं को पूरा करें। तस्मै तवस्य मनुदायी सत्रेन्द्राय देवेभिरर्णसातौ प्रतियदस्य वज्रम बाहवोर्धुर्हत्वी दस्यून्पुर आयसीर्नी तारीत। उन इंद्रदेव को देवताओं ने युद्ध में संगठित होकर निरंतर बल प्रदान किया। इंद्रदेव ने अपनी बलशाली भुजाओं में वज्र को धारण करके दुष्टों का संहार किया तथा उनके दुर्गम नगरों को भी ध्वस्त किया। नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे दुहीय दिंद्र दक्षिणा मघोनी शिक्षा स्तोत्रिभ्यो माति धग भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। हे इंद्रदेव, आपके द्वारा यज्ञकाल में दी गई ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा स्तोताओं को निश्चय ही धन प्राप्त कराती है, अतः हमें भी स्तोताओं के साथ वह ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा दें जिससे हम यज्ञ में महान पराक्रम प्रदान करने वाले स्तोत्रों से आपकी स्तुतियां करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 20वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग ना करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं। उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। मैंने देखा मृत्यु निमंत्रण उसके द्वारे आया, अत्याचारी से आगे बढ़ जो पहले टकराया। बंद हो गया है मेरा भी आज भाग्य का द्वार, लेकिन कहो बिना बलि किसने पाया आजादी उपहार। मातृभूमि के लिए खुशी से देता हूं मैं प्राण, इसका मुझको पूर्ण ज्ञान है ये मेरा अनुमान। हे परम पिता, अपने बलिदान के उस पावन नक्षत्र की मैं दिल से पूजा करता हूं, मैं उसे वरता हूं। रूसी कवि पुष्किन की ये कविता महान क्रांतिकारी महावीर सिंह के साथ हमेशा होती थी, जो संभवतः उनके मनोभाव का ही अनुवाद थी। जैसे कोई पुजारी अपने साथ गीता और रामायण जैसे धर्म ग्रंथ रखता है, ठीक उसी तरह क्रांतिकारी भी जेल की अंधेरी कोठरियों में बलिदान के स्वर में रची पगी कविताओं के दीप जलाकर आजादी का स्वप्न देखते थे। महावीर सिंह का जन्म 16 सितंबर सन 1904 को शाहपुर टहला, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बगावत की भावना उनमें बचपन से ही थी। राष्ट्र पर मर मिटने का संस्कार उन्हें अपने पिता से मिला था। सन 1925 में जब वे कॉलेज में पढ़ने कानपुर आए तो असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका था, लेकिन जनता के मन में असंतोष की आग सुलग रही थी। किसान, मजदूर और आम लोग भी अपने अपने तरीकों से लड़ रहे थे। कानपुर का डीएवी कॉलेज क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। भगत सिंह और सुखदेव इसके छात्रावास में ठहरकर क्रांति की योजनाएं बनाते। इसी दल में शामिल थे कुंवर महावीर सिंह। वो देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का संकल्प ले चुके थे। उधर पिता देवी सिंह उनकी शादी की तैयारी कर रहे थे। शादी की सूचना से बेचैन महावीर सिंह ने पत्र लिखकर अपने क्रांतिकारी जीवन और संकल्प की बात पिता से कही। पिता का जवाब आया, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने अपना जीवन देश के काम में लगाने का निश्चय किया है। मुझे तो लगता था कि हमारे वंश में पूर्वजों का खून अब नहीं रहा, सबने दिल से गुलामी कबूल कर ली है। तुम्हारा पत्र पाकर आज मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। तुम जहां भी रहोगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। पिता का ऐसा पत्र पाकर उनका हृदय खुशी से उछल पड़ा, उनका संकल्प और गहरा हुआ और वो निकल पड़े क्रांति पथ पर।

पिता की सहर्ष अनुमति के बाद महावीर सिंह दल में पूरी तन्मयता से सक्रिय हो गए। सन 1927 में दल की ओर से लाहौर में कुछ लोगों को मोटर चलाने की शिक्षा का प्रबंध किया गया। महावीर सिंह पढ़ाई छोड़कर लाहौर चले गए। सैंडर्स वध के बाद भगत सिंह और राजगुरु को कार में बिठाकर डीएवी कॉलेज की दूसरी ओर से महावीर सिंह ही सही सलामत निकाल ले गए थे। सन 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंकने के बाद जो गिरफ्तारियां हुईं, उनमें महावीर सिंह भी पकड़े गए। जेल में हर दूसरे तीसरे दिन क्रांतिकारियों का जेल के अधिकारियों से झगड़ा हो जाता। उस समय वे लोग मोटे तगड़े क्रांतिकारियों पर सारा गुस्सा उतारते। भगत सिंह, किशोरी लाल, जयदेव कपूर और महावीर सिंह सबके हिस्से की मार खाते थे। जेल में जब अनशन होता तो नाक के रास्ते नली डालकर क्रांतिकारियों को जबरदस्ती दूध पिलवाया जाता। एक जेल अधिकारी, डॉक्टर और 8-10 तगड़े पहलवान लगते। अनशन की इस लड़ाई में महावीर सिंह सबसे कठिन पड़ते। हर बार उन्हें दूध पिलाने में आधे घंटे का संघर्ष लगता। महावीर सिंह ने शत्रु की अदालत को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि उनके इस न्याय के नाटक में वो भाग नहीं लेंगे। लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें अन्य साथियों के साथ आजन्म कारावास का दंड मिला और वे बेलारी सेंट्रल जेल भेज दिए गए। यहां तरह तरह के अत्याचार होते, असीम यातनाएं दी जाती और क्रांतिकारियों का विरोध जारी रहता। कभी सुपरिंटेंडेंट उन पर मुक्केबाजी का अभ्यास करता तो कभी परेड में बोझ से लाद कर पशुवत व्यवहार करता। इसके बावजूद जेल में महावीर सिंह का विरोध जारी रहता। उन्होंने पलटकर सुपरिंटेंडेंट को ऐसा घूसा मारा कि दोबारा उसने मुक्केबाजी का शौक नहीं किया। उन दिनों जेलों में बेतों की सजा बर्बरता का जीता जागता नमूना था। महावीर सिंह को 30 बेतों की सजा का हुक्म हुआ। लकड़ी के एक चौखटे से महावीर सिंह को औंधा बांध दिया गया। कपड़े उतार दिए गए। चीफ वार्डर ने अनुमति मिलते ही गिनती आरंभ की। 1। बेंत हवा में लहराया और साए की आवाज के साथ उनके शरीर पर उतरा। उस स्थान की खाल उड़ाता चला गया। उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। गिनती आगे बढ़ती रही। बेंत उतरता रहा, खाल उधड़ती रही। जिंदा गोश्त के रेशे हवा में छितरते रहे। ताजे खून की फुहार से जमीन लाल होती रही और इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद होता रहा। सच तो ये है कि सहने की ये शक्ति शरीर से नहीं, विचारों से आती है। देश को लेकर उनकी चिंता और चिंतन उनके लिखे पत्र से जाहिर होता है। सन 1933 में उन्हें उनके कुछ साथियों के साथ अंडमान काली पानी की सजा पर भेज दिया गया। यहां से उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा जो सवाई माधोपुर राजस्थान में रहने वाले उनके छोटे भाई श्री बलबीर सिंह वैद्य के पास सुरक्षित था। इस पत्र को उनके साथी क्रांतिकारी शिव वर्मा ने सन 1969 में लिखी अपनी पुस्तक संस्मृतियां में प्रकाशित किया। ये एक बहुमूल्य दस्तावेज है। भारत भूमि से लगभग 1200 किलोमीटर दूर उस वीरान द्वीप में देश की आजादी के लिए संघर्ष करते एक भारतीय का ये अपनों से किया गया संवाद है। इसके अंश कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे।

सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान, जिसकी दीवारों पर वीर सावरकर क्रांति गीत लिखा करते थे। आजादी के दीवानों के उस तीर्थ से अपने पिता के नाम पत्र लिखते हुए महावीर सिंह कहते हैं, परम पूज्य पिताजी, आपको पढ़कर आश्चर्य होगा कि उपरोक्त स्थान पर मैं कब आ गया। यही पहेली हल करने जा रहा हूं। 19 जनवरी को प्रातःकाल को लगभग 11 बजे जेलर साहब सेंट्रल जेल बिलारी आए और कोठरी का दरवाजा खोलकर सूचना दी, तुम्हारा ट्रांसफर है, पर यह नहीं बताया कि कहां को है। पूछने पर केवल इतना ही कहा कि शायद पंजाब में नए लाहौर षड्यंत्र केस में गवाही देने के लिए मद्रास भेजे जाओगे। 19 तारीख की संध्या को जब मैंने सेंट्रल जेल मद्रास में पैर रखा तो मेरे जीवन मरण के साथी श्रीयुत भाई कमलनाथ तिवारी के दर्शन लगभग 2 वर्ष बाद हुए और रात को भाई बीके दत्त और भाई कुंदन लाल जी की आवाजें सुनी। आप स्वयं ही जान सकते हैं कि मुझे कितनी प्रसन्नता हुई होगी। परंतु अलसुबह फिर कुछ निराशा की झलक नजर आई जब देखा कि तिवारी और भाई दत्त और कुंदन लाल हमसे पहले ही पृथक पृथक ले जाए गए हैं। परंतु 15 मिनट बाद ये स्थिति फिर से हर्ष में बदल गई। मोटर लॉरी में हम फिर मिल गए। बहुत दिनों का वियोग मिटा। उस समय तक मन की खिचड़ी हम पका रहे थे और मिलने के आनंद से विह्वल थे, परंतु ये नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं। सोचते थे कि शायद पंजाब जाएं, बाद में यहाँ आएं। परंतु हमारी लॉरी बंदरगाह पर पहुंची और विख्यात महाराजा जहाज के दर्शन हुए। उस समय समझ में आया कि हम लोग अंडमान अर्थात काला पानी जा रहे हैं। मातृभूमि से तथा बंधु वर्ग से सदैव के लिए अथवा कम से कम 18 साल के लिए पृथक हो रहे हैं। जिस जननी की गोद में पले हैं और धूलि में लोटे हैं उसके दर्शन से भी वंचित हो रहे हैं। आप लोगों की पदारविंद की रज से सदैव के लिए दूर हो रहे हैं। ऐसी दशा में प्यारे देश को छोड़ते हुए हृदय में कितना ही कष्ट हुआ, परंतु साथ ही साथ प्रसन्नता भी हुई, जो कि इसके सम्मुख कुछ अधिक ही थी। वो थी एक साध क्रांतिकारी की दर्शनाभिलाषा पुण्य पवित्र तीर्थ स्थान की, जिसको कि भाई राम रखामल ने अपनी समाधि बनाकर पवित्र किया था, और दूसरे बंगाली तथा सिख वीरों की जो तपोभूमि रही है। और साथ ही आशा भी थी कि हमारे जीवन के बंधुगण सर्वदा साथ रहेंगे, और भी अनेक अपने कंधे से कंधा सटाने वाले भाइयों के दर्शन होंगे। 13 जनवरी की संध्या को विस्तृत नील गंभीर जलराशि की 850 मील से अधिक लंबी यात्रा करके हम इस पोर्ट ब्लेयर की जेल में पहुंचे, जहां पर अपने वर्तमान साथियों को मिलने के लिए अति उत्कंठित पाया। उनकी वैसी ही दशा हो रही थी जैसी हमारी हो रही थी। यहां संप्रति लगभग 40 बी क्लास के तथा 24 सी क्लास के राजनैतिक कैदी हैं। कुछ लोगों के निकट भविष्य में हम आशा करते हैं। हमारी जेल 3 मंजिला है और पास ही कुछ गजों के फासले पर नीला स्वराशि गंभीर गर्जन के साथ किनारे से टक्करें मारती है, जो ऊपर से दीख पड़ता है। ये द्वीप समूह जंगलों से भरा हुआ सुना जाता है, परंतु खुली हुई जगहों में कुछ भारतीय लोग भी बस गए हैं जिनकी भाषा हिंदुस्तानी है। इन लोगों में से बहुत से कैदी हैं, कुछ सरकारी नौकर भी हैं और कुछ तिजारती लोग भी। अभी हाल में तो जेल वालों का कुछ ठीक ठाक हाल ही मालूम होता है, लेकिन आगे की कह नहीं सकते। हमारे पुराने साथियों में अभी हमारे साथ डॉक्टर गया प्रसाद, मिस्टर वी के दत्त, भाई कुंदन लाल जी तथा कमलनाथ तिवारी हैं। बाकी 3 साथी अभी मद्रास सूबे में होंगे, जो कि शायद अभी भी हंगर स्ट्राइक पर होंगे।

जेल की बंदिशें अनगिनत थीं, पत्र व्यवहार बहुत कठिन था, खतरे की घनघोर घटाएं मंडराती रहती थीं, इसलिए लगातार पत्र लिखना संभव नहीं था। इस क्षमा याचना के साथ महावीर सिंह आगे लिखते हैं, पूज्यवर, प्यारे भाई का क्या हाल है इसकी सूचना शीघ्र दीजिएगा। उसे केवल वैद्य ही बनने का उपदेश न देना, पर साथ ही साथ मनुष्य बनना भी बतलाना। आजकल मनुष्य वही हो सकता है जिसे वर्तमान वातावरण का ज्ञान हो, जो मनुष्य के कर्तव्य जानता ही न हो परंतु उसे पालन भी करता हो। उसे सिखलाना कि उसका जीवन उसका नहीं परंतु समाज का है, इसलिए इस समाज की धरोहर को आलस्य तथा आराम तलबी और स्वार्थपरता में डालकर समाज के सामने कृतघ्न साबित न हो। उसे आजकल के वातावरण का ज्ञान करने के लिए समाचार पत्र तथा ऐतिहासिक, सांपत्तिक और राजनैतिक, सामाजिक पुस्तकों का अवलोकन करने को कहिए। समाज से मेरा मतलब संकीर्णता व्यंजक समाज से नहीं है, परंतु जन साधारण के समाज से है, क्योंकि ये धार्मिक समाज मेरे सामने संकीर्ण होने के कारण कोई भी मूल्य नहीं रखते हैं। केवल एक बात मानता हूं मैं, उसको सबसे बढ़कर तथा मनुष्य और समाज का कल्याणकारी समझता हूं, वो है मनुष्य का मनुष्य तथा प्राणी मात्र के साथ कर्तव्य, बिना किसी जाति भेद, रंग भेद, धर्म तथा धन भेद के। वही मेरा उपदेश बेटी सरोजनी को है और दूसरे हमारे भाइयों को भी है। पूज्यवर, आज जब मैं देखता हूं कि सब बहनें समाज की सेवा के लिए अपने को तन, मन और धन से लगाए हुए हैं, अभागा मैं ही हूं जिसके ऐसी कोई बहन नहीं। यद्यपि ये मेरी संकीर्णता है, क्योंकि अपने मन के अनुसार दूसरी बहनें भी अपनी ही हैं और मैं वैसी ही समझता भी हूं, परंतु मैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी चाहता हूं, जिसकी कुछ आशा मैं अपनी पूजनीय जिया महताब कुमारी से करता था। उनका बहुत समय से कोई समाचार नहीं पाया है, यदि हो सके तो मेरा चरण स्पर्श कहिएगा। इति शुभम, पत्र शीघ्र भेजिएगा, आपका आज्ञाकारी पुत्र महावीर सिंह। पता, PI 68 सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। देश की ऐसी चिंता मन में लिए वो अपनों से दूर अपनी एक एक सांस मां भारती के चरणों में अर्पित करते रहे। 12 मई सन 1933 को अपने साथ पशुवत व्यवहार के विरोध में अंडमान के बंदियों ने अनशन आरंभ किया। अनशन के छठें दिन 17 मई सन 1933 को अधिकारियों ने कैदियों को बलपूर्वक दूध पिलाने का उपक्रम शुरू किया। आधे घंटे की कुश्ती के बाद 10-12 व्यक्तियों ने मिलकर महावीर सिंह को जमीन पर पटक दिया और डॉक्टर ने एक घुटना उनके सीने पर रखकर नली नाक के अंदर डाल दी। उसने ये देखने की परवाह भी नहीं की कि नली पेट में न जाकर उनके फेफड़ों में चली गई है। पूरा एक सेर दूध उनके फेफड़ों में भर दिया गया। वो मछली की तरह छटपटाते हुए वहीं शहीद हो गए। अधिकारियों ने चोरी चोरी उनके शव को बोरे में भरकर समुद्र की लहरों के हवाले कर दिया। कभी सोचें तो ऐसा लगता है जैसे उन अथाह लहरों के माध्यम से उनका मन अपनी मिट्टी को छू रहा था। ये वैसा ही था जैसे कि लहरें उनकी अंतिम पुष्पांजलि भारत भूमि के चरणों में अर्पित कर रही थीं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। और अब समय है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का।

0: नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और इतिहास के पन्नों से का 7वां एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। हमारे साथ पूजा सक्सेना जी लगातार इस सीरीज में बनी हुई हैं और इस बार भी हमारे साथ हैं पूजा जी, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और इतिहासकार। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: पूजा जी। पिछली बार आपने हमें ये बताया कि आसफ खान ने एक तरह से पीठ में चुरा भूका रानी का। एक तरफ रानी को किसी भी तरह का खतरा उनसे लगता नहीं था क्योंकि वो लगभग विश्वस्त बना हुआ था रानी का, कि वो रानी को ऐसा नहीं लगता था कि कभी भी वो उन पर हमला करेगा। तो और रानी इधर विकास कार्यों में लगी हुई थी और अकबर को किसी तरह से भड़काकर आसफ खान ने युद्ध के लिए तैयार कर लिया और यहाँ पर दमोह तक पहुँच गया और वो 10,000 लोगों के साथ पहले निकला। और जब रानी के साथ उसे खबर मिली कि कुछ और लोग जुड़ गए हैं, रानी की सेना में सिर्फ 2,000 लोग हुए, कुल मिलाकर के 1,500 लोग और जुड़े। और उसने मुगल शासक अकबर से फिर और सेना भेजने को कहा और उसके पास 50,000 की सेना हो गई। आपने बताया था हमें कि दक्षिण पश्चिम की तरफ आगे बढ़ी थी रानी दुर्गावती और दमोह में नरई पहुंची। नर्मदा नदी और गौर नदी के बीच की घाटी है जो कि बहुत ही दुरूह है, बहुत दुर्गम एक इलाका है और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गढ़ा की सेना ने, यानी रानी दुर्गावती की सेना ने, यहाँ अपना शिविर गाड़ दिया। लेकिन पूजा जी, एक बात पिछले बार भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब गढ़ा राज्य के पास इतने साधन थे, इतने संसाधन थे, गढ़ा इतना समृद्ध राज्य था, वैसे भी वहां कहते हैं कि उस वक्त आपने बताया कि हाथी हुआ करते थे, हाथी पाए जाते थे, बहुत समृद्ध राज्य था, कर वसूला जाता था उससे, बहुत समृद्धता आई गढ़ा में, तो सेना का गठन करने पर रानी दुर्गावती ने पहले कभी क्यों बहुत जोर नहीं दिया?
1: मुझे ऐसा लगता है कि ये हर एक जगह की खासियत होती है कि उसकी मूल प्रकृति कैसी हो। तो जैसे ये गढ़ा राज्य है तो यहाँ बहुत समृद्ध है, अच्छी नदियाँ हैं, हरा भरा मैदान है, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, तो जहाँ बहुत समृद्ध प्रकृति होती है ना, वहाँ पर लोग भी बड़े समृद्ध होते हैं और शांत प्रिय होते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि रानी दुर्गावती का ध्यान गढ़ा राज्य के विकास की ओर है। वे मठ मंदिर बनवा रही हैं, वे विद्यालय बनवा रही हैं, तमाम तरीके के अध्ययन के काम कर रही हैं, अध्ययन अध्यापन के लिए विद्वानों को प्रश्रय दे रही हैं। इसके अलावा अपने राज्य की सीमाओं को भी सुदृढ़ कर रही हैं, व्यापार को बढ़ा रही हैं, आर्थिक समृद्धि की ओर ध्यान दी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, खासकर जब हम मध्य पूर्व एशिया की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके की प्रकृति है तो संघर्षशील लोग होते हैं, लड़ाके उसी से उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनका ध्यान हमेशा उस तरफ रहता है जहाँ समृद्ध सभ्यता हो। इसीलिए हम देखते हैं कि मध्य पूर्व की ओर से अधिक सेनाएं या लड़ाके भारत की ओर कूच करते हैं और यहाँ पर अपने युद्ध लड़ते हैं। तो ये प्रकृति का बेसिक अंतर है। इसी प्रकृति के अंतर्गत हमने देखा कि रानी दुर्गावती, ऐसा नहीं है कि उनके पास सेना नहीं रही होगी, पर ये आक्रमण अचानक से हुआ था। दूसरी तरफ आसफ खान लंबे समय से अपनी सेना को संगठित कर रहा था, तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस था। इसलिए संभवतः रानी सेना के साथ उतनी सुदृढ़ तरीके से तैयार नहीं थी।
0: लेकिन ये बहुत कमाल का आपने अंतर बताया और ये बहुत सोचने वाली काबिल गौर ये बात है कि ये दो अलग अलग सभ्यताओं का और दो अलग अलग लोगों के सोचने का नजरिया है। ये नजर और नजरिए की बात हो गई, तो बहुत बहुत बहुत ही अच्छी बात है ये। तो पूजा जी, आगे बढ़े हम और फिर क्या हुआ जब रानी ने अपना वहां शिविर गाड़ा? और तो क्या वो और उसकी तरफ बढ़ी कि या उन्होंने इंतजार किया कि अब आसफ खान आ जाए इस दुर्गम इलाके में हमसे भिड़ने?
1: जब रानी दुर्गावती सिंगौरगढ़ से निकलकर मुगल सेना की ओर बढ़ी तो उन्होंने 4 पड़ाव आगे बढ़ चुकी थी वो, और फिर उन्होंने अपनी योजना में अचानक से परिवर्तन किया कि सेना के एकीकरण के लिए वो घने जंगल की तरफ चली गई।
0: जी।
1: और उधर आसफ खान को ये समझ में नहीं आया कि रास्ते में से सेना अचानक से गायब कहाँ हो गई।
0: जी।
1: तो आसफ खान को पता नहीं चल पा रहा था।
0: जी।
1: उसने कुछ समय तो इंतजार किया।
0: हाँ।
1: और फिर निर्णय लिया कि गढ़ा कटंगा यानी कि जबलपुर की ओर वो कूच करेगा।
0: जी।
1: और उसने कर भी दिया। लेकिन इस बीच में उसे खबर मिल गई कि रानी दुर्गावती की सेना नरई की तरफ बढ़ रही है, तो उसने तुरंत अपना रास्ता बदला और वो अपनी विशाल सेना को लेकर नरई की तरफ आगे बढ़ने लगा। स्थिति बहुत विकट थी, मुगल सेना बहुत बड़ी थी जिसमें कई इक्तादार भी जुड़ गए थे, वहीं दूसरी तरफ 2,000 से 3,000 की सेना रानी के पास थी।
0: जी हाँ।
1: यह मुश्किल समय था। रानी को इस बात का अंदाजा अच्छे से था कि समय बहुत ही मुश्किल है।
0: जी हाँ।
1: रानी चाहती तो संधि कर सकती थी और गढ़ा राज्य को शत्रुओं के हाथ सौंप सकती थी, लेकिन उस वीरांगना ने ऐसा नहीं किया। वह केवल नाम की दुर्गावती नहीं थी
0: जी।
1: वो तो माँ दुर्गा के समान रणचंडी थी।
0: वाह,
1: कहते हैं

0: कि जंगलों में पहुंच रहे थे
1: जी।
0: तो आसफ खान ने अपनी सेना के आगे इन दोनों को रखा
1: जी।
0: और ये पहले पहुंचे और आसफ खान की सेना उसके अगले दिन पहुंच पाई।
1: अच्छा,
0: तो आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद जो फौजदार थे ये अपनी सेना के साथ में नरई की ओर आगे बढ़ गए। रानी ने योजना बनाई कि सबसे पहले वो आक्रमण नहीं करेंगी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने अपनी सेना को जो नरई की पहाड़ियां थी चारों ओर जो पहाड़ियां थी उस पर छुपकर खड़ा कर दिया। और उन्होंने सोचा कि जैसे ही मुगल सेना इस घाटी में प्रवेश करेगी वो उस पर धावा बोल देंगे।
1: तो मतलब कह सकते हैं कि रानी दुर्गावती और जो गोंड सेना थी वो गुरिल्ला युद्ध में भी कहीं ना कहीं महारत उनको हासिल थी, गुरिल्ला युद्ध के बारे में जानते थे। जैसा कि हम वीर शिवाजी के बारे में कहते हैं कि गुरिल्ला नीति के बारे में कि वो बहुत बड़े जानकार थे।
0: हाँ, शिवाजी के समय जो तरीका रहा गुरिल्ला वार का वैसा ही तरीका लगभग यहाँ पर भी हम शुरू में देखते हैं इस आक्रमण में। हमेशा जो जनजातियां होती हैं, जैसा मैंने कहा कि वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर लड़ती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो गोरिल्ला युद्ध के पीछे भी शिवाजी के साथ यही कारण था।
1: हाँ।
0: और यहाँ रानी दुर्गावती के साथ में भी वही तकनीक देख रहे हैं।
1: तो पूजा जी, एक और उदाहरण मेरे जहन में आ रहा है यहाँ पर कि वही नजदीक की हम बात करें तो छतरपुर राज्य के जो महाराजा छत्रसाल थे वो भी गुरिल्ला नीति के बहुत कुशल योद्धा कहे जाते हैं और कहते हैं कि बहुत ही छोटी सी एक संख्या थी और उन्होंने 3 से 4 साल तक सामना किया था मुगलों का और 10,000 मुगलों को उन्होंने, एक बहुत छोटी सी संख्या जो वो लोग शायद 30 लोग जंगलों में छुपे थे।

0: पर इस तरफ रानी दुर्गावती का इतिहास लेखन में इस तरीके का कोई दरबारी लेखक नहीं बैठा हुआ है।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: ये परंपरा का अंतर है। भारतीय परंपरा में स्वयं के गुणगान गाना एक तरीके से इसका निषेध है, अच्छा नहीं माना जाता। हाँ। इसलिए हम देखते हैं कि हमको गोंड काल का कोई विशेष लिखित इतिहास दरबारी लेखकों द्वारा नहीं मिलता, क्योंकि जब भी दरबारी लेखक लिखते हैं तो वो राजा को खुश करने के लिए लिखते हैं, इसलिए उसमें बढ़ा चढ़ा कर भी लिखा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और सामने वाले को बहुत ही निष्कृष्ट भी दिखाया जाता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यहाँ पर भारत में ऐसी कोई परंपरा दिखाई नहीं देती जिसमें कि दरबार में लेखकों को रखकर उनसे इतिहास लिखवाया जाए।
1: जी।
0: इसलिए हमें सीधे भी इतिहास नहीं मिल पाता। पर हाँ, अगर हम
1: लोग
0: तो हम देखते हैं कि आख्यान गाने की परंपराएं हमको दिखती हैं। जस गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं,
1: यश को जो पहले जस कहते थे,
0: तो खूब सारे आख्यान, जस, गीत हमको इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो मैं आपको एक लोकगीत भी सुनाऊंगी।
1: वाह,
0: मुझे गाना नहीं आता पर बोल के सुनाऊंगी।
1: जी।
0: तो गड़ा राज्य की जो प्रजा थी वो रानी का बहुत सम्मान करती थी।
1: जी।
0: और वो तो उन्हें माँ दुर्गा के समान मानती थी।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए आज भी जो आख्यान गाए जाते हैं इस क्षेत्र में, उसमें हमको नरई के युद्ध की घटना बड़े विस्तार पूर्वक मिलती है।
1: जी।
0: रानी को याद करते हुए आज भी बहुत सारे जो जस गाए जाते हैं उनमें रानी को माँ दुर्गा के समान बताया गया है, और युद्ध के लिए रानी ने कैसे हुंकार भरी, वो कैसी दिखती थी, गोंड सेना कैसे तैयार हुई, इसका जैसे मानो आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा हो।
1: जी।
0: तो एक सेला लोकगीत है।
1: जी।
0: तो देखिए उस लोकगीत में क्या कहा गया है।
1: जी।
0: रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण माँ जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए।
1: वाह।
0: रण माँ जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए, राजा दलपत के रानी हो, राजा दलपत के रानी हो, रण चंडी कहाए, डगर डगर माँ डोलो हो, गण मंडला बचाए, रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए।
1: वाह, क्या बात।
0: तो इसका अर्थ यह है कि जैसे माँ दुर्गा अपनी संतानों की रक्षा करती है, महारानी दुर्गावती वैसे ही अपनी प्रजा की रक्षा करती है। वो रण में तलवार लेकर जूझ पड़ती है, वह रानी दुर्गा कहलाती है।
1: जी।
0: वह राजा दलपत की रानी है, रणचंडी कहलाती है। डगर डगर माँ डोलो हो, यानी कि माँ डगर डगर डोल रही है।
1: हाँ।
0: माँ गढ़ मंडला को बचाने के लिए डगर डगर डोल रही है। माँ दुर्गा अपने हाथों में तलवार लिए रणचंडी हो गई है।
1: वाह पूजा जी, क्या बात है। रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण माँ जूझे तलवारी, रानी दुर्गा कहाए। और पूजा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो अपना यशोगान कराने की जो परंपरा थी वो हमारे यहाँ की नहीं थी, और ख़ास तौर पर यदि बात करें तो जो जनजातीय राजवंश थे उनमें तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि वो अपना ही यशोगान लिखवाएं। और बहुत पहले मैंने कहीं पर ये चीज़ पढ़ी थी कि इतिहास हमेशा अपनी ही देख रेख में लिखवाया जाता है, और उन्हें पता होता है कि आज ना सही, यदि वो आने वाले 100 सालों के बाद, 1000 सालों के बाद भी अपने अपने नाम को देखना चाहते हैं तो वो ऐसे कुछ लोगों को अपने यहाँ पर रखते हैं कि बस आप बैठिए और स्तुति करिए, हमारे लिए गीत बनाइए, हमारा बखान लिखिए और हमारे लिए किताब लिखिए। जैसे कि आप हमने कई बार ये जिक्र किया आईना अकबरी का, जिसे अकबर की आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा तो यदि कोई कहेगा तो वो खुद कहेगा, लेकिन वो तो दूसरे से लिखवाई गई थी, तो आत्मकथा कैसी हुई, एक सवाल या निशान तो यहाँ पर ये लग जाता है।
0: अब आईने अकबरी का अर्थ ही है कि जो आईना अकबर को दिखाया जाए।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: वो समाज का आईना नहीं है, वो अकबर को दिखाता हुआ आईना है।
1: बिल्कुल।
0: तो दरबारी कवियों का जो उल्लेख होता है वो बहुत विश्वसनीय माना भी नहीं जाता इतिहास में।
1: जी।
0: ये जरूर है कि उसमें से कुछ तथ्य निकालकर इतिहास बनाया जाता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ भले ही हमारा राजा या रानी पराजित भी हो गया हो।
1: हाँ।
0: युद्ध में, लेकिन वो हृदय में राज करता है, हृदय में जीत जाता है।
1: जी।
0: और जनता से कहते नहीं है कि आप हमारा आख्यान लिखिए।
1: जी।
0: जब वो नहीं रहता है तब भी जनता सदियों तक उसके आख्यान, उसके जस अपने दिल में संजोकर रहती है और अवसर आने पर उसे जोर शोर से गाती है।
1: और यही जो बातें हैं जो जिन्हें हम आज जनश्रुतियाँ कहते हैं, वो एक दूसरे से होते हुए इतने सैकड़ों सालों बाद भी आज हमारे तक पहुंच रही हैं। तो निश्चित रूप से जो समर्पण का भाव रहा होगा रानी दुर्गावती के प्रति, या उस समय के हमारे जो भारतीय राजा थे या रानी थे उनके प्रति प्रजा का, वो आज भी यहाँ पर गीतों के जरिए दिखाई देता है, जनश्रुतियों के जरिए दिखाई देता है, लोक की कही हुई सारी बातों में दिखाई देता है। अब जैसे कि आपने शुरू किया था कि एक रानी दुर्गावती कैसी दिख रही हैं, वो भी कुछ गीत में था, वो भी आपसे जानना चाहेंगे।
0: जरूर, अगर हम आख्यानों को ध्यान से सुने या लोकगीतों में कुछ पंक्तियां ढूंढे तो हमको ऐसी भी पंक्तियां मिलती हैं जो बताती हैं कि जब नरई का युद्ध शुरू हुआ तो रानी की वेशभूषा कैसी थी, रानी दिख कैसी रही थी। अभी हमने पिछली पंक्तियों में देखा कि उनके पराक्रम के बारे में कहा गया, अब वो दिख कैसे रही थी, वो तैयार कैसे हुई। तो इस पर चार पंक्तियां हैं एक लोकगीत की। गरे मां पहिरे मूंगा मोतियो, गरे मां पहिरे मूंगा मोतियो, कमर पोतिया सजाए, पावन मां सोहे पैजनिया, लंबे केस बनाए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्हें वो रानी महारानी माँ दुर्गा जैसी दिख रही है
1: जी।
0: तो वो क्या कह रहे हैं कि गरे माँ पहिरे मूंगा मोतियो, गले में माँ ने मूंगा मोती की माला पहनी है
1: जी।
0: कमर में पोतियों का कमरबंद सजा है
1: जी।
0: पावन में सोहे पैजनिया, यानी पाँव में पायले हैं
1: जी।
0: और उनके केस लंबे हैं
1: जी।
0: तो आगे वो कहते हैं अगली लाइनों में, नाकन में पहिरे नथुनिया, मतलब कि नाक में नथ पहनी है और माथे पर टिकुरी सजाए, बिंदी लगाई हुई है।
1: बिल्कुल।
0: और दमक दमक रानी गर्जे, फौजी दे ललकार, इस तरह रानी शौर्य बल से माँ दुर्गा की तरह दमक रही है और फौजियों को ललकार रही है
1: जी।
0: तो रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रण माँ जूझे धरे तलवार, रानी दुर्गा कहाए,
1: रानी दुर्गा कहाए। वाह क्या बात है,
0: रण में जो तलवार लेकर शत्रुओं से जूझ रही हो ऐसी रानी दुर्गा माँ को आज तक आख्यानों में याद किया जाता
1: है। किया जाता है बिल्कुल। ये तो आपने रानी दुर्गावती के बारे में बताया कि जो आख्यानों में मिलता है लोकगीतों में, सैला गीत आपने हमें बताया सुनाया, लेकिन जो उनकी गोंड सेना थी वो कैसी थी, वो कैसे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी, ये बताइए।
0: लोकगीतों में हमको सेना के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी तो मिलती है
1: जी।
0: इस गीत की चार पंक्तियां हैं। गोंडी फौजी रेम लगे, गोंडी फौजी रेम लगे, छन्नी चमकत जाए, हुकुम रानी के पाए के सबे बाना खनखनाए, अखियन से बरसे अगिया, तन से रकत के धार, बैरी दुश्मन के खातिर फौजी सबे तैयार।
1: वाह क्या बात।
0: मतलब ये हुआ कि गोंड फौज जो है अब अपने रंग में आ गई है और वो चमचमा रही है अच्छी बढ़िया
1: जी।
0: और इसके साथ में जब रानी का हुकुम हुआ है तो सब अपने तन से रक्त की धार बहाने को तैयार हैं
1: जी।
0: उनकी आंखों से काए, अखियन से बरसे अगिया
1: जी,
0: आंखों से आग बरस रही है, और बैरी दुश्मन की खातिर फौजी सभी तैयार। तो सारे लोग तैयार हैं अपनी रानी के लिए, अपने गढ़ा राज्य के लिए जान देने के लिए, दुश्मन के सामने आकर डट चुके हैं।
1: तो श्रोताओं, गोंड सेना तैयार है, आंखों में सबके अंगार है, युद्ध का बिगुल बज चुका है और गोंड सेना का हर सैनिक युद्ध की अग्नि में अपनी आहुति देने के लिए भी तैयार है, जबकि उन्हें ये चेताया गया था कि ये काम खतरे वाला है, जो डगर है वो खतरों से भरी हुई है, अगर आप वापस पीछे लौटना चाहें तो लौट जाएं। लेकिन जो भी सेना में शामिल हर एक व्यक्ति था वो न सिर्फ रानी दुर्गावती के प्रति समर्पित था बल्कि बहुत देशभक्त था। वो जानते थे कि उनकी शायद जान जा सकती है, लेकिन उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले बल्कि वो जोर जोर से हुंकारे और उन्होंने कहा कि नहीं रानी, हम आपके साथ हैं। तो युद्ध का मैदान सज चुका है, हम सातवीं कड़ी तक पहुंच चुके हैं और आठवीं कड़ी में देखते हैं कि युद्ध कैसा होता है रानी दुर्गावती के बीच और आसफ खां की बहुत लंबी चौड़ी सेना के बीच। फिलहाल आपसे इजाजत देते हैं पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और आगे भी हम चाहेंगे कि रानी दुर्गावती की कहानी आप हमें यूं ही सुनाती रहें।
0: जरूर।
1: तो श्रोताओं, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा आपसे लेता हूं इजाजत। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहनें। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम टेक गुरु का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी जी से,
2: जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं भोपाल स्थित सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। टेक गुरु कार्यक्रम के तहत हमने उनसे बात की विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर। ये दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से ये बातचीत।
3: सर, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लेकिन कुछ हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर,
4: मैं यहाँ वर्तमान में प्रोफेसर हूँ सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल में। और यदि बात करें तो बचपन से ही मैं दृष्टिहीन हूँ, और बाय बर्थ इनफैक्ट। और शुरू में मेरी पढ़ाई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें हुई। और फिर प्रयास किए कि कैसे, मैंने रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर फिर पढ़ाई हुई और उस टाइम पे किताबें वगैरह मिलती नहीं थी। तो वहाँ बाद में तो शुरू में तो लोग सुनाते थे पढ़ के, बाद में फिर कैसेट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर करके अपने लेसन्स तैयारी वगैरह करी। 1989 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट PSC के थ्रू, और मैंने सिलेक्शन हुआ उसके बाद में, और मैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज में। तो 1993 में हम लोगों को पता पड़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक इनोवेशन हुआ है, और उन्होंने कोई स्पीच सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको कंप्यूटर पे लगा के, एक बॉक्स को जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो कुछ भी है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पर एक वर्कशॉप कराई ब्लाइंड लोगों के लिए, और इस तरह से कंप्यूटर पर फिर मैंने अपना खुद का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पे आरुषि करके, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जहाँ हमने ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। तो कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी तक बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो पे डिपेंडेंट थे या ब्रेल पे डिपेंडेंट थे, ब्रेल में किताबें होती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको अपने लिख कर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये इट वॉज़ अ बिग रेवोल्यूशन इन दोज डेज कि अब चाहो तो आप अपनी बात कंप्यूटर पर लिख सकते हो और प्रिंट करके अपने बात भेज सकते हो या मेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी टेक्नोलॉजी की।
3: तो सर, इस तरह से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, आपने पढ़ाई की और इतना आपने सारा अपनी जर्नी हमसे शेयर की, तो वो बीच में सर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से आपका जुड़ाव होता रहा?
4: देखिए, अगर जहाँ तक हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहें तो हम टेक्नोलॉजी को 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर पे टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब यह है कि जो जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है स्क्रीन टेक्स्ट, उस वो पूरा स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे अवेलेबल है वो टेक्स्ट में, इन स्पीच में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ, क्योंकि मान लीजिए उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं वो भी आपको कमांड देके आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फर्ज़ कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ें बोल्ड में करना है, इटैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कित लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट में आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर के आने के बाद में लार्ज प्रिंट की बुक्स निकालना भी बड़ा सरल हो गया कि अगर आप चाहें तो जो बच्चे कम देख पाते हैं और वो बड़े अक्षर पढ़ सकते हैं तो हम किताबों को लार्ज फॉन्ट में तैयार कर सकते हैं। फिर किताबों को में जो अक्षर लिखे हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफायर्स आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मैग्नीफाई कर देते हैं। लो विजन वाले लोगों के लिए एक एडवांटेजेस चीज़ हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं, तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम आप बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है, तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक अंदर एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं, तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है पढ़ना है तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इको सिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम DAISY। तो इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है साइटेड बच्चा है किताब को पेज वाइज हेडिंग वाइज सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है, ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी, कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115 तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर जब हम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते थे उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका मान ली किताब जो है 12 घंटे की किताब है तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि 5वें नंबर के कैसेट में है कि 8वें नंबर के कैसेट में है, और फिर हमको उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर सब सेक्शन में जाना है या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने क्वेश्चंस देखने, तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
3: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा।
4: जी, उनका जो
3: हर क्षेत्र में,
4: हाँ, लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है। बच्चे जो है वो अपने आप अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस, कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों ने लोग IT के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल दे आर गोइंग IT का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, MBA कर कर के लोग आगे निकल रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में। वो सब लोग जो हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियाँ मिलने लगी हैं लोगों को और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है IT फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है, तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसका वो का उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है, या मान लीजिए मैं इस रूम में आपको बैठ बात कर रहा हूँ तो मैंने इस रूम की फ़ोटो खींची, तो इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मोबाइल के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुँच सकता है। तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना किसी और की मदद से जान सकते हैं।

0: सर, हम अक्सर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं काफ़ी, हमें क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर किस तरह से एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे मदद मिल सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो आपको ऑडियो में फीडबैक दे सकती है, वो आपको हैप्टिक फीडबैक मतलब वाइब्रेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको वॉइस क्लूज के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उसका यूज़ अपने मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हीलचेयर यूज़ कर रहा है, मोटराइज्ड व्हीलचेयर, तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
0: सर, एक बात और, ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते, मालूम नहीं होता, सर उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
1: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो आप हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुंचाएंगे, जहां तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जाके कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है इस टेक्नोलॉजी का, और कहाँ कहाँ वो अपने आप को, अपने डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये यूज़ करके, तो वो काम है लोगों का जो कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस, इससे मदद मिल पाएगी।
0: अक्टूबर के 2nd Thursday जो होता है उसमें विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो इस पर और कौन कौन से सर कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं स्पेशल? क्योंकि पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आया ही है, आप जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
1: देखिए, ऐसे ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं इनका पर्पज़ यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुंच पाए कि नंबर एक कि दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात यह कि जो लोग साइट लूज कर चुके हैं उनको सही गाइडेंस मिले, और वो अपने अगर लेट साइट लूज़ होती है, या एक कहना चाहिए कि एक उम्र के बाद अगर साइट लूज़ होती है तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका फाइनल ईयर, और धीरे धीरे करके उसकी साइट जा रही है, तो वो एक ट्रॉमा के स्टेट में पहुंच जाता है और वो डिप्रेशन की स्टेट में, तो उसको निकालना उस स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं तुम बिना आके भी सब कुछ कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिलवाना लोगों को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में इस तरह के फेस्टिवल्स, ओकेजन्स मदद करते हैं।
0: तो सोसाइटी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती
1: है? सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि अगर हम इस बात पे विश्वास करें या इस बात को हम कम्युनिकेट करें या इस बात को समझें कि हर आदमी हर काम को कर सकता है, उसको काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कैसे करेगा वो हमको फिर फिगर आउट करना होगा। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को नौकरियां नहीं देते कि अरे ये ब्लाइंड है, अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने के लिए, अरे पहले नौकरी तो दो आप उसको, तो और फिर उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। तो वो अगर हम आपको इस बात में अगर हम लोगों को समझा पाएँ कि हर व्यक्ति, और कई बार क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने, कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, डिसेबल्ड लोगों की, ये लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए उनको लोगों को काम देने में डरते हैं, लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती जो एक्चुअल उनको एम्पावर करने में करा जाए लोगों को और उनको सपोर्ट करें तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। तो सोसाइटी का कई काम है कि उसमें आपकी हेल्प करें।
0: सर आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की कि किस तरह से आखिर में फिर से आप उनसे ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपनी जो पढ़ाई को ना रुकने दें और अपने भविष्य को बनाएं?
1: सबसे बड़ी बात है कि हमको जो इनक्विजिटिवनेस है या हमारी जिज्ञासा है अगर लोगों में बनी रहेगी और वो एक उनमें डिटर्मिनेशन रहेगा कि हमको अपने आगे बढ़ना है तो लोग उनकी डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े और फिर समाज भी उनको मदद करे। दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। और आई थिंक ये एक बात है।
0: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा
1: जी,
0: मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं
1: जी। हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग मिल के एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक आस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स कैसी हों कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है, व्यक्ति है, वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए
0: जी।
1: है ना, पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि न केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैंप, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम। अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है क्योंकि टच स्क्रीन पर टाइप करके नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट्स, ऐप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम ये है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
0: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
1: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएं भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता
0: जी
1: या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करे, वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाए कि डिसेबल्ड लोग भी उसका यूज़ कर पाए।
0: सर आखिर में कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
0: सर आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
1: जी थैंक यू।
0: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
2: भारत के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों की कहानी भर नहीं होता, बल्कि वो एक विचार, एक आंदोलन और एक युग की कहानी बन जाता है। ऐसे लोग अपने समय से आगे जाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। आज हम स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व को जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, श्रमिक नेता, चिंतक, लेखक, राजनयिक, उपराष्ट्रपति और अंततः भारत के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्र की सेवा की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मजदूरों की आवाज को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना दिया। एक ऐसा नेता जिसने लोकतंत्र में जन भागीदारी की शक्ति को पहचाना और एक ऐसा नागरिक जिसने अपने पूरे जीवन में समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आज हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति और भारत रत्न वराह गिरी वेंकट गिरी अर्थात वीवी गिरी को।
3: भारत का लोकतांत्रिक इतिहास अनेक महान नेताओं और राष्ट्र निर्माताओं से भरा हुआ है, लेकिन यदि हम उन व्यक्तित्वों की सूची बनाएं जिन्होंने अपने जीवन के अलग अलग चरणों में बिल्कुल अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं और हर भूमिका में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, तो वीवी गिरी का नाम निश्चित रूप से उनमें प्रमुखता से लिया जाएगा। वे केवल राष्ट्रपति नहीं थे, वे केवल स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं थे, वे केवल मजदूरों के नेता भी नहीं थे, बल्कि उनका जीवन इन सभी भूमिकाओं का एक अद्भुत संगम था। उनका जीवन हमें ये बताता है कि लोकतंत्र की असली शक्ति केवल सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो समाज की जड़ों से जुड़े रहते हैं। शायद यही कारण है कि जब हम वीवी गिरी को याद करते हैं तो केवल भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति को ही नहीं, बल्कि एक ऐसे जन नेता को याद करते हैं जिन्होंने जीवन भर साधारण लोगों की असाधारण लड़ाइयों को अपनी लड़ाई बनाया। लेकिन किसी भी महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। वीवी गिरी की यात्रा भी एक छोटे से शहर से शुरू हुई थी।
2: 10 अगस्त 1894 उड़ीसा के वर्तमान गंजाम जिले के बराहमपुर नगर में एक बालक का जन्म हुआ। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, देश राजनीतिक रूप से गुलाम था और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये बालक आगे चलकर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचेगा। उस बालक का नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी। उनके पिता वराहगिरी वेंकट जोगैया पुंतलु अपने समय के प्रतिष्ठित वकीलों में गिने जाते थे, लेकिन उनकी पहचान केवल एक सफल अधिवक्ता की नहीं थी, वो सार्वजनिक जीवन और सामाजिक गतिविधियों में भी रुचि रखते थे। समाज की समस्याओं पर चर्चा करना, लोगों की सहायता करना और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखना उनके स्वभाव का हिस्सा था। घर का वातावरण बौद्धिक भी था और सामाजिक चेतना से भी भरा हुआ था। यही वातावरण आगे चलकर युवा गिरी के व्यक्तित्व की नींव भी बना। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। वीवी गिरी के जीवन में भी ये बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। उनकी माता सुब्रधम्मा अत्यंत धार्मिक, संवेदनशील और संस्कारवान महिला थीं। उन्होंने अपने पुत्र को केवल शिक्षा का महत्व नहीं सिखाया, बल्कि सेवा, विनम्रता और अनुशासन का मूल्य भी समझाया। बचपन से ही गिरी ने देखा कि सम्मान केवल पद या संपत्ति से नहीं मिलता, सम्मान मिलता है चरित्र से, सम्मान मिलता है दूसरों के लिए किए गए कार्यों से। इसी कारण बाद के वर्षों में जब वे बड़े नेता बने, मंत्री बने, राज्यपाल बने और राष्ट्रपति बने, तब भी उनके व्यक्तित्व में एक सहजता और सादगी दिखाई देती रही। उनके निकट रहने वाले लोग अक्सर कहते थे कि इतने ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद भी उनमें अहंकार का कोई स्थान नहीं था। ये गुण उन्हें उनके परिवार और प्रारंभिक संस्कारों से मिला था।
3: प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही उनकी प्रतिभा स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। वे पढ़ाई में रुचि रखते थे, लेकिन उनकी रुचि केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। उन्हें इतिहास पढ़ना पसंद था, राजनीतिक घटनाओं को समझना पसंद था, समाज में हो रहे परिवर्तनों को देखना और उनके कारणों पर विचार करना पसंद था। वे उन युवाओं में से एक थे जो केवल नौकरी या करियर के बारे में नहीं सोचते थे, वे ये भी समझना चाहते थे कि समाज कैसे चलता है, राष्ट्र कैसे बनता है और आम लोगों के जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। शायद यही कारण था कि उनकी सोच सामान्य विद्यार्थियों से अलग दिखाई देने लगी थी। उनके भीतर एक जागरूक नागरिक आकार ले रहा था।
2: उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने विदेश जाने का निर्णय लिया। आज के समय में विदेश जाकर पढ़ाई करना एक सामान्य बात लग सकती है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ये एक बड़ी बात थी। यात्रा लंबी होती थी, संपर्क सीमित होते थे और विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना केवल पढ़ाई का अवसर नहीं बल्कि एक नई दुनिया को देखने का अवसर भी होता था। युवा वीवी गिरी आयरलैंड पहुंचे। शायद उन्हें स्वयं भी उस समय ये एहसास नहीं रहा होगा कि ये यात्रा उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी, क्योंकि आयरलैंड में उन्हें केवल डिग्री नहीं मिली, उन्हें एक दृष्टि मिली, उन्हें एक विचार मिला, उन्हें एक ऐसा अनुभव मिला जिसने आगे चलकर उनके पूरे सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर दिया।
3: जब वीवी गिरी आयरलैंड पहुंचे तब वहां का राजनीतिक वातावरण अत्यंत उग्र और सक्रिय था। आयरलैंड स्वयं ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। देश भर में राष्ट्रीय चेतना की लहरें थी, सार्वजनिक सभाएं हो रही थी, राजनीतिक बहसें चल रही थी, युवा सड़कों पर थे, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की मांग लगातार मजबूत हो रही थी। युवा गिरी ने पहली बार इतने व्यापक जन आंदोलन को निकटता से देखा। उन्होंने देखा कि जब कोई राष्ट्र अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो साधारण लोग भी इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं। यह अनुभव उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। भारत में रहते हुए उन्होंने स्वतंत्रता की आवश्यकता को समझा था, लेकिन आयरलैंड में उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष को जीते हुए देखा है।
2: आयरलैंड में बिताए गए वर्षों ने उनके भीतर केवल राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं जगाई बल्कि सामाजिक न्याय की समझ भी विकसित की। यहीं उन्होंने श्रमिक आंदोलनों को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि मजदूर अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार संगठित होते हैं। वो केवल वेतन की बात नहीं करते थे, वो सम्मान की बात करते थे, सुरक्षा की बात करते थे, समान अवसरों की बात करते थे। इन आंदोलनों ने युवा गिरी पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी समाज की प्रगति केवल बड़े नेताओं या बड़े उद्योगों से नहीं होती, उसकी वास्तविक शक्ति उसके श्रमिकों में होती है। यही वो विचार था जो आगे चलकर उनके पूरे जीवन का आधार बना।
3: आयरलैंड के अनुभवों ने उनके भीतर स्वतंत्रता, लोकतंत्र और जन भागीदारी के प्रति गहरा विश्वास पैदा कर दिया। वे समझ चुके थे कि जनता की भागीदारी के बिना कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। यही कारण था कि बाद के वर्षों में जब वे भारत में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तब उनका दृष्टिकोण केवल अधिकारों की मांग तक सीमित नहीं था, वे संगठन, संवाद और जनशक्ति पर भी उतना ही बल देते थे। दरअसल आयरलैंड में ही उनके भीतर वह नेता जन्म ले चुका था जिसे भारत आने वाले दशकों में जानने वाला था।
2: लेकिन आयरलैंड में उनका समय केवल अध्ययन और अवलोकन तक सीमित नहीं रहा। उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों और राजनीतिक रुचियों ने ब्रिटिश प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित किया। वे उन युवाओं में शामिल थे जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रश्नों पर खुलकर विचार रखते थे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश अधिकारियों की नजर उन पर पड़ना स्वाभाविक था। अंततः उन्हें आयरलैंड छोड़कर भारत लौटना पड़ा। लेकिन जब वे वापस लौटे तब वो केवल कानून की पढ़ाई पूरी करके लौटने वाले छात्र नहीं थे, वे एक ऐसे जागरूक भारतीय बन चुके थे जिसके भीतर राष्ट्र सेवा का संकल्प आकार ले चुका था।
3: भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। उनके सामने एक सफल पेशेवर जीवन का रास्ता खुला हुआ था। वे चाहते तो एक प्रतिष्ठित वकील बन सकते थे, सुख सुविधा का जीवन जी सकते थे, लेकिन इतिहास ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था, क्योंकि उस समय भारत का वातावरण तेजी से बदल रहा था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुके थे। स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले रहा था। देश के कोने कोने में आजादी की आवाज गूंजने लगी थी। ऐसे समय में वीवी गिरी स्वयं को उस संघर्ष से अलग नहीं रख सके।
2: महात्मा गांधी के विचारों ने उनके जीवन को नई दिशा दी। सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, जन भागीदारी और सामाजिक न्याय, ये केवल राजनीतिक नारे नहीं थे, ये जीवन जीने की एक पद्धति थे। वीवी गिरी ने इन विचारों को गहराई से जाना और उनसे प्रभावित भी हुए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी शुरू की, सभाओं में भाग लिया, लोगों को जागरूक किया, राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का प्रयास किया और धीरे धीरे वे स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ताओं में गिने जाने लगे।
3: स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना आसान नहीं था। उस समय इसका अर्थ था निगरानी, गिरफ्तारी, जेल, आर्थिक असुरक्षा और अनेक व्यक्तिगत कठिनाइयां। लेकिन वीवी गिरी उन लोगों में से नहीं थे जो कठिनाइयों से पीछे हट जाएं।

0: किसान और आम नागरिक सम्मानजनक जीवन न जी सके तो स्वतंत्रता अधूरी रह जाएगी। बस यहीं से उनके जीवन का अगला अध्याय शुरू हुआ, एक ऐसा अध्याय जिसने उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली श्रमिक नेताओं में शामिल कर दिया, जिसने लाखों मजदूरों के जीवन को प्रभावित किया, जिसने अंततः उन्हें राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने की भूमिका तैयार की।
1: स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के दौरान वीवी गिरी ने भारत को बहुत करीब से देखा। उन्होंने केवल राजनीतिक गुलामी को नहीं देखा, बल्कि उस आर्थिक और सामाजिक वास्तविकता को भी देखा जो लाखों भारतीयों के जीवन को प्रभावित कर रही थी। देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके श्रम का उचित सम्मान नहीं था। कारखानों में काम करने वाले मजदूर, रेलवे कर्मचारी, बंदरगाहों पर काम करने वाले श्रमिक, खदानों में काम करने वाले मेहनतकश लोग, ये सभी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे थे, लेकिन उनकी अपनी स्थिति अक्सर संघर्षपूर्ण रहती थी। वीवी गिरी ने महसूस किया कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि समाज के हर वर्ग को सम्मान, सुरक्षा और अवसर मिले। यही सोच उन्हें श्रमिक आंदोलन की ओर लेकर चली गई और यहीं से उनके जीवन का वह अध्याय शुरू हुआ जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई।
0: दोस्तों, आज जब हम वीवी गिरी का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमें भारत के चौथे राष्ट्रपति की याद आती है, लेकिन ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने से बहुत पहले वो भारत के सबसे प्रभावशाली श्रमिक नेताओं में गिने जाते थे। दरअसल मजदूरों और कर्मचारियों के बीच उनका जो विश्वास था, वही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक पूंजी थी। वो उन नेताओं में से नहीं थे जो केवल मंच से भाषण देते हों, वो सीधे लोगों के बीच जाते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे और फिर उन समस्याओं को व्यवस्था के सामने पूरी मजबूती से रखते थे। शायद यही कारण भी था कि श्रमिक उन्हें अपना नेता ही नहीं बल्कि अपना प्रतिनिधि मानते थे।
1: 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों का भारत तेजी से बदल रहा था। रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा था, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा था, नई फैक्ट्रियां स्थापित होने लगी थी, लेकिन इन विकास कार्यों के पीछे काम करने वाले लाखों श्रमिकों की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं थी। कार्य के घंटे लंबे थे, सुरक्षा मानकों की कमी थी, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था लगभग नगण्य थी और सबसे बड़ी बात यह कि श्रमिकों की आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसे समय में वीवी गिरी ने यह समझा कि यदि इन लोगों को संगठित नहीं किया गया तो उनकी समस्याएं कभी भी राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं बन पाएंगी। यहीं से उन्होंने श्रमिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया।
0: उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र रेलवे कर्मचारियों के बीच रहा। रेलवे उस समय केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं थी, वो भारत की आर्थिक धड़कन भी थी, देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा माध्यम थी और लाखों कर्मचारी इस व्यवस्था को चलाने में दिन रात जुटे रहते थे। लेकिन इन कर्मचारियों की अपनी समस्याएं भी कम नहीं थी। वीवी गिरी ने रेलवे कर्मचारियों के बीच जाकर उनके जीवन को समझा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए भी ये कर्मचारी राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने उनकी समस्याओं को केवल सुना नहीं बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। धीरे धीरे वो रेलवे कर्मचारियों के सबसे विश्वसनीय नेताओं में शामिल हो गए।
1: रेलवे यूनियन के साथ काम करते हुए वीवी गिरी ने एक महत्वपूर्ण बात महसूस की। उन्होंने देखा कि श्रमिकों की समस्याएं केवल आर्थिक नहीं हैं, वे सम्मान से भी जुड़ी हुई हैं, वे भागीदारी से भी जुड़ी हुई हैं, वे इस प्रश्न से भी जुड़ी हुई हैं कि किसी संस्था में निर्णय लेते समय उन लोगों की आवाज कितनी सुनी जाती है जो वास्तव में उस संस्था को चलाते हैं। यही कारण था कि उन्होंने श्रमिक आंदोलन को केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे गरिमा, भागीदारी और सामाजिक न्याय के व्यापक प्रश्न से जोड़ दिया। यह उस समय के लिए एक अत्यंत प्रगतिशील सोच थी।
0: और फिर क्या, धीरे धीरे उनका नाम पूरे देश में एक प्रभावशाली ट्रेड यूनियन नेता के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन उनकी कार्यशैली उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी। वो केवल संघर्ष की भाषा नहीं बोलते थे, वो संवाद की भाषा भी जानते थे। वो केवल विरोध की बात नहीं करते थे, वो समाधान की भी बात करते थे। उनका मानना था कि श्रमिकों और प्रबंधन के बीच स्थायी टकराव किसी के भी हित में नहीं है। यदि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझें और संवाद बनाए रखें तो उद्योग भी आगे बढ़ सकते हैं और श्रमिकों का जीवन भी बेहतर हो सकता है।
1: यहीं से जन्म हुआ उस विचार का जिसे बाद में पूरे देश ने गिरी अप्रोच के नाम से जाना। आज भी औद्योगिक संबंधों और श्रम प्रबंधन का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इस अवधारणा का उल्लेख करते हैं। गिरी अप्रोच का मूल आधार था संवाद, विश्वास और सहयोग। वीवी गिरी का मानना था कि उद्योग, श्रमिक और सरकार ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, ये एक ही व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। यदि इनमें सहयोग होगा तो विकास होगा, यदि इनमें अविश्वास होगा तो संघर्ष बढ़ेगा। उनका दृष्टिकोण उस समय के लिए अत्यंत व्यवहारिक और दूरदर्शी माना गया।
0: वो अक्सर कहा करते थे कि हड़ताल किसी भी समस्या का पहला समाधान नहीं हो सकती, हड़ताल अंतिम विकल्प होना चाहिए। उससे पहले बातचीत होनी चाहिए, समझौते के प्रयास होने चाहिए, मध्यस्थता के प्रयास होने चाहिए, और यदि उसके बाद भी न्याय ना मिले तभी संघर्ष का मार्ग अपना कर चलना चाहिए। ये दृष्टिकोण उन्हें एक संतुलित नेता के रूप में स्थापित करता था। श्रमिक उन पर विश्वास करते थे क्योंकि वो उनके अधिकारों की बात करते थे, और उद्योग जगत भी उनका सम्मान करता था क्योंकि वो संवाद और स्थिरता के महत्व को समझते थे।
1: यही कारण है कि वीवी गिरी को केवल एक ट्रेड यूनियन नेता कहना उनके योगदान को सीमित कर देना होगा। वे श्रम संबंधों के एक गंभीर चिंतक भी थे। उन्होंने औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। आज जब हम औद्योगिक शांति, सामूहिक सौदेबाजी और श्रमिक भागीदारी जैसे विषयों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गिरी जी के विचारों की झलक दिखाई देती है।
0: बहुत कम लोग जानते हैं कि वीवी गिरी केवल आंदोलनकारी नेता ही नहीं थे बल्कि एक गंभीर लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने अपने अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से भी व्यक्त किया। उनकी पुस्तक केवल सिद्धांतों की चर्चा नहीं करती बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों और चुनौतियों पर आधारित हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री और जॉब्स फॉर अवर मिलियंस, ये पुस्तकों में उन्होंने भारत के आर्थिक विकास, रोजगार और श्रमिक कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार रखा। इन पुस्तकों से यह स्पष्ट होता है कि वो केवल आंदोलन के नेता नहीं थे, वो नीति और सिद्धांत दोनों को समझने वाले विचारक भी थे।
1: 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। अब संघर्ष का स्वरूप बदल चुका था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई समाप्त हो गई थी, लेकिन राष्ट्र निर्माण का कार्य भी शुरू हुआ था। देश को नई संस्थाएं बनानी थी, नई नीतियां बनानी थी, और एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो स्वतंत्र भारत की चुनौतियों को समझता हो। वीवी गिरी उन नेताओं में थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान दिया था और सामाजिक आर्थिक प्रश्नों पर भी गंभीरता से काम किया था। इसलिए स्वतंत्र भारत में उनकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती चली गई।
0: दोस्तों, स्वतंत्र भारत की सरकार ने उन्हें एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें सीलोन अर्थात वर्तमान श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ये केवल एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं थी बल्कि ये भारत के विश्वास का प्रतीक थी। उस समय भारत और श्रीलंका के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाना आवश्यक था। वीवी गिरी ने इस जिम्मेदारी को बड़ी कुशलता से निभाया। उनकी व्यवहार कुशलता, संतुलित दृष्टिकोण और संवाद की क्षमता यहाँ भी बहुत काम आई।
1: उच्चायुक्त के रूप में सफलता के बाद उन्हें केंद्र सरकार में श्रम मंत्री बनाया गया। यह जिम्मेदारी मानो उनके पूरे जीवन अनुभव का स्वाभाविक विस्तार थी। वर्षों तक श्रमिकों के बीच काम करने वाला व्यक्ति अब राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक नीतियों को सुधार सकता था। उन्होंने श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता था कि विकास का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे बल्कि समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचे।
0: इसके बाद वीवी गिरी ने कई महत्वपूर्ण राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य भी किया। उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर जैसे राज्यों में उनकी नियुक्ति इस बात का प्रमाण थी कि वो केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सक्षम प्रशासक भी थे। राज्यपाल के रूप में उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए काम किया। वे विवादों से दूर रहते थे। उनका प्रयास हमेशा यही रहता था कि लोकतांत्रिक संस्थाएं सुचारू रूप से काम करती रहें। उनकी निष्पक्षता और संतुलन की व्यापक सराहना की गई।
1: इन सभी भूमिकाओं के दौरान एक बात कभी नहीं बदली, चाहे वे श्रमिक नेता रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों, चाहे राज्यपाल रहे हों, वे हमेशा स्वयं को जनता से जुड़ा हुआ महसूस करते रहे। वे कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूले। शायद यही कारण था कि सार्वजनिक जीवन में उनकी विश्वसनीयता लगातार बढ़ती चली गई।
0: और फिर आया वर्ष 1967। ये उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। वीवी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये केवल एक संवैधानिक पद नहीं था, ये उनके दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन, उनके अनुभव, उनकी निष्ठा और उनके योगदान की राष्ट्रीय स्वीकृति थी। लेकिन इतिहास ने उनके लिए अभी एक और बड़ी भूमिका तय कर रखी थी, एक ऐसी भूमिका जो उन्हें भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में स्थान दिलाने वाली थी।
1: 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही वीवी गिरी भारतीय सार्वजनिक जीवन के सर्वोच्च पदों में शामिल हो चुके थे। लेकिन उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यात्रा भी शेष थी। ये वो यात्रा थी जो उन्हें राष्ट्रपति भवन तक लेकर जाने वाली थी, और ये यात्रा जितनी महत्वपूर्ण थी उतनी ही नाटकीय भी। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनकी चर्चा दशकों बाद भी की जाती है। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव ऐसी ही एक घटना है। यह केवल राष्ट्रपति चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, यह उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों, वैचारिक मतभेदों और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी परीक्षा थी। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में थे वीवी गिरी।
0: 3 मई 1969 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का आकस्मिक निधन हो गया। परिस्थितियां बदली और वीवी गिरी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। राष्ट्रपति भवन में पहुंचने के बाद भी वीवी गिरी की पहचान नहीं बदली। वो पहले ही की तरह सरल रहे, पहले की तरह सहज और पहले की तरह आम लोगों के प्रति संवेदनशील बने रहे। उनके लिए राष्ट्रपति का पद सम्मान से अधिक जिम्मेदारी का पद था। वो मानते थे कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, ये राष्ट्र की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इसलिए राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हमेशा संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को सर्वोच्च महत्व दिया।
1: उनके कार्यकाल के दौरान भारत अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं का साक्षी बना। देश आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। नई नीतियां बन रही थी, नए कार्यक्रम शुरू हो रहे थे और लोकतांत्रिक संस्थाएं निरंतर विकसित हो रही थी। ऐसे समय में राष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका संतुलन, धैर्य और संवैधानिक प्रतिबद्धता की रही। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि राष्ट्रपति पद दलगत राजनीति से ऊपर बना रहे।
0: लेकिन यदि कोई ये सोचता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे श्रमिकों और आम लोगों के मुद्दे से हट गए होंगे या उन्हें भूल गए होंगे, तो ये उनकी प्रकृति को समझने में शायद भूल होगी। उनकी जड़ें हमेशा समाज के उसी वर्ग से जुड़ी रहीं जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके मेहनतकश लोगों में होती है। मशीनें, इमारतें और संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें जीवंत बनाने वाला श्रम ही होता है। ये विचार उनके जीवन के अंतिम वर्षों तक उनके साथ बना रहा। 1974 में उनका राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनका सम्मान और प्रभाव बना रहा। लोग उन्हें केवल पूर्व राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखते थे, वो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिसने अपने जीवन के हर चरण में समाज के कमजोर और मेहनतकश वर्गों की आवाज को महत्व दिया। उनका सार्वजनिक जीवन किसी एक पद की उपलब्धि तक सीमित नहीं था, वो एक सतत यात्रा थी और वो थी जनसेवा की यात्रा।
1: उनकी असाधारण सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1975 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। यह सम्मान केवल इसलिए नहीं था कि वे भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे, यह सम्मान उनके पूरे जीवन की साधना का सम्मान था। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका योगदान, एक श्रमिक नेता के रूप में उनका संघर्ष, एक विचारक के रूप में उनकी दृष्टि, एक प्रशासक के रूप में उनकी निष्ठा और एक राष्ट्र नायक के रूप में उनकी सेवाएं, इन सभी का समग्र सम्मान था भारत रत्न।
0: लेकिन शायद वीवी गिरी स्वयं इस सम्मान को भी अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान जनता का विश्वास था। उन लाखों श्रमिकों का विश्वास जिन्होंने उन्हें अपना नेता माना, उन नागरिकों का विश्वास जिन्होंने उन्हें एक ईमानदार जनसेवक के रूप में देखा, और उस राष्ट्र का विश्वास जिसने उन्हें अपने सर्वोच्च संवैधानिक पद की जिम्मेदारी सौंपी।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि वीवी गिरी उन चुनिंदा भारतीय राष्ट्रपतियों में से हैं जिनकी सबसे बड़ी पहचान राजनीतिक नहीं बल्कि श्रमिक आंदोलन से थी। विश्व इतिहास में भी ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जहां ट्रेड यूनियन आंदोलन से निकला कोई नेता लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचा हो। यही बात उनके जीवन को विशिष्ट बनाती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जनसेवा का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः वही सबसे अधिक सम्मान दिलाता है।
0: आज जब हम 21वीं सदी में खड़े होकर उनके जीवन को देखते हैं तो उनके अनेक विचार आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक प्रतीत होते हैं। श्रमिक अधिकारों की बात हो, सामाजिक सुरक्षा की बात हो, संवाद आधारित औद्योगिक संबंधों की बात हो या लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती की बात हो, हर क्षेत्र में उनके विचार आज भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी सोच हमें ये याद दिलाती है कि विकास तभी सार्थक होता है जब उसमें मानव गरिमा और सामाजिक न्याय दोनों शामिल हों।
1: युवा पीढ़ी के लिए भी वीवी गिरी का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि साधारण परिस्थितियों से निकलकर भी असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने दिखाया कि सिद्धांतों पर अड़िग रहते हुए भी सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व का अर्थ केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना है। और उन्होंने यह भी दिखाया कि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके मूल्यों से होती है।
0: 24 जून 1980 को वीवी गिरी इस संसार से विदा हो गए। उनके निधन के साथ भारतीय सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ। देश ने एक अनुभवी राजनेता को खोया, एक स्वतंत्रता सेनानी को खोया, एक श्रमिक नेता को खोया, लेकिन उनके विचार, उनके मूल्य और उनका योगदान आज भी हमारे साथ हैं। समय बीत जाता है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहते, वो राष्ट्र की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं। वीवी गिरी ऐसे ही व्यक्तित्व थे।
1: आज जब हम उनके जीवन को याद करते हैं तो हमें केवल एक पूर्व राष्ट्रपति का स्मरण नहीं करना चाहिए, हमें उस युवा छात्र को भी याद करना चाहिए जिसने आयरलैंड की धरती पर स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का महत्व समझा। हमें उस स्वतंत्रता सेनानी को भी याद करना चाहिए जिसने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। हमें उस श्रमिक नेता को भी याद करना चाहिए जिसने मजदूरों की आवाज को सम्मान दिलाने का संकल्प लिया। और हमें उस राष्ट्र नायक को भी याद करना चाहिए जिसने राष्ट्रपति भवन तक पहुंचकर भी अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया।
0: वीवी गिरी आज भी जीवित हैं, हर उस श्रमिक के संघर्ष में जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा है, हर उस युवा के सपनों में जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हर उस नागरिक की चेतना में जो लोकतंत्र और संविधान की शक्ति पर विश्वास करता है, और हर उस भारतीय के हृदय में जो ये मानता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वीवी गिरी का जीवन संघर्ष की कहानी है, सेवा की कहानी है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था की कहानी है, और इन सबसे बढ़कर ये उस विश्वास की कहानी है कि सामान्य नागरिक भी राष्ट्र के इतिहास को बदल सकते हैं।
1: तो भारत विभूति के हमारे इस खास कार्यक्रम में आज आपने जाना भारत के चौथे पूर्व राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी के बारे में। भारत विभूति कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन पुष्पक श्रीवास्तव और वाचन मैं दीपेश
0: और मैं मनीषा।
1: इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: तो मैं सबसे पहले हमारे कोलकाता से आए हुए जो मित्र हैं स्नेहाशीष जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि भाषाओं की ये जो पूरी यात्रा है मातृभाषा से राष्ट्रभाषा की, और भाषा की समृद्धि ने भारत को किस तरह से निर्माण किया है, उसके बारे में अपनी बात कहें।
1: संगोष्ठी में जोक देने के लिए मैं कलकत्ता से आया हूँ और बहुत खुशी के साथ आए हैं कि देश भर आज, देश में नहीं, ये सारे हमारे जो कॉन्सुलेट्स और एम्बेसी भी होते हैं वहाँ भी ये हिंदी दिवस पालन होते हैं। लेकिन ये एक हिंदी दिवस यहाँ पालन हो रहा है जहाँ सिर्फ हिंदी के ऊपर चर्चा नहीं हो रहे हैं, हिंदी के नेतृत्व में सारे भारतीय भाषा जो है, सभी भाषा के विकास कैसे हो सकता है, एक भाषा से दूसरे भाषा कैसे समृद्ध हो सकता है, इस बारे में चर्चा हो रहा है। जो लोग इसके ये विषय तैयार किए हैं मैं सबके आभारी हूँ कि यही जो विषय है हिंदी के नेतृत्व में सभी मातृभाषा का विस्तार और विकास, यही इस समय का सबसे बड़ा चुनौती है। मैं जिस शहर से आता हूं, इस शहर में बंगला, अंग्रेजी, हिंदी तो आप जानते हैं, उत्तन माटन जिसका 200 साल यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे मनाया गया है। आज जिस विषय पर विचार करने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं वो है मातृभाषा से राष्ट्रभाषा तक भारतीय भाषाओं में भारत की आत्मा, जो केवल भाषा का विषय नहीं है, वो हमारी पहचान, शिक्षा, संस्कृति, लोकतांत्रिक भागीदारी, ज्ञान परंपरा और भारत के भविष्य का विषय है। मैं अपनी बात एक छोटी सी प्रश्न से प्रारंभ करना चाहूंगा। भारत कहां बसता है? क्या भारत केवल उसके भूगोल में, राजनीतिक सीमाओं में, संविधान और संस्थाओं में बसता है? मेरा मानना है भारत अपनी भाषाओं में भी बसता है। एक माँ जब अपने बच्चों को पहली बार लोहड़ी सुनाती है वो भारत है। एक किसान जब अपनी स्थानीय बोली में मौसम और मिट्टी का ज्ञान अगले पीढ़ी को देता है वो भारत है।

प्रश्न है जटिल लेकिन हल ये होते हैं मुस्कुराने से, हल ये होते हैं मुस्कुराने।

उसको दिल की किताब कहते हैं, जिसको दिल की गीत कविता है और रुबाब।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन,

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो काव्य भूमि है जहां ऋषियों की वाणी की गंभीरता है, जहां इतिहास के पन्नों से उठकर पात्र हमारे सामने जीवंत हो जाते हैं, जहां वीरता केवल रणभूमि में नहीं बल्कि उस क्षण में दिखाई देती है जब मनुष्य अपने भीतर के तूफान से संघर्ष करता है।
2: श्रोताओं, पिछले प्रसंगों में हमने सुना उस हृदय स्पर्शी मिलन को, जहां गंगा की पावन धारा साक्षी बनी माँ कुंती और सूर्यपुत्र कर्ण के संवाद की। एक ओर थी वर्षों से छिपी हुई ममता की पुकार, तो दूसरी ओर था उस पुत्र का मौन आक्रोश जिसने जीवन भर पहचान के लिए संघर्ष किया। कुंती ने कर्ण के सामने जन्म का वह सत्य रखा जिसे समय ने वर्षों तक अपने आंचल में छिपा कर रखा था, परंतु कर्ण के लिए जीवन का अर्थ केवल जन्म से तय नहीं था, उसके लिए राधा का स्नेह माँ का आशीर्वाद था, दुर्योधन की मित्रता उसका ऋण थी और दिया हुआ वचन उसके जीवन का धर्म।
1: श्रोताओं, कभी कभी भाग्य मनुष्य को ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ एक ओर रक्त का संबंध पुकारता है और दूसरी ओर आत्मा का संकल्प। कर्ण भी उसी अग्निपथ पर खड़ा है जहां आंसुओं की धारा है पर कदमों में विचलन नहीं। सूर्यांश लिए वो रथी खड़ा है काल के रणांगन में, मौन अग्नि जलती रहती है उसके अंतर मन के स्पंदन में। वज्र सा अटल, करुणा सा कोमल, ये कैसा तेज अपार है। कर्ण नहीं केवल एक कथा, वो मानवता का विस्तार है, वो मानवता का विस्तार है।
2: आइए श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं पंचम सर्ग के भाग पांच की ओर। आइए सुनते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर रचना रश्मि रथी के पंचम सर्ग के भाग पांच का काव्य पाठ।
3: सोचो, जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुछ सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानी वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर। शायद समाज टूटता वज्र बन तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर, शायद व्युक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से, पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम, पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती, भोगती राज सुख रहकर नहीं मैल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरुतल में, लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचरिता नारी, मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए, पाता न वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती शुचि गोद तुम्हारी, यदि उसे मिली होती शुचि गोद तुम्हारी, पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है, जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहां जाऊंगा, छीना था जो सौभाग्य निदारूढ़ होकर, देने आई हो से आज तुम रोकर, गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है, खोला ना गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथे पन में, आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो, पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर, फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने दो त्यक्त विषण आज भी वैसे, है वृथा यत्न है देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। दीपिता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है, मेरे समीप लेकिन वो नहीं नई है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूं मैं केशव के मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक ना स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा।
1: मित्रों, कर्ण के शब्दों में कठोरता दिखाई देती है, पर उस कठोरता के भीतर एक ऐसा हृदय धड़क रहा है जिसने जीवन भर अपनापन खोजा। वो कुंती को दोष देता है, पर उसका उद्देश्य केवल पीड़ा व्यक्त करना नहीं बल्कि उस सत्य को सामने रखना है जिसे समय ने दबा दिया था।
2: यही तो कर्ण की वेदना है, उसे राज्य का लोभ नहीं, उसे तो अपने बीते हुए बचपन की तलाश है। वह उस गोद को खोज रहा है जो उसे कभी मिली ही नहीं। परंतु अब समय बीत चुका है, नदी का जल लौटकर स्रोत तक नहीं आता। उसी प्रकार जीवन के बीते हुए क्षण कभी वापस नहीं आते। कर्ण जानता है कि आज जो स्नेह उमड़ा है उसमें माँ का प्रेम भी है और आने वाले युद्ध की चिंता भी। इसीलिए उसका मन कहता है, यह ममता देर से आई है, परंतु मेरा धर्म और मेरा वचन पहले ही अपना मार्ग चुन चुके हैं।
1: जी हाँ, और यही कर्ण को महान बनाता है। वो अपने जन्म के अधिकार से बड़ा पालन के ऋण को मानता है। वो जानता है कि दुर्योधन ने उस समय हाथ बढ़ाया था जब संसार ने उसे ठुकराया था। उसके लिए मित्रता केवल संबंध नहीं जीवन का उपकार है। आइए श्रोताओं, चलते हैं गंगा तट पर जहां दिशाएं मौन हैं और समय जैसे अपनी गति रोककर उस संवाद को सुन रहा है। कर्ण कुंती से कह रहे हैं,
3: मैं खूब समझता हूं कि नीति ये क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति ये क्या है, जोड़ने नहीं पिछुड़े व्युक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में ना तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। अन्यथा स्नेह की वेगमयी ये धारा तट को मरोड़ झकझोर तोड़ कर कारा। भुज बड़ा खींचने मुझे ना क्यों आई थी, पहले क्यों ये वरदान नहीं लाई थी। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपुबल को। लेकिन ये होगा नहीं देवी, तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान ना होना उससे कभी उड़न है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्योछावर हूं मैं, चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूं। अर्पित प्रसून के लिए ना यूं ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ।
1: राधेय मौन हो रहा व्यथा निज कहके, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर, साड़ी में टांके हुए अनंत सितारे थी, घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे थी, दिशा स्तब्ध, नीरव समस्त अग जग था, कुंजों में अब बोलता ना कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी।
2: श्रोताओं, इस मार्मिक संवाद में कर्ण का व्यक्तित्व मानो एक विराट पर्वत की तरह हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सत्य जान लेने के बाद भी उसका हृदय कर्तव्य से विचलित नहीं होता। सचमुच ये क्षण केवल माँ और पुत्र का मिलन नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं की गहन परीक्षा है।

0: Yo.
1: आज तुम्हारे शब्दों में जो अग्नि है उसका ताप मैं अनुभव कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे मौन ने तुम्हारे जीवन में अंधकार बोया था, पर क्या उस क्षण मेरी आत्मा भी नहीं रोई थी? समाज के भय ने मेरे कदम बांध दिए थे पुत्र। मैं माँ होकर भी उस समय माँ का धर्म निभा ना सकी। जिसे अपनी छाती से लगाना था उसे जलधारा के भरोसे छोड़ आई। यह पीड़ा मेरे हृदय में युगों से धधकती रही है। तुम कहते हो कि समय लौटता नहीं, यह सत्य है, पर क्या माँ का हृदय कभी अपने खोए हुए अंश को भूल पाता है? तुम्हें पाने की चाह आज नहीं जागी कर्ण, यह चाह तो उस दिन से जीवित थी जिस दिन मैंने तुम्हें अपने हाथों से दूर किया था। तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारा तेज संसार देख रहा है, पर मेरी आंखों के लिए तुम आज भी वही बालक हो जिसे कभी माँ की गोद न मिल सकी।
2: श्रोताओं, अब ये संवाद अपनी अगली दिशा की ओर बढ़ेगा, जहाँ माँ की पुकार और पुत्र का संकल्प एक और गहरी परीक्षा से गुजरेंगे। आइए सुनते हैं पंचम सर्ग के भाग 6 का काव्य पाठ।
0: इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे थे, खड़े शिलावत मूक भाग्य के मारे था। सिसक रहा राधेय सोच यह मन में, क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा प्रथा ने।
1: आई ना वेदी पर का मैं फूल उठाने, पर के प्रसून को नहीं, नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को, पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछुड़ी डाली पर कुसुम ना आन खिलेगा। तब जाती हूँ क्या और कर सकूंगी मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर मैं, जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच बड़ी पापिनी हूँ मैं, मानवी रूप में विकट सापिनी हूँ मैं, मुझसे प्रचंड अघमय कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे, यश ओढ़ जगत को तो छलती आई हूँ, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूँ। अब भी मन पर है खिंची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा, पेटिका बीच मैं डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, ओ शिलाभूत सर्पिणी सदृश मन मेरा, ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको। रे कर्ण सुनाओ व्यथा कहाँ तक तुझको, लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानी कुत्सा पछतावे को ही, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उघार अंतर मैं तेरे आगे, पर कदम उठा पाई न ग्लानी में भरकर, सामने न हो पाई कुत्सा से डरकर। लेकिन जब गुरुकुल पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है, तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसीलिए शक्तियां मन की सभी संजो कर, सब कुछ सहने के लिए समुद्यत होकर, आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने, सोदर वध के पातक से तुझे बचाने। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू, जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। कढ़ गई कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई थी छिन्न जीवन में, थे मिले लाल छह छह पर वाम विधाता, रह गई सदा पांच ही सुतों की माता। अभिलाष लिए तो

0: बहुत बड़ी आई थी, पर आज नहीं अपने बल के लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी कीर्ति निराली, लौटता ना कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी ही अंचल फैलाकर जा रही रिक्त बेटे से भीख ना पाकर। फिर भी तू जीता रहे ना अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर मैं तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जमकर हो गई शिला जो मन में, जो क्षरी फूट कर सूख गया था तन में, वह लहर रहा फिर उर में आज उमड़कर, वह रहा हृदय के कूल किनारे भरकर। कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानी की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन में आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषर्ण कली को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को, छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे।
1: श्रोताओं, इस प्रसंग में कुंती कोई महारानी नहीं रह जाती, न हस्तिनापुर की राजमाता, न पांडवों की जननी। यहां वो केवल एक ऐसी मां है जिसकी स्मृतियों में वर्षों से एक अधूरा रुदन बंद पड़ा था। दिनकर जी ने कितनी करुणा से उस अपराध बोध को स्वर दिया है। जीवन भर यश प्रतिष्ठा और कुल मर्यादा का आवरण ओढ़े रहने वाली कुंती आज स्वयं अपने ही निर्णयों के कटघरे में खड़ी दिखाई देती हैं। समय के साथ घाव भर जाते हैं ये कहा जाता है, पर कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से भरते हुए दिखते हैं और भीतर निरंतर रिसते रहते हैं। कर्ण को पेटिका में रखकर जलधारा के हवाले करने का वो क्षण मानो आज भी उनकी आंखों में ज्यों का त्यों ठहरा हुआ है। वो शिशु की टुकुर टुकुर देखती हुई आंखें, वो मौन प्रश्न, वो असहाय पुकार वर्षों बाद भी कुंती के हृदय में शूल बनकर चुभ रही है। सच ही तो है, समय बीत जाता है पर मां का हृदय अपने अपराधों की राख में भी अंगार बचाए रखता है।
2: कितना मार्मिक दृश्य है ये। एक और सूर्य पुत्र कर्ण जिसने जीवन भर माँ की गोद का अभाव सहा, और दूसरी ओर कुंती जिसने जीवन भर उस रिक्त गोद का दंश झेला। लगता है जैसे नियति स्वयं उनके बीच खड़ी होकर कह रही हो। कुछ बिछोह ऐसे भी होते हैं जिन्हें समय नहीं भरता, वे केवल आंसुओं की भाषा में अपना इतिहास लिखते हैं। यही इस प्रसंग की आत्मा है और यही दिनकर जी की लेखनी का चमत्कार भी।
1: माने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, होठ ही कंटकित पुलक कर्ण की काया, संजीवन सी छू गई चीज कुछ तन में, वह बह चला स्निग्ध प्रस्वण कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे, फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर।
3: मैं धन्य हुआ बिछुड़ी गोदी को पाकर, पर हाय स्वत्व मेरा ना समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। अतएव न्यास अंचल का ले ना सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी ना दे सकूंगा, कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पढ़ता हूं पांव जननी हट त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो ये कर्ण पार्थ का रण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर, विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक धैर्य के हित में जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वो प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझमें शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट हो जाएगा। तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतेव मांग लेता, बदले में तुमको चार कर्ण देता। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच ये मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में।
0: रे हठी, दिया क्या तूने निज को लेकर, ले नहीं किया तूने। बनने आई थी छह पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता।
2: उस निस्तब्ध क्षण में मानो समय स्वयं ठहर सा गया था। वर्षों से अपराध बोध की अग्नि में जलती कुंती के हृदय की जमी हुई ममता आज अचानक पिघल उठती है। अपने ही त्यागे हुए पुत्र को सामने देखकर वह कुरुकुल की रानी नहीं रह जाती, बल्कि एक साधारण असहाय माँ बन जाती है, जो केवल अपने बेटे को छाती से लगाकर रो लेना चाहती है। कर्ण भी उस आलिंगन में पहली बार मातृत्व की ऊष्मा का अनुभव करता है, जैसे तपती धरती पहली वर्षा की बूंदों से भीगकर शांत हो जाती है। उस क्षण में वर्षों का वियोग, पश्चाताप और प्रेम एक ही धारा बनकर बहने लगते हैं। सूर्य की किरणें जैसे कर्ण के पैरों पर ऐसे दिख रही हैं जैसे क्षमा मांग रही हों, और कर्ण मानो कह रहे हों,
3: हे सांध्य गगन, हे मौन बहती गंगा, तुम ही बताओ इस अस्तित्व का अंतिम सत्य क्या है, जिसे विधाता ने हमेशा पराया रखा। आज अंत समय में उसे अपना बनाकर नियति ने कैसा क्रूर न्याय किया है। जीवन की इस ढलती सांझ में मैं अपने ही वजूद के खंडरों पर खड़ा होकर सोचता हूं कि मनुष्य वास्तव में क्या लेकर आता है और क्या खो देता है। गंगा की इन लहरों की तरह समय भी बस बहता चला जाता है, पीछे छोड़ जाता है तो केवल यादों की सूखी रेत। जिसे जन्म की पहली भोर में त्याग दिया गया हो, उसके लिए जीवन की इस सांध्य बेला में ममता के इस अचानक स्पर्श का क्या मोल। नियति ने मेरे हाथों में देने के लिए हमेशा युद्ध और अकेलेपन का विष ही चुना, और आज जब मैं उस विष को अमृत समझकर पीने चला हूं, तब मुझसे मेरी ही मृत्यु का अधिकार मांगा जा रहा है। हे डूबते सूर्य, तुम साक्षी रहना, कर्ण संसार से हार कर नहीं बल्कि स्वयं को जीत कर जा रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय इतिहास को जीतना नहीं बल्कि अपनी ही नियति के इस अंतहीन सन्नाटे को मुस्कुराकर स्वीकार कर लेना है।
2: श्रोताओं, आज के इस प्रसंग में दिनकर जी ने वात्सल्य, वेदना और धर्म के ऐसे सूक्ष्म तार छेड़े हैं कि शब्द पढ़ते नहीं हृदय में उतरते चले जाते हैं। अब ये कथा अपने अगले और अंतिम भाव विस्तार की ओर बढ़ रही है। अभी बहुत कुछ शेष है, कुछ अनकहे प्रश्न, कुछ अधूरे उत्तर और एक ऐसा निर्णय जो आने वाले महायुद्ध की दिशा तय करेगा। अगले भाग में अब हम पंचम सर्ग के अंतिम भाग सात की तरफ चलने वाले हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। चलते चलते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन किया दीपक नेमा ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा,
0: अदिति
4: और मैं दीपक नेमा।
2: तो श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा लेती है यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, यह रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है हमारे वैज्ञानिक। आपके साथ मैं हूं नूपुर शर्मा
2: और मैं वेणु बालन। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। एक चिकित्सक, एक समाज सेविका और परिवार नियोजन आंदोलन की अग्रणी आवाज।
1: नाम है डॉक्टर बानु जहांगीर कोया जी।
2: तो आइए सुनते हैं उनकी यह प्रेरणादायक जीवन गाथा।
1: आज हम आपको एक ऐसी महिला की विस्तृत जीवन गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी।
2: एक संपन्न पारसी परिवार में जन्मी ये लड़की आगे चलकर पुणे के एक छोटे से अस्पताल को और महाराष्ट्र के सैकड़ों गांवों को हमेशा के लिए बदल देगी।
1: नाम था डॉक्टर बानू जहांगीर कोया जी। एक चिकित्सक, एक समाज सेविका और परिवार नियोजन आंदोलन की एक अग्रणी आवाज।
2: आज की इस कड़ी में हम उनके जन्म से लेकर निधन तक की पूरी यात्रा को विस्तार से जानेंगे। उनका परिवार, उनकी शिक्षा, उनका संघर्ष, उनकी उपलब्धियां और उनकी विरासत।
1: इस कहानी को समझने से पहले हमें उस सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना होगा जिसमें बानू का जन्म हुआ।
2: पारसी समुदाय मूलतः प्राचीन ईरान से आकर भारत के पश्चिमी तट पर बसा एक छोटा सा समुदाय है, पर शिक्षा, व्यापार और समाज सुधार में इनका योगदान अपने आकार से कहीं बड़ा रहा है।
1: जमशेद जी टाटा से लेकर दादा भाई नौरोजी तक इस समुदाय ने भारत के आधुनिकीकरण में एक केंद्रीय भूमिका निभाई।
2: बानू का जन्म भी इसी परंपरा की कड़ी था। उनके परिवार में शिक्षा को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था और लड़कियों की शिक्षा को लेकर भी उनका नजरिया उस दौर के औसत भारतीय परिवार से कहीं आगे था।
1: एक दिलचस्प बात यह भी है कि जहां अधिकांश पारसी परिवार ब्रिटिश शासन के प्रति सहानुभूति रखते थे, वहीं बानू का अपना परिवार राष्ट्रवादी विचारधारा से गहराई से प्रभावित था।
2: यही पारिवारिक संस्कार आगे चलकर बानू के भीतर विकसित हुई सेवा भावना और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध की नींव बना।
1: सात सितंबर 1917 मुंबई शहर, एक संपन्न पारसी परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। नाम रखा जाता है बानू पेस्तनजी कापड़िया।
2: उनके पिता पेस्तनजी कापड़िया एक जाने माने सिविल इंजीनियर थे और माता का नाम था बापा माई। बानू अपने माता पिता की इकलौती संतान थी।
1: जब स्कूल जाने की उम्र आई तो माँ ने बानू को पुणे भेज दिया, नाना नानी के घर। वहाँ एक बड़ा भरा पूरा संयुक्त परिवार था, मामा, मौसी, चचेरे, ममेरे, भाई बहन।
2: माता पिता का बार बार आना जाना भी बना रहा, इसलिए बानू को कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उन्होंने खुद कहा है कि उनका बचपन एक बेहद संतोषप्रद और भरा पूरा अनुभव था।
1: दौलत तो थी ही, पर अनुशासन भी उतना ही जरूरी माना जाता था। यही अनुशासन आगे चलकर बानू के पूरे जीवन का आधार बना।
2: और हाँ, एक दिलचस्प बात, बानू का पालन पोषण पूरी तरह अंग्रेजी माहौल में हुआ। घर में गुजराती बोली जाती पर उसमें अंग्रेजी शब्दों की भरमार होती,
1: इतनी ज्यादा कि बड़े होकर बानू को मराठी सीखने के लिए एक अलग शिक्षक रखना पड़ा। वही मराठी जिस भाषा में आगे चलकर वे हजारों ग्रामीण महिलाओं से बात करने वाली थीं।
2: कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में उन्होंने बैले नृत्य सीखा, फ्रेंच भाषा पढ़ी और नाना के घर रखे पियानो पर पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की तालीम ली।
1: इतनी अच्छी तालीम कि उन्होंने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक के परीक्षकों के सामने भी अपनी प्रस्तुति दी। 5-6 साल तक वे गर्ल्स गाइड से भी जुड़ी रहीं।
2: यह सांस्कृतिक द्वंद बड़ा दिलचस्प है। पश्चिमी माहौल में पली बड़ी एक लड़की आगे चलकर भारत के सबसे दूर दराज गांवों की सच्चाई में गहराई से उतर जाती है।
1: यह दिखाता है कि सच्ची सेवा भावना किसी सांस्कृतिक सीमा की मोहताज नहीं होती।
2: सेंट विंसेंट हाई स्कूल मूलतः लड़कों का स्कूल, पर बानू वहां से मैट्रिकुलेशन पास करने वाली पहली लड़की बनी।
1: यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उस दौर में लड़कियों का ऐसे स्कूल में दाखिला ही असामान्य माना जाता था।
2: आगे कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में भी वे अक्सर कक्षा में पहला स्थान पाती रहीं और सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा में तो 5 विषयों में विशेष योग्यता हासिल की। उस दौर के लिए यह एक दुर्लभ उपलब्धि थी।
1: 16 साल की उम्र में बानू ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्री मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। उस दौर में एक लड़की का डॉक्टर बनने की राह चुनना आसान बात नहीं थी। चिकित्सा को तब मुख्यतः पुरुषों का ही क्षेत्र माना जाता था।
2: इसके बाद ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक, जिसने भारत में पश्चिमी चिकित्सा शिक्षा के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई।
1: वहां से 1940 में उन्होंने MD की डिग्री हासिल की।
2: पढ़ाई के दौरान ही उनकी दिलचस्पी बनी प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान में। यह चुनाव इत्तेफाक नहीं था।
1: उस दौर के भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बेहद ऊंची थी। प्रसूति विज्ञान का क्षेत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद अहम माना जाता था।
2: बानू ने इस क्षेत्र को चुनकर बिना जाने समझे भी वह राह चुन ली जो आगे चलकर लाखों महिलाओं और नवजातों की जिंदगी बदलने वाली थी।
1: आगे उन्होंने प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर VN शिरोडकर के मार्गदर्शन में रेजिडेंसी की। डॉक्टर शिरोडकर उस दौर के सबसे सम्मानित प्रसूति विशेषज्ञों में गिने जाते थे।
2: ऐसे काबिल गुरु के मार्गदर्शन में सीखना बानू के लिए एक अनमोल अनुभव साबित हुआ।
1: 1937 महाबलेश्वर की पहाड़ियां पुणे और मुंबई के संपन्न परिवारों का प्रिय गर्मियों का ठिकाना।
2: यहीं बानू की मुलाकात हुई जहांगीर कोया जी से। यह मुलाकात करवाई थी डॉक्टर एडुलजी कोया जी ने, जो बानू के पारिवारिक चिकित्सक भी थे और जहांगीर के बड़े भाई भी।
1: जहांगीर पेशे से इंजीनियर थे और अमेरिका के पर्ड्यू विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके अभी अभी लौटे थे।
2: 5 साल की प्रणय गाथा के बाद 24 फरवरी 1941 को दोनों का विवाह हुआ।
1: यह विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, यह दो प्रतिष्ठित परिवारों का संगम भी था जिसने बानू के आगे के जीवन पथ को गहराई से प्रभावित किया।
2: 1943 में बानू पुणे लौट आईं, जहां जहांगीर पहले से रहते थे। यही दोनों ने अपना घर बसाया।
1: पुणे में बानू ने डॉक्टर एडुलजी कोयाजी के साथ सामान्य चिकित्सा अभ्यास में काम शुरू किया, भले ही उनके पास स्त्री रोग विज्ञान की विशेष डिग्री थी।
2: यह फैसला दिखाता है कि बानू ने अपनी विशेषज्ञता के बावजूद विनम्रता से शुरुआत की और एक अनुभवी वरिष्ठ से सीखना बेहतर समझा।
1: डॉक्टर एडुलजी की एक खासियत थी, वे गरीब और अमीर दोनों तरह के मरीजों का एक जैसे समर्पण से इलाज करते थे बिना किसी भेदभाव के।
2: यही मूल्य आगे चलकर बानू के अपने पूरे करियर का सिद्धांत बना, चाहे पुणे के संपन्न मरीज हों या वाड़ू गांव की महिलाएं।
1: अप्रैल 1944, एक मोड़ आता है। सरदार मुदलियार डॉक्टर एडुलजी से आग्रह करते हैं कि किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के लिए किसी काबिल चिकित्सक की सिफारिश करें।
2: यह अस्पताल पुणे में स्थित था। 1912 में पुणे के प्रमुख नागरिकों द्वारा स्थापित एक छोटा सा चैरिटेबल अस्पताल जो माँ और नवजात की देखभाल के लिए बना था।
1: ध्यान रहे, यह मुंबई के ज्यादा मशहूर KEM अस्पताल से अलग एक स्वतंत्र संस्था थी, भले ही दोनों का नाम ब्रिटिश सम्राट किंग एडवर्ड सप्तम की याद में रखा गया था।
2: उस दौर में भारत में मातृ स्वास्थ्य सेवा बेहद सीमित थी। ज्यादातर प्रसव घर पर ही या बिना प्रशिक्षित दाइयों की देखरेख में होते, इसलिए मातृ मृत्यु दर बेहद डरावनी थी।
1: डॉक्टर एडुलजी ने इस पद के लिए एक ही नाम सुझाया, बानू जहांगीर कोया जी। 6 महीने के भीतर बानू इस अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी बन गई।
2: उस वक्त अस्पताल में सिर्फ 40 बिस्तर थे, एक बैरक जैसी इमारत, कोई खास सुविधा नहीं, स्टाफ की कमी, आधुनिक उपकरणों का अभाव।
1: यहीं से शुरू हुई 55 साल लंबी एक असाधारण सेवा यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने न सिर्फ एक अस्पताल बल्कि पूरे इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था का कायाकल्प कर दिया।
2: 55 साल यही वो समय था जिसमें बानू ने KEM अस्पताल की पूरी तस्वीर बदल दी।
1: 1999 तक अस्पताल में 550 बिस्तर हो चुके थे, यानी शुरुआत से करीब 13 गुना ज्यादा।
2: पर यह सिर्फ इमारत बढ़ाने की बात नहीं थी, बानू ने इस संस्था के हर पहलू में गुणात्मक सुधार किया।
1: उन्होंने इसे सिर्फ एक इलाज केंद्र नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे BJ मेडिकल कॉलेज से जोड़ा, पुणे के एक प्रमुख सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से।
2: इस जुड़ाव ने KEM को चिकित्सा शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बना दिया, जहां नई पीढ़ी के डॉक्टर तैयार होने लगे और साथ ही अस्पताल को युवा ऊर्जावान चिकित्सकों की लगातार आपूर्ति मिलती रही।
1: यहीं के शोधकर्ताओं ने ग्रामीण स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों पर वैज्ञानिक ढंग से काम किया। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और अन्य स्वास्थ्य संकेतकों में आ रहे बदलावों को बारीकी से दर्ज किया गया।
2: यह आंकड़ा आधारित नजरिया उस दौर में असामान्य था। ज्यादातर सामाजिक सेवा परियोजनाएं सिर्फ भावनात्मक प्रेरणा पर टिकी होती, बिना किसी ठोस मूल्यांकन तंत्र के।
1: पर बानू ने अपने चिकित्सा वैज्ञानिक ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी परियोजना को एक साक्ष्य आधारित मॉडल बना दिया, जो आगे चलकर बाकी परियोजनाओं से अलग खड़ा हुआ।
2: एक बात और, इतनी बड़ी धर्मार्थ संस्था को इस पैमाने पर बढ़ाने के लिए सिर्फ मेडिकल ज्ञान काफी नहीं था, इसके लिए चाहिए था वित्तीय प्रबंधन, दानदाताओं से संपर्क, सरकारी अनुदान और स्टाफ का प्रबंधन।
1: और इन सभी में बानू ने असाधारण दक्षता दिखाई। यही वजह है कि KEM एक छोटी चैरिटी संस्था से एक बड़े आधुनिक चिकित्सा संस्थान में तब्दील हो सका।
2: पर बानू सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही, उन्होंने महसूस किया पुणे शहर और उसके आसपास के सूखाग्रस्त गांवों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की खाई बहुत गहरी है।
1: भारत के बाकी हिस्सों की तरह महाराष्ट्र के गांवों में भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का घोर अभाव था।
2: ग्रामीण भारत की महिलाएं दोहरी मार झेल रही थीं। एक तरफ गरीबी और दूरी, दूसरी तरफ समाज में उनकी दोयम दर्जे की हैसियत।
1: ये दोनों मिलकर उनके स्वास्थ्य और भलाई की राह में गंभीर रुकावटें खड़ी कर रहे थे।
2: 1972 पुणे से करीब 40 किलोमीटर दूर गांव वाड़ू में बानू ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला।
1: ये फैसला उस दौर में बेहद साहसी और दूरदर्शी था, क्योंकि ज्यादातर शहरी चिकित्सा संस्थान अपने संसाधन गाँव में लगाने से बचते थे।
2: पर बानू ने साफ समझ लिया था, अगर सच में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है तो शहर की चार दीवारी से बाहर निकलना ही होगा।
1: यही केंद्र आगे चलकर बना शिरडी साईं बाबा ग्रामीण अस्पताल, जो आज भी आसपास के गांवों की सेवा कर रहा है। बानू का बोया गया ये बीज सिर्फ उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहा।
2: 1977 बानू एक और बड़ा कदम उठाती है, वाड़ू ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना।
1: महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से गांव-गांव से करीब 600 लड़कियों को चुना गया और प्रशिक्षित किया गया सामुदायिक स्वास्थ्य के मार्गदर्शक के रूप में।
2: यह परियोजना अपने डिजाइन में बेहद सोच समझकर बनाई गई थी। बाहरी विशेषज्ञों को गांव भेजने के बजाय बानू ने स्थानीय महिला को ही प्रशिक्षित करने का रास्ता चुना,
1: क्योंकि स्थानीय महिलाएं अपने समुदाय की भाषा, संस्कृति और आपसी रिश्तों को बेहतर समझती थी। वे स्थायी रूप से गांव में रह सकती थीं, जबकि बाहरी विशेषज्ञ सिर्फ कभी कभार आते थे।
2: और सबसे बड़ी बात, इस प्रशिक्षण ने इन महिलाओं को खुद सशक्त बना दिया। इससे उन्हें कमाई मिली, सम्मान मिला और समाज में एक नई पहचान मिली।
1: ये लड़कियां अपने ही गांव में जाकर स्वच्छता, पोषण और परिवार नियोजन की बातें समझाती, गंभीर मामलों को वाड़ू के केंद्र या पुणे के KEM अस्पताल में भेज दिया जाता।
2: समय समय पर स्वास्थ्य शिविर भी लगते, KEM के डॉक्टर बच्चों का टीकाकरण करते, कान नाक गले की बीमारियों और मोतियाबिंद जैसे समस्याओं का इलाज करते।
1: इन शिविरों का आयोजन बड़े सुव्यवस्थित तरीके से होता था। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहले ही मरीजों की पहचान कर लेती, ताकि शिविर वाले दिन डॉक्टरों का समय बर्बाद ना हो।
2: और हर बार आंकड़े जुटाए जाते, नतीजों को परखा जाता। शिशु मृत्यु दर में आई भारी गिरावट इसका एक बड़ा सबूत बना।
1: यह मॉडल इतना कामयाब रहा कि कई और विकासशील देशों ने इसे अपनाने की कोशिश की।
2: बानू का मानना था निजी संस्थाओं को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी छोटी सफलताओं का फायदा बड़े पैमाने पर आम लोगों तक पहुंच सकता है।
1: यह सोच निजी पहल और सरकारी सहयोग का मेल आज भी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का एक अहम सिद्धांत माना जाता है।
2: बानू का ज्यादातर काम परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के इर्द गिर्द रहा।
1: भारत ने 1952 में दुनिया के पहले राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, पर इसके बावजूद यह विषय दशकों तक भारतीय समाज में बेहद संवेदनशील और वर्जित माना जाता रहा।
2: सामाजिक रूढ़ियां, धार्मिक मान्यताएं, शिक्षा की कमी, ये सब मिलकर परिवार नियोजन के प्रसार में रुकावट बनते हैं।
1: ऐसे माहौल में बानू ने इसे खुलकर स्वास्थ्य शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के दायरे में ला खड़ा किया। उस दौर के लिए ये एक बड़ा साहसिक कदम था।
2: बानू का मानना था भारत की महिलाओं का जागरण ही एक बेहतर और अधिक मानवीय समाज की कुंजी है।
1: वे अक्सर कहा करती थीं, उनका सपना एक ऐसे कल का है जिसमें महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलें और उन्हीं की गति से आगे बढ़ें।
2: यह सिर्फ एक आदर्शवादी बात नहीं थी, यह उनके पूरे काम का मार्गदर्शक सिद्धांत था।
1: बानू ने यह भी समझा कि परिवार नियोजन सिर्फ गर्भ निरोधक बांटने तक सीमित नहीं हो सकता है, इसके लिए चाहिए व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण की जागरूकता और समाज की सहमति।
2: यही वजह है कि उनकी परियोजनाओं में परिवार नियोजन को हमेशा स्वच्छता और सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के साथ जोड़कर पेश किया गया, अलग से नहीं।
1: 80 के दशक के बीचों बीच बानू ने अपने काम की समीक्षा की और एक बड़ी कमी को पकड़ा। किशोरियों और युवा लड़कियों की जरूरतों पर ध्यान बहुत कम गया था।
2: गरीबी और लड़की होने की दोहरी मार झेलती ये लड़कियां बिना पढ़ाई और बिना जानकारी के माँ और कमाने वाले की भूमिका में उतर जाती थी।
1: 1988 में शुरू हुई युवा महिला स्वास्थ्य एवं विकास परियोजना 11 गांवों में सामुदायिक कार्यकर्ता तैनात किए गए।
2: सिलाई कढ़ाई जैसे हुनर सिखाए गए, सेहत की जानकारी दी गई और जाति लिंग जैसे संवेदनशील विषयों पर खुलकर बात करने का माहौल बनाया गया।
1: गीतों, खेलों और त्योहारों के जरिए औपचारिक कक्षाओं को रोचक और सहज बनाया गया ताकि किशोरियां सहजता से इनमें भाग ले सके।
2: यह परियोजना दिखाती है कि बानू एक बार की सफलता से संतुष्ट होकर बैठी नहीं, उन्होंने लगातार अपने कार्यक्रमों को परखा और नई जरूरतों के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ाया।
1: बानू की काबिलियत और उनका काम जल्द ही पुणे और महाराष्ट्र की सीमाओं से आगे बढ़ गया।
2: वे केंद्र सरकार की सलाहकार बनी और दुनिया भर में एक जानी मानी विशेषज्ञ के तौर पर उभरी।
1: दुनिया भर की कई स्वास्थ्य एजेंसियां विकासशील देशों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मॉडल की तलाश में थी, ऐसे मॉडल जो सीमित संसाधनों में भी ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके।
2: बानू की वाडू परियोजना इस दिशा में एक मिसाल बनकर सामने आई, यह दिखाते हुए कि कैसे एक शहरी अस्पताल अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर गांव में स्थायी बदलाव ला सकता है।
1: इसके अलावा बानू पुणे विश्वविद्यालय की प्रबंधन परिषद की सदस्य रही और वहाँ प्रोफेसर एमेरिट्स भी रही। उनका योगदान सिर्फ अस्पताल प्रशासन तक सीमित नहीं था, शिक्षा नीति में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही।
2: चिकित्सा और समाज सेवा से परे बानू का व्यक्तित्व साहित्य और कला के गहरे प्रेम से भी भरा था, यह उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था।
1: इसी लगाव के चलते वे सकाल समूह के अखबारों से जुड़ी। महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली मराठी समाचार पत्र समूहों में से एक और 30 साल तक वे इस समूह की निदेशक रहीं।
2: इतने लंबे अरसे तक इस तरह के प्रभावशाली संस्थान से जुड़े रहना यह दिखाता है कि बानू सिर्फ चिकित्सा में ही नहीं, मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में भी एक सम्मानित नाम मानी जाती थी।
1: 1994 में उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय और SNDT विश्वविद्यालय दोनों से साहित्य में मानद उपाधियां मिली। एक ही साल में दो अलग अलग विश्वविद्यालयों से यह सम्मान उनके व्यापक प्रभाव का सबूत है।
2: और संगीत कॉन्वेंट में सीखा गया पश्चिमी शास्त्रीय संगीत, नाना के घर का पियानो, लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज की परीक्षा यह सब उनकी बहुमुखी प्रतिभा का हिस्सा रहा।
1: और अपने पति जहांगीर के साथ बाल रूम डांस करना भी उन्हें बेहद पसंद था। काम के भारी बोझ के बीच भी जिंदगी में यह हल्कापन उन्होंने हमेशा बचा कर रखा।
2: 1993 एक बड़ा सम्मान, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, वो भी लोक सेवा श्रेणी में।
1: यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में स्थापित है और इसे एशिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। कई बार इसे एशियाई नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।
2: पुरस्कार समिति ने अपने प्रशस्ति पत्र में साफ लिखा कि बानू ने एक आधुनिक शहरी अस्पताल के संसाधनों को जोड़कर महाराष्ट्र की ग्रामीण महिलाओं और उनके परिवार के लिए बेहतर सेहत और नई उम्मीदें दी।
1: अपने स्वीकृति भाषण में बानू ने बड़ी विनम्रता से इस सम्मान के लिए आभार जताया, जो उनके सीधे साधे व्यक्तित्व को भी दर्शाता है।
2: और इसके बाद आया भारत सरकार का सम्मान पद्म भूषण, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जो कला, समाज सेवा, चिकित्सा, विज्ञान और लोक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किया जाता है।
1: बानू का नाम भारत की उन गिनी चुनी महिलाओं में शामिल हो गया जिन्होंने चिकित्सा और समाज सेवा में ये सम्मान अर्जित किया।
2: इनके अलावा भी बानू को अपने जीवन में कई और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, जो उनके बहुआयामी योगदान की व्यापक स्वीकृति को दर्शाते हैं।
1: 70 पार करने के बाद भी बानू KEM अस्पताल और अपनी बाकी परियोजनाओं की देखरेख में जुटी रहती थी।
2: उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी, शहर के आधुनिक अस्पताल और गांव की मिट्टी, दोनों से वे बराबर जुड़ी रहीं, कभी किसी को नजरअंदाज नहीं किया।
1: वे सत्ता को अपने हाथ में समेट कर नहीं रखती थीं, बल्कि गांव की महिलाओं को ही प्रशिक्षित करके उन्हीं को सशक्त बनाती थीं। यही उनका असली तरीका था।
2: यह विकेंद्रीकृत सोच, जिसमें बाहरी विशेषज्ञ स्थानीय क्षमता निर्माण पर जोर देता है, न कि लगातार बाहरी दखल पर, आज के विकास अध्ययन में एक स्थापित सिद्धांत माना जाता है।
1: पर बानू ने इसे दशकों पहले ही व्यावहारिक रूप में लागू करके दिखा दिया था।
2: आजादी के बाद भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया और परिवार नियोजन कार्यक्रम इस नीति का एक अहम स्तंभ बना।
1: पर सरकारी कार्यक्रमों की एक बड़ी सीमा ये थी कि वे अक्सर ऊपर से नीचे की तरफ चलते थे, जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी बहुत सीमित रहती थी।
2: बानू का योगदान इसी वजह से खास है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया जिसमें स्थानीय समुदाय, खासकर महिलाएं, खुद बदलाव की वाहक बनी।
1: यह नीचे से ऊपर वाला नजरिया सरकारी कार्यक्रमों की सीमाओं को पार करते हुए ज्यादा स्थायी और असरदार नतीजे देने में कामयाब रहा।
2: और आज जब निजी सरकारी भागीदारी की जरूरत पर जोर दिया जाता है, बानू का यह नजरिया और भी प्रासंगिक लगता है।
1: 15 जुलाई 2004, 86 साल की उम्र में डॉक्टर बानू जहांगीर कोया जी का निधन हो गया।
2: अपने आखिरी दिनों तक वे अपने काम से जुड़ी रहीं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, समाज सुधार, उनकी सक्रियता में कभी कोई कमी नहीं आई।
1: टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबारों ने उन्हें एक सच्ची समाज सेविका के रूप में श्रद्धांजलि दी, जिनका पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा को समर्पित रहा।
2: उनके निधन की खबर सिर्फ पुणे और महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि हर उस जगह शोक का विषय बनी जहां उनके काम और उनकी प्रेरणा का असर पड़ा था।
1: KEM अस्पताल आज भी पुणे के सबसे बड़े चिकित्सा और शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है। हर साल हजारों मरीज, सैकड़ों नए डॉक्टर, यही बानू की देन है।
2: वाडू का वह छोटा सा केंद्र आज शिरडी साईं बाबा ग्रामीण अस्पताल बनकर अब भी आसपास के गांवों की सेवा कर रहा है।
1: और वह मॉडल गांव की महिलाओं को ही प्रशिक्षित करके स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाना, आज भारत की आशा कार्यकर्ता जैसी योजनाओं में भी वही सोच झलकती है जिसे बानू ने दशकों पहले वाडू में लागू किया था।
2: उनकी कहानी आज भी उन युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रख रही हैं।
1: उनका जीवन ये दिखाता है, चाहे कोई कितने भी संपन्न परिवार से क्यों न आया हो, वह अपनी विशेषज्ञता और समर्पण का इस्तेमाल समाज के सबसे वंचित वर्गों की सेवा के लिए भी कर सकता है।
2: डॉक्टर बानू जहांगीर कोया जी एक डॉक्टर, एक समाज सेविका और एक ऐसी प्रेरणा जो पीढ़ियों तक याद रहेगी।
1: पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जैसे सम्मान उनकी उपलब्धियों के प्रतीक भर हैं। उनकी असली विरासत उन हजारों महिलाओं और बच्चों की जिंदगी में झलकती है जिन्हें उनके प्रयासों से बेहतर सेहत और नए मौके मिले।
2: उनका जीवन इस बात का सबूत है कि जब असाधारण काबिलियत गहरी करुणा और अटूट संकल्प के साथ जुड़ती है तो एक इंसान भी लाखों जिंदगियों में स्थायी बदलाव ला सकता है।
1: यही समाप्त होती है आज की ये विस्तृत गाथा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का, लेखक अखिलेश कुमार वर्मा, और आपके साथ ही मैं नूपुर शर्मा
2: और मैं वेणु बालन।
1: आज दीजिए अनुमति और 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: पिछली कड़ी में आपने जाना कि इंग्लैंड में रहते समय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैक्स मूलर महोदय से स्वामी जी की भेंट हुई थी। वे विश्व विख्यात विद्वान थे और विराट प्राच्य विद्या विशारद एवं भारत प्रेमी भी थे। इस मुलाकात को सभी ने एक ऐतिहासिक घटना माना है।
1: इंग्लैंड प्रवास के दिनों में सेवियर दंपत्ति और कुमारी मूलर ने स्वामी जी को लेकर यूरोप भ्रमण, खासकर स्विट्जरलैंड भ्रमण करने का निश्चय किया। स्वामी जी खुशी खुशी गए। कई महीनों के कठिन परिश्रम के बाद उन्हें विश्राम करने की जरूरत महसूस हुई।
0: जुलाई माह के अंतिम भाग में शिष्य व मित्रों के साथ लंदन से यात्रा कर स्वामी जी जेनेवा शहर पहुंचे। उस समय जेनेवा में एक शिल्प प्रदर्शनी हो रही थी। स्वामी जी ने सब कुछ घूम घूम कर देखा। अंत में उन्हें एक बड़ा सा बैलून दिखा। उन्होंने पूछा,
2: ये बैलून जैसी चीज क्या है?
3: स्वामी जी, ये बैलून ही है। इसमें इतनी गैस भरी जाती है कि ये दो चार लोगों को टोकरी में बिठाकर उड़ा ले जा सकता है।
2: अच्छा, तो मैं भी उसमें बैठूंगा, देखूं तो जरा ऊपर से दुनिया कैसी दिखती है।
3: आप? अरे नहीं, ये बहुत सुरक्षित नहीं है।
2: सुरक्षित नहीं तो इतने लोग इसमें सवारी करने के लिए कतार में क्यों लगे हैं?
3: नहीं स्वामी जी, आप ना जाइए।
2: अरे मुझे कुछ नहीं होगा। कब उड़े गए गुब्बारा?
3: सूर्यास्त के समय आकाश का नजारा बहुत बढ़िया दिखता है।
2: ठीक है।
0: स्वामी जी अधीर होकर सूर्यास्त का इंतजार करने लगे। उनकी बच्चों जैसी अधीरता देख सब मन ही मन मुस्कुराते रहे। अंत में स्वामी जी की बारी आई। वे खुशी खुशी गुब्बारे में सवार होकर उड़ने लगे। आकाश साफ था। सूर्यास्त के समय आसमान को देखकर स्वामी जी बहुत ही प्रसन्न हुए। नीचे आकर उन्होंने कहा,
2: आहा, क्या स्वर्गीय नजारा था, क्या रंग थे, आकाश का एक नया रूप देखा, और तुम लोग मुझे स्वर्गीय दृश्य को देखने से रोक रहे थे।

0: जेनेवा से साथियों के साथ कैसल ऑफ चिलो गए। स्वामी जी ने वहाँ से मॉन्ट ब्लैंक की ओर यात्रा की। मनोरम पर्वतों पर से गुजरते समय उन्हें हिमालय की याद हो आई। अपने परिव्राजक जीवन को याद करते हुए उन्होंने कहा,
1: मैं चाहता हूँ हिमालय में एक मठ स्थापित कर शेष जीवन ध्यान व तपस्या में बिता दूं। इस मठ में मेरे भारतीय व पाश्चात्य शिष्यगण रहेंगे। मैं उन्हें प्रचार कर्मी के रूप में तैयार कर दूंगा। पहले दल के शिष्यगण पाश्चात्य देशों में वेदांत के प्रचार कार्य में संलग्न होंगे और दूसरा दल भारत की उन्नति के लिए आत्मोत्सर्ग करेगा।
2: स्वामी जी के शिष्यगण उनका संकल्प जानकर उत्साह से बोले, अवश्य स्वामी जी, भविष्य के कार्य के लिए हमें इस प्रकार का एक मठ अवश्य चाहिए। एल्प्स पर्वत के शिखर पर बैठे स्वामी जी ने शिष्यों के साथ जो चर्चा की थी वो बाद में ईश्वर की कृपा से कार्य रूप में परिणित हुई।
0: शिष्यों के साथ आश्रम की चर्चा करने के बाद स्वामी जी ने भारत में लाला बद्री शाह को पत्र लिखा।
1: क्या आप अल्मोड़ा के समीप कोई ऐसा उपयुक्त स्थान जानते हैं जहां उद्यान आदि के साथ मैं अपना मठ बना सकूं? उद्यान का होना अत्यंत आवश्यक है। एक छोटी सी पहाड़ी मिल जाए तो ठीक हमारे मन माफिक होगा।
2: स्वामी जी की इच्छा अनुसार ऐसा ही एक सुंदर आश्रम पिथौरागढ़ जिले के मायावती नामक स्थान पर सेवियर दंपत्ति द्वारा प्रतिष्ठित किया गया। वस्तुतः स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक दृश्य पग पग पर उन्हें हिमालय की याद दिला रहे थे और उनके साथ ही उनके मन में ध्यान, तपस्या, आश्रम आदि की अभिलाषा जाग रही थी। वहां के किसानों का व्यवहार देखकर उनके मन में हिमालय की पहाड़ी जातियों की स्मृति उदय हो रही थी। उन्होंने अपने साथियों से कहा,
1: इनके रीति रिवाज तथा वेशभूषा देखता हूं, बिल्कुल हिमालय की पहाड़ी जातियों के समान ही ये लोग, जो अपनी पीठ पर लंबी टोकरी लटकाए चलते हैं, वो भी हमारे देश के पहाड़ी अंचल में व्याप्त टोकरियों के समान ही हैं।
0: स्विट्जरलैंड में एक पहाड़ी पर चढ़ते समय स्वामी जी ने जिद करके एक हिमनद पे पार किया था। उस हिमनद का नाम था मर्दे ग्लेस। वहाँ से उनका दल चामोनीज नामक एक खूबसूरत गांव में गया। पास ही लिटन सेंट वर्नॉन में ईसाई साधुओं का मठ है, वहाँ भी गए। उसी के ऊपर सुविख्यात सेंट ऑगस्टाइन नामक दर्रा है, जिसके शिखर पर ऑगस्टाइन संप्रदाय के साधुओं की धर्मशाला स्थित है। ये यूरोप की सबसे ऊंचाई पर बसे मानव बस्तियों में एक है।
2: वहाँ से उनका दल मिस मूलर की इच्छा अनुसार सांसफी नामक स्थान पर गया। ये स्थान तुषार मंडित पर्वत शिखरों से घिरा है और शांति एवं निस्तब्धता का साम्राज्य है। संसार की गंदगी का नामो निशान न था। ऐसे अनुकूल परिवेश में स्वामी जी अक्सर ध्यान मग्न रहते थे। पहाड़ों पर वे अकेले ही घूमने निकल जाया करते थे।
0: एक दिन पहाड़ों पर उन्हें एक छोटा मंदिर दिखा। वो मैरी माता का मंदिर था।

0: अब मैं काफी ताजगी महसूस करता हूं। खिड़की से बाहर दृष्टि डालते ही सामने विराट हिमनद देख पाता हूं और ऐसा अनुभव होता है मानो मैं हिमालय में हूं। मेरी रगों में स्वाभाविक शक्ति पुनः लौट आई है और जिस प्रकार की परेशानियों की बात तुमने लिखी है वे मुझे स्पर्श तक नहीं करती। ये बच्चों का खेल भला मुझे कैसे उद्विग्न कर सकता है? सारा संसार बच्चों का खेल मात्र है, प्रचार करना, शिक्षा देना आदि सब। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो न द्वेष करते हैं और न कामना, उन्हीं को सन्यासी समझो। कुछ दिनों पूर्व अचानक ही कृपानंद को पत्र लिखने की तीव्र इच्छा हुई। संभव है वो दुखी होकर मेरी याद कर रहा हो, अतः मैंने उसे एक स्नेहपूर्ण पत्र लिखा था। कुमारी वाल्डो से कहना कि अपना आंतरिक स्नेह प्रदर्शित करते हुए उसे कुछ धन भेज दे। प्रेम का कभी नाश नहीं होता, संतान चाहे जैसी हो या चाहे जो करे, पर पिता का प्रेम अमर है, वो मेरे पुत्र के समान है। इस समय दुख में होने के कारण मेरे स्नेह एवं सहानुभूति पर उसका अधिकार वैसा ही है या शायद उससे भी अधिक।
1: उन्होंने कृपानंद को लिखा था,
0: कल मैं मोंटेरोजा के हिमनद के किनारे गया था और वहां चिर तुषार के प्रायः बीच में उत्पन्न कुछ सदाबहार फूल तोड़ लाया। उनमें से एक इस पत्र में रखकर तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। आशा है तुम भी इस पार्थिव जीवन के समस्त बाधा विघ्न रूपी हिम तथा तुषार राशि के बीच उसी प्रकार की आध्यात्मिक दृढ़ता प्राप्त करोगे। सत्य की ही विजय होती है, मिथ्या की नहीं। सत्य के होकर ही देवयान का मार्ग अग्रसर होता है। यहां पर कोई आश्रम नहीं है, एक रहने से कितना अच्छा होता। मैं उसे अतीव आनंदित होता और इस देश का भी कितना भला होता।
2: स्विट्जरलैंड के ग्रैंड होटल सास्फी वेले से लिखित स्वामी जी के 8 अगस्त के पत्र से ज्ञात होता है कि वे कील निवासी जर्मन दार्शनिक पॉल डायसन के आमंत्रण पर 10 सितंबर को सेवियर दंपत्ति के साथ प्राध्यापक के घर पहुंचने वाले हैं, परंतु कुमारी मूलर उसके पहले ही इंग्लैंड लौट जाएंगी। प्राच्य विद्या के महान पंडित डायसन स्वामी जी के बारे में जानते थे तथा उनके व्याख्यानों का पाठ करते थे। उन्होंने स्वामी जी से मिलने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए पत्र लिखा था जो लंदन से घूमकर उस सुदूरवर्ती गांव में आकर उन्हें प्राप्त हुआ। प्राध्यापक की इच्छा अनुसार स्वामी जी ने भ्रमण योजना में किंचित परिवर्तन कर जर्मनी होते हुए इंग्लैंड लौटने का निश्चय किया, परंतु तब भी पूरा एक महीना हाथ में था। अतः ऐसी योजना बनी कि वे लोग कुछ दिन और स्विट्जरलैंड में ही बिताएंगे और तदुपरांत कुमारी मूलर के अतिरिक्त बाकी लोग जर्मनी के 2-1 स्थानों का दर्शन करते हुए कीव पहुंचेंगे। मूलर स्विट्जरलैंड से ही वापस लौट जाएगी।
1: पूर्वोक्त ग्राम त्याग कर पूरी टोली संभवतः 22 अगस्त को स्विट्जरलैंड के ही लुसर्न नगर में जा पहुंची। लुसर्न में देखने योग्य काफी कुछ था और उन्होंने एक एक कर सब देखा। कप्तान सेवियर के अतिरिक्त अन्य सभी लोगों ने वहां पर पहाड़ी ट्रेन पर सवार होकर माउंट रिगी के शिखर तक आरोहण किया। इस भ्रमण में भी एक तरह की नवीनता थी और पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जगत के एक अतुलनीय हिम दृश्यावली ने उनके नयन मन को मुग्ध कर लिया। लुसर्न में उन लोगों ने अन्य स्थानों के अतिरिक्त स्विस गार्डों का कब्रिस्तान और उसके ऊपर के पर्वत पर खुदी हुई निद्रित सिंह की एक सुंदर मूर्ति का अवलोकन किया। यहाँ से उन्होंने रीड्स नदी के ऊपर स्थित चित्रों से शोभित 2 सेतुओं को पार किया। इनमें से एक पर मृत्यु का तांडव नृत्य अंकित था और दूसरा सेतु स्विट्जरलैंड के इतिहास की घटनाओं से अलंकृत काष्ठ फलकों द्वारा सुशोभित था।
2: उसके बाद उन्होंने लुसर्न का अजायब घर तथा इतिहास में विख्यात धर्म मंदिर का सुप्रसिद्ध वॉइस यूमेना मानव कंठ नामक ऑर्गन देखा। इस वाद्य यंत्र से ठीक मानवीय कंठ के समान ध्वनि निकलते देखकर स्वामी जी बड़े आनंदित हुए। इसके बाद सबने स्टीमर पर चढ़कर लुसर्न झील की सैर की। लुसर्न में विलियम टेल के नाम पर बने एक छोटे से मंदिर को देखकर उस देश प्रेमी के जीवन की कितनी ही घटनाएं स्वामी जी के मन से होकर गुजर गईं। झील के किनारे एक दिन मिर्ची बिकते देख स्वामी जी ने उनमें से कुछ खरीद कर एक मुंह में डाल लिया। दुकानदार इस पर अवाक हो गया।
0: क्या तुम्हारे पास इससे अधिक तीखा मिर्च नहीं है? वाह, मजा आ गया। अरे तुम लोग ताक क्यों रहे हो, खाकर देखो ना, मजा आएगा।
1: इसके बाद वे लोग राइन नदी का जलप्रपात देखने शव हसैन गए।
2: वहां से वे लोग जर्मनी के एक वृहद विश्वविद्यालय हाइडेलबर्ग पहुंचे और वहां दो दिन निवास किया। विश्वविद्यालय का परिदर्शन कर और जर्मन लोगों में विद्यादान का विपुल आयोजन और विद्यार्थियों में अदम्य उत्साह देखकर स्वामी जी विस्मित हो गए। नगर के किनारे एक ऊंचे स्थान पर स्थित किला भी उन लोगों ने देखा। वहां से वे लोग कोबलेंज गए और वहां एक रात बिताने के बाद स्टीमर पर सवार हुए। स्टीमर 60 मील दूर कोलोन नगर पहुंचा। उक्त शहर में 2-3 दिन रहकर इन लोगों ने वहां का वृहद प्रार्थना गृह, वहां का कोषागार तथा सन्यासियों द्वारा हस्त निर्मित खूबसूरत जड़ाऊ सलीब एवं अन्य दर्शनीय वस्तुओं को देखा। एक दिन स्वामी जी प्रार्थना गृह में प्रार्थना के समय भी उपस्थित हुए। सेवियर दंपत्ति ने सोचा था कि कोलोन से वे सीधे कील जाएंगे, परंतु स्वामी जी की बर्लिन देखने की इच्छा है जानकर वे लोग उस ओर अग्रसर हुए।
1: स्वामी जी जर्मनी में जाकर जितना ही वहाँ की संस्कृति, कर्मोद्यम, समृद्धि तथा आधुनिक रीतियों से नगर निर्माण का परीक्षण करने लगे, उतने ही विस्मित होकर वे जर्मन लोगों की प्रशंसा करने लगे। आखिरकार वे बर्लिन पहुँचे। उस महानगर की चौड़ी सड़कों, मनोहर उद्यानों तथा सुंदर भवनों ने उन्हें पेरिस की याद दिला दी और उनका चिंतनशील मन फ्रांसीसी और जर्मन सभ्यताओं के तुलनात्मक चिंतन में लग गया। वे समझ गए कि दोनों देशों का अपना अपना वैशिष्ट है। जर्मन वीरों की जाति है और लौकिक तथा बौद्धिक प्रगति के मार्ग की समस्त बाधाओं को पार करने के लिए कटिबद्ध है। जर्मनी की सुप्रशिक्षित सेना को देखकर उन्होंने कहा था, क्या ही सुंदर वीरता की प्रतिमूर्ति है। इसके बाद सेवियर ने जब उन्हें ड्रेसडेन ले जाना चाहा, तो स्वामी जी बोले,
0: प्रोफेसर डायसन हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए।
2: अतः वे लोग वहां से सीधे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित कील नगर की ओर चल पड़े और 8 सितंबर को वहां पहुंचकर एक होटल में आश्रय लिया। प्राध्यापक के साथ स्वामी जी के मिलने के विषय में श्रीमती सेवियर की स्मृति कथा से जो बातें ज्ञात होती हैं, वे इस प्रकार हैं।
3: बाल्टिक सागर तट के मनोरम पृष्ठभूमि में स्थित मनोरम कील नगर की ओर तथा वहां के विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर पॉल डायसन के सानिध्य में मेरा जो एक आनंदमय दिन बीता था, उसकी स्मृति के साथ अनेक मधुर घटनाओं के जुड़े होने की वजह से वो मेरे मानस पटल पर अत्यंत स्पष्ट रूप से अंकित है। यूरोपीय संस्कृतविद पंडितों में डायसन का स्थान सर्वोपरि है और उनकी दर्शन पर पकड़ भी अनुपम है। स्वामी जी के होटल में पहुंचने की सूचना पाते ही प्राध्यापक ने एक पत्र लिखकर उन्हें अगले दिन अपने साथ जलपान के लिए आमंत्रित किया और इसके साथ ही सौजन्यतापूर्वक मुझे तथा मेरे पति को भी आमंत्रित किया। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे हम उनके घर जा पहुंचे और हमें उनके पुस्तकालय में ले जाया गया। वहां पर अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर डायसन हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने सादर हमारा स्वागत किया। डायसन स्वयं जिन अनुवाद कार्यों में लगे थे, स्वामी जी ने उनमें रुचि ली तथा उनके बीच अनेक मुश्किल शब्दों के अर्थ एवं तात्पर्य के बारे में चर्चा होने लगी। स्वामी जी ने कहा कि परिभाषा की स्पष्टता ही मुख्य चीज है और भाषा का माधुर्य गौण है। स्वामी जी जिस प्रकार दृढ़ विश्वास के साथ शब्दों के तात्पर्य समझाने लगे और सूक्ष्म तत्वों का परिचय देने लगे, उसके फलस्वरूप जर्मन विद्वान को आखिरकार उन्हीं के मत को मानना पड़ा। भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा चल रही थी कि इसी बीच प्रोफेसर महोदय किसी दूसरे काम से उठकर चले गए थोड़ी देर बाद उन्होंने लौटकर देखा कि स्वामी जी कविता की एक पुस्तक के पन्ने पलट रहे हैं। इस कार्य में वे इतने तन्मय थे कि प्रोफेसर के आने की आवाज तक उनके कानों में न पहुंची। पुस्तक समाप्त कर स्वामी जी अध्यापक की ओर देखते ही समझ गए कि वे काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा,
0: पुस्तक पढ़ रहा था, शायद आप बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्षमा कीजिएगा।
4: इतने कम समय में आपने पूरी किताब पढ़ ली?
0: जी हाँ, और याद भी कर लिया है।
2: स्वामी जी ने उस पुस्तक का कुछ अंश और कविताएं ज्यों की त्यों सुना दी। विस्मय से अभिभूत होकर प्रोफेसर बोले,
4: इससे पहले आपने अवश्य इस पुस्तक को पढ़ा होगा, वरना केवल एक सरसरी निगाह से ही 400 पृष्ठ की किसी पुस्तक को आधे घंटे में याद कर लेना दुसाध्य क्या असंभव है?
0: संयत मना योगी के लिए ये असंभव नहीं है, मेरा यह विश्वास है। ये शक्ति सभी प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं मैं काम कांचन त्यागी सन्यासी हूं, आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य के परिणाम में ये शक्ति स्वयं ही मुझ में आ गई है। पाश्चात्य देश में अनेक लोग इस पर विश्वास नहीं भी कर सकते हैं, परंतु भारत में ब्रह्मचर्य के बल पर इस प्रकार की स्मृति शक्ति के अधिकारी आज कम होने पर भी खत्म नहीं हुए हैं।
1: प्रोफेसर साहब निरुत्तर हो गए और उसी दिन से विस्वामी जी के

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।